0: और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। वहाँ वो जामे शराब की छीना झपटी करेंगे जिसके पीने से न कोई लग बात होगी और न कोई गुनाह का काम। और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती जो उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में गुफ्तगू करेंगे, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और दोजख की गर्म हवा के अजाब से हमें बचा लिया। इससे पहले हम उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला है, मेहरबान है।
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा आसार नजर न अची रहा है। पार्लियामेंट मौजूद है, इतिहादिन से मुशावरत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वाले वफाकी वजीर आजम नजीर तारण है तो हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आयन तहत कम कर पाबंद है। असाजे गडियल हुकूमत है, इतिहादिन की मुशावरत का सिवाय आईनी तरमीम कि करे थी। वजीर आजम असाजो सदर भी वही इतिहाद जमायत है। तरमीम से इतिहादिन के सिग्नल बाद ही मुशावरत के बधाई दी।

सिंध में पाणी जी शदीद खोट बावजूद पंजाब ज़ोरी खुलियल तकरारी केनाल्स मां पाणी खणत वधाए छॾी। पंजाब सीजी ऐं तोसा पंजनि लिंक केनाल्स मां 10,000 क्यूसिक पाणी खणण लॻो। शदीद पाणी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में पाणी जो बोहरान वधीक संगीन थी वियो। बिना इजाज़त पंजाब पारां खोलियल तकरारी लिंक केनाल्स जो कंहिं बि नोटिस न वरितो। सिंध जे आबादगारनि में ॻणिती जी लहर छायल, सूबे में फसलनि जी पोखी मुतासिर थियण जो ख़दशो ज़ाहिरु।

0: अदालतनि में हथकड़ी हणी सख़्त सिक्योरिटी में पेश कयो।
1: सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मां मूलबो जो खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर चर्चिल इनामियाणी चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं आवाम खे रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियनि मुआशी हालतुनि में बि आवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे।
0: सिंध में मुख़्तलिफ़ तकरारनि दौरान औरत समेत चार ॼणा क़तल, चार ज़ख़्मी। काज़ी अहमद में खोखर ऐं कंबू बिरादरी जे ॿिनि घरनि में मसुवाड़ वारी जाइ तां झेड़ो थी पियो। मंज़ूर कंबू क़तल, ॿिनि औरतुनि समेत चार ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि पारां नटियूं ऐं कुआड़ियूं हणी हिकु ॼणो क़तल। घोट ख़ुश मोहम्मद पवर में ॻोठाणो रफ़ीक पवर क़तल थी वियो। खानपुर वेझो घर मां चोरी दौरान मुज़ामत ते हथियारबंदनि जी फायरिंग। घर ॼाणी निस्मात मरियम खातून क़तल थी वई। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुआड़ियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ ख़ुश मोहम्मद पवर में रफ़ीक पवर खे लठियूं हणी क़तल कयो वियो।
1: कॾहिं थींदी फ़ैसिलो अॼु थींदो। सुलह जो चंड ॾिसण लाइ मर्कज़ी कमेटी जो इजलास अॼु कराची में तलब। कराची जे मौसमियात खाते में थींदड़ इजलास जी सदारत कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल कुबेर आज़ाद कंदो। स्पार्क मूजिबि अॼु सुलह जो चंड जा इम्कान रोशन आहे। ईद उल अज़ा 27 मई ते थी सघे थी।
0: गोरखपुर में भुट्टा भंगवार खूनी तकरार जो जंगे ज़रिए निबेरो। धुरिन ते मजमूई तौर 2,37,00,000 रुपया दंड लॻायो वियो। खूनी तकरार जो जिर्गो दड़े सुंदराणी में आबिद ख़ान सुंदराणी जे सरपंची में थियो। भंगवार धुर ते 4 खूननि जो 1,29,00,000 ऐं भुट्टा धुर ते 2 खूननि जो 1,08,00,000 रुपया दंड मुक़ररु। मुस्तक़बिल में अगराई ते 2,00,00,000 दंड जी फतवा।

0: फैज़गंज वेझो पकाचांग के मोसनाबाद कॉलोनी में घर में औरत जो लाश हथ कतल जा चुगोल मिनायल चांग जाल कमर चांग जो घर में लाश मिलो इलाके में चुगोल आए तो औरत के संदस मुड़स कतल कर फरार थी वो है पुलिस जो चवण है तो वाकई की जांच कर रहा
1: यासिन वेझो गोठ लोई बकरानी में मुबैना तौर इतफाकी गोली लगण सबब बारड़ो मार्च वो मारफाणी थाने की हद में मुबैना तौर इतफाकी गोली लगण सबब पंज वरियन जो शरबत जाफरी मार्च
0: नगर पार्कर वेझो औरत दीमा कोहली जो आबगात मामलो नव रुख इख्तियार कर वो वालदेन पारा मुड़स सोरे ते औरत के कतल करने जो इल्जाम गोठ राड़को में ब ढी अग पंजवी वरन की दीमा कोहली जो फा फाद लाश मिलो हो औरत

0: हे वट एडियू शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वाली माँ जी बेहतरीन गिजा भाव बार इन्ही जो हक है ये पैगाम कश फाउंडेशन कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
7: GFM 90.8

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। आप सुन रहे थे GAFM।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है पिलाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अमाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे रबते 0327-9984-7063।
3: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो, बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो, बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो, घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो, ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो, हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो। ई पैगाम मुस्लिम हैंड्स

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: ला ला ला ला।

Thank you.

Índio! Ai, índio!

ਮਨਾਏ

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज से शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पेंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पाकिस्तान ॾखण एशिया जी तारीख़ ऐं नक्शे तां न ख़तम थियण वारो हिसो आहे। भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ ॾियाईंदड़ बयान ज़ाहिर करे थो त भारतीय क़यादत पाकिस्तान जे वजूद वारे तसवुर खे क़बूल न करे सघी। भारत खे पाकिस्तान जी अहमियत तस्लीम करे पुरमन गड़ियल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो। भारतीय आर्मी चीफ जे हाणोकी इंटरव्यू में बयान ते रदे अमल ज़ाहिर कंदे ISPR चयो आहे त हक़ जी जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में बाक़ी थी। पाकिस्तान पहिरियां ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। अहिड़ी धमकी ज़हनी दीवालपणी जनून ऐं जंग पसंदी जी अकासी करे थी। ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहप ऐं स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारतीय क़यादत ॾखण एशिया हिकु ॿिए बहरान या जंग तरफ़ ॾिकण खां पासो करे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भेरो ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वटे हुन जे हक़ में बहितर थींदो जेकॾहिं जल्द अमुन मुआदो तय न थियो त ईरान खे तमामु घणी ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो जेको हुन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि वेझो भर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वरी बमबारी ऐं नार फॉर्स में वाक़ई ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ ख़ारिज लैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोस लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठण में शामिल आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान में ईरानी अहमद सब सां मुलाक़ात पत्रफुन लाॻापन खिते सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी पारां खिते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जे तामीरी किरदार जी वाकाण सिकंदर मोमनी अमरीका ऐं ईरान विच में जारी चिकटाण दौरान फील्ड मार्शल सिदास मुनीर जी कोशिशुनि खे बि साराहियो। ॿिन्ही घरू वज़ीरनि जो सहकार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ तहरान पहुचण ते सिकंदर मोमनी मोहसिन नक़वी जो आदर भाव कयो। आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त इतमाद जोगी राब्तेकारी मुआशी तरक़ी ऐं अवामी ख़िदमतनि खे अचु ॾियण लाइ अणथर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम सिहत ऐं वापार अवामी ख़िदमत जी बुनियादी ज़रूरत बणिजी चुका आहिनि। परे वारनि इलाइक़नि में डिजिटल पहुच मुआशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्यूनिकेशन ऐं इंफॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾियारे ते सदर ज़रदारी आई टी वज़ारत ऐं पी टी आई मोबाइल ऑपरेटर जी ख़िदमत जी वाखाण कंदे चयो त हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुच राब्तनि खे हथ ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। पाकिस्तान में टेलीकॉम वापारनि जो अंग 205 मिलियन खां पार थी चुको आहे। मुल्क में ब्रॉडबैंड वापारनि जो अंग 161 मिलियन खां वधीक आहे।

जंहिंजे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मकानी इदारनि जे ख़ाली सीटनि जी नंढी चूंड जारी। पोलिंग जो अमल बिना कंहिं वक़्फ़े जे शाम 5 वॻे ते जारी रहंदो। खैरपुर नाथन शाह जी यूसी बुरड़ा वारे ज़िले काउंसिल जी ख़ाली सीट ते बीपी उमेदवार अमजद बुरड़ो ऐं जी डी ए ज़ुल्फ़कार खुआरो पिण मुक़ाबले जो इम्कान। मीरपुर बुरड़ो जी यूसी राजापुर वारे ज़िले काउंसिल सीट ते 7 उमेदवार लथल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की

सब्सक्राइब करना है 888-1PSKRLKE विद योर छोटी नेम और अपने प्यार से नाम के साथ. मुझे SMS करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ मौजूद है, कौन कौन उठ गया है अपनी नींद से, और आज की न्यू एक्टिविटीज को शेयर मुझसे जरूर करिएगा जो आपकी न्यू एक्टिविटीज आज के दिन होने वाली हैं. इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जी आज एक और नया सवाल के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं, तो उठ जाइए मेरे साथ और दिमाग को उठाइए अपने साथ. तो आपने क्या करना है, मेरे सवाल को सुनना है गौर से और उसका जवाब देना है जस्ट, और थोड़े से दिमाग को चलाने की जरूरत होती है, बाकी नकल अकल करने की कोई जरूरत नहीं होती मेरे क्वेश्चन में. अच्छा जी, तो अभी से मेरे साथ हो जाए क्योंकि लास्ट के टाइम अगर आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं तो क्या होता है कि मैं और आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं और टाइम हमारा एंड की तरफ चले जाता है, तो वो हमारी बात है. अच्छा जी, तो जो मैं सवाल करने लगूंगी, सवाल के जवाब देने के साथ आपने एक सॉन्ग का नाम, कोई भी सॉन्ग का नाम आपने साथ में जरूर टाइप करके मुझे भेजना है. अगर आपका राइट आंसर होगा तो सॉन्ग वो प्ले हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई वो आपका राइट आंसर था जिसकी वजह से वो आपका सॉन्ग प्ले हुआ. हाँ, अगर वो सॉन्ग प्ले नहीं होता तो समझिएगा कि आपका जवाब गलत था, लेकिन अगर सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं फिर भी चलाऊंगी. आज फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आप लोगों को सॉन्ग मुझे अच्छे लगे तो मैं सॉन्ग को जरूर प्ले करूंगी, अगर आपका आंसर ठीक हो या ना भी हो. ओके जी, तो आपने क्या करना है, चलें अब देखते हैं आप लोग मेरे सवाल का जवाब कौन दे पाता है कौन नहीं दे पाता. तो जी, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जी आप सुन रहे हैं आओ बात कर रहे हैं, मैं शामिल हैं आप लोग मेरे साथ, मतलब कि आज सना के साथ प्यारी सी आवाज़ सुन रहे हैं. तो मेरी आवाज़ को सुनने के साथ देर किए बगैर मेरे पेज को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है, और SMS करके मुझे बताना है कि मेरे साथ कौन मौजूद है. SMS करने के लिए आपने टाइप करना है 888-1SKRLKE विद योर सिटी नेम, आप मुझे भेज सकते हैं. और फेसबुक से जो लाइव

तो जी मैं आपको बता रही थी और के जो है सबसे पहले हमें आज ज्वाइन करते हैं वसीम और मसरूर अहमद. तो जी देखते हैं वसीम हमें कहते हैं कि सलाम स्वीट सना, कैसी हो आप? शो नाइस, आप भी नाइस होंगी, वॉइस नाइस है, प्लीज प्ले तो प्ले टू अकबर आंख बदली. अच्छा आई एम वसीम और मुस्कुराती रहो हमेशा. थैंक यू सो मच वसीम और फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट और ये दुआ और ये कमेंट के लिए, एसएमएस के लिए. और अच्छा लगा कि आपने आज मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया है. आपने सॉन्ग का नाम बताया है, ज़रूर हम लोग प्ले करेंगे, लेकिन आपने आज मेरा सवाल सुना है अभी, तो सवाल सुनने के साथ आप मेरा जवाब भी तो दें. सवाल मेरा ये था कि आपने बताना वो ऐसा क्या है जिसके पास उसके पास आंखें तो हैं मगर वो फिर भी देख नहीं सकती. तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए कि ऐसी कौन है वो. और उसके अलावा इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कराची से मसरूर अहमद, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से मसरूर अहमद. कहते हैं आरजी सना जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह वी आई पी खूबसूरत शो एंड खूबसूरत आरजी सना जी. आओ बात करें प्रोग्राम का, हर वीक के इंतजार रहता है और आपकी खूबसूरत आवाज सुनने का. थैंक यू सो मच मसरूर अहमद. और मुझे भी मतलब एक इंतजार होता है कि यार मैं जाऊंगी इससे पहले मसरूर अहमद का मैसेज आएगा, किसी का आए या नहीं आए मसरूर अहमद का लाजमी मैसेज आना है. तो वही होता है कि नहीं आप मुझे इस मैसेज को बनाते हैं और अच्छा लगता है कि आप मुझे ज्वाइन करते हैं सबसे पहले और मेरे कमेंट्स मुझे कमेंट करते हैं और अगर सवाल सुन लेते हैं तो सवाल सुनने के साथ उसका जवाब भी देते हैं. जी आपने क्या करना है? अभी भी यही करना है, मेरा सवाल सुन लिया है तो उसका जवाब भी जरूर दें मुझे और मुझे बताएं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुना पसंद करेंगे. लेकिन मेरे सवाल सुनने के जवाब के बाद, मतलब आप जब मेरे सवाल का जवाब दे रहे होंगे तो जवाब के साथ आप मुझे सॉन्ग का नाम भी लिख दें ताकि मैं जब वो सॉन्ग प्ले करूँ तो आप समझ आएगा कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था. ओके जी, तो देख लेते हैं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुना पसंद. लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी एक और सॉन्ग प्ले करने लगी हूँ, वो भी अपने पसंद का.

0: तो जी हाँ, वो सॉन्ग सुन कर दिया है मैंने प्ले, और सुनते हैं इस मजेदार सॉन्ग को।
1: वेलकम

तो डिटेल सके सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग सॉन्ग, और सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगा होगा ये आप लोगों को भी। तो जी देख लेते हैं यहाँ पर हमें फेसबुक से कौन ज्वाइन करता है। हमें फेसबुक पर ज्वाइन करते हैं कहते हैं अब्दुल रजाक, कहते हैं मोहम्मद खान कंबार, वफा जमाल कंबार, एजाज कंबार, आर्यू पोटर स्टॉप, नज़्द जलोरी, मीरपुर खास से शो सुनते ही प्रोग्राम जबरदस्त होता है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक, और यकीनन आप मुझे ज्वाइन करते हैं जो सुनते हैं तो एंड तक आप मेरे साथ रहते हैं, तो मेरा सवाल भी सुना होगा, मेरे सवाल का जवाब भी देते हैं प्लीज, और साथ में एक सॉन्ग का नाम भी लिख के दे दें ताकि मैं अगर वो प्ले कर दूँ तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक था अब्दुल रजाक। तो ऐसे ही आप मुझे ज्वाइन करते रहना, हर संडे में होती हूँ आपके साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ आओ बात करें में। तो आओ बात करें का मतलब होता है कि बहुत सारी बातें करनी होती है लेकिन आप लोग तो अकेले अकेले सारी बातें कर लेते हैं और मुझे बताते भी नहीं है सुबह की एक्टिविटीज। तो जी आपने क्या करना है, मुझे ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे देना है तो वैसे ही देना है जैसे मैं आपको बताया है, एक सॉन्ग का नाम लिख के ज़रूर बताना है। और अब्दुल रजाक ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं तो ऐसे ही आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, थोड़ी सी खुशी में और भी इजाफा हो सकता है, मतलब कि आप कर सकते हैं। तो मेरी खुशी में इजाफा करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर मेरे सवाल का जवाब दें और सॉन्ग का नाम लिख दें, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा देख लेते हैं हमें यहाँ पर एक और जो है हमारा लिस्टर हमारे साथ मौजूद है, अभी देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन कहते हैं जो हमें एसएमएस करते हैं। सदाकत हुसैन कहते हैं मिरानी, सदाकत हुसैन मिरानी बचल शाह मानी शक्कर बाजी गुजरा हुआ संडे, अच्छा मदर डे था, कैसी आरजे हैं और जो आपको माँ का आर्मी दिन याद नहीं, मुझे दुख है, मदर समझी नहीं मैं ऐसे कैसे के मदर डे, जी जी बिल्कुल मदर डे था लेकिन

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ाकार जावेद राजपूत साहब, DHMS जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देरि सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-760।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

आपके लिए निकाल के रखे, मैंने दिए नहीं किसी को. हेलो. हाँ नहीं, वो थी मासी थी. हाँ क्या रात है? नहीं, मैं तो घर जाके भी करूँगी बात. आपके साथ तो मुझे थोड़ी रात को सुकून से नींद आती है, और नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि इतने दिनों की नींद है, लेकिन ये सुकून से नींद आ जाती है मुझे बात करके. बताओ, बड़ी बात है, पता सब है फिर भी. ठीक है, 12 बजे कर रही हूँ कॉल. सही है, ठीक है.

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन, और यहाँ पर जैसा कि आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे यकीनन, और देख लेते हैं अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, कौन बताएगा मुझे। हम लोग बात कर रहे थे सदाकत हुसैन मीरानी से, कहते हैं कि आपको याद नहीं है माँ सदीने जो भाई माँ के बगा के लिए होते हैं, हर चीज माँ के साथ जुड़ी होती है। ऐसे थोड़ी है कि एक दिन क्या कर लेंगे आप, हमेशा हर दिन उन्हीं का होता है, हम उन्हीं की वजह से जिंदा होते हैं, उन्हीं की मोहब्बत हमें जिंदा रखती है। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूला करें, और यकीन करें मैं ये चीज़ें कभी इन चीज़ों पर वो नहीं करती कि आज वो है तो आज ये फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर कुछ कर दें आप डेली बेसिस पे, अगर माँ का आलमी दिन समझ के उनके साथ खिदमत करें, उनका ख्याल रखें ना, यकीन करें वो जो दुआ एक दिन में आप लेना चाहते हैं वो आपको रोज मिला करें। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है, आप लोग सब समझ रहे होते हैं कि यार एक ही दिन माँ का है तो, या एक ही दिन बर्थडे की होती है। ये चीज़ें गलत हैं। आप रोज ऐसे बन के समझ के जिए कि आज का ही दिन है या आज का ही वो आखिरी दिन है जो सिर्फ आज ही है। तो रोज अगर आप इस तरीके से जिएंगे आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजरेगी, और किसी को तंग करने के बजाय आप अपनी जिंदगी को खुद संवार सकते हैं, रोज दुआएं ले सकते हैं सिवाय एक दिन लेने के। तो ये चीज़ें नहीं होती, मुझे याद सब कुछ था लेकिन ये चीज़ें मेरे पास इस तरीके से कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यार एक ही दिन माँ का है या एक ही दिन इसका है, ऐसा नहीं है। हर दिन माँ का है, हर चीज़ माँ से है, माँ के बिना कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ आप हमेशा जहन में रखा करें। और उसके अलावा देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिक लशारी जलोरी से, बाजी जवाब है। अच्छा ओके, जवाब दिया आपने सही हो तो गाना हम तो तेरी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वाह क्या सॉन्ग आपने बताया, ये सॉन्ग मैं ज़रूर प्ले करूँगी। और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए ही मैं आपका ये वाला सॉन्ग प्ले करूँगी। ओके जी, मैंने इसलिए बताया कि लोग ये ना सुने, सॉन्ग पसंद आया तो प्ले कर दिया। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है तो मैं सॉन्ग आपका ज़रूर प्ले करूँगी। तो लास्ट में अपना जवाब ज़रूर बता दूँगी, लेकिन अभी मैं सॉन्ग प्ले करूँगी आपके पसंद वाला, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हमारे मौजूद हैं लड़काना से, कहते हैं अरिबा बाजी जवाब नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ प्ले असा कंबर वारा वॉइस बाय फायजा अली के। ओके जी, ज़रूर हम प्ले करेंगे। और सवाल मेरा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, सवाल मेरा ये था कि आपने मुझे बताना था कि यार उसके पास आंखें तो हैं पर वो कुछ देख नहीं सकती, तो ऐसा क्या है जो जिसके पास आंखें हैं वो हमें देख नहीं सकती, वो मतलब

तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग प्ले करने लगे हैं कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम भाई अली जफर. तो चलें देख लेते हैं और सुनते हैं ये सॉन्ग. सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साथ में मिलकर सुनते हैं. उसके बाद जाएंगे हम एक छोटा सा एक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन जल्दी से वापस आ जाएंगे उसके बाद. लेकिन अभी सुनते हैं सॉन्ग मजेदार.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मनगढ़ंत बका जो रस्तो अख्तियार करणो पवंदो. भारतीय आर्मी चीफ जी हाणो के इंटरव्यू में बयान ते रदे अमल जाहिर कंदे ISPR चयो आहे त हक जी जंग दौरान भारत जे मायूसी समूरी दुनिया में वाकई थी. पाकिस्तान पहिरें ई आलमी सतह ते अहम मुल्क ऐं हिकु तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे. अहिड़ी धमकी ज़हनी दीवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी आकासी करे थी. ज़िमेवार एटमी रियासतूं सह स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं ऐं भारती ॾखण क़यादत ऐं ॾखण एशिया ते हिकु ॿिए बोहरान या जंग ॾिकण खां पासो करे

ख़बरदार कयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे हुन जे हक़ में बहितर साबित थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआहिदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको हुन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विचो भर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वरी बमबारी, नारफार्स में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, ख़ारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडो शामिल आहे। वफ़ाक़ी करू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तेहरान में ईरानी हमनसब सां मुलाक़ात, बतरफ़नि लाॻापनि खिते सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी पारां खिते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी तामीर किरदार जी वाखाण। सिकंदर मोमनी अमरीका ऐं ईरान विच में जारी चिकटाण दौरान फील्ड मार्शल सद आसिम मुनीर जी कोशिशुनि खे बि साराहियो। ॿिन्ही घरू वज़ीरनि जे सहकार जारी रखण वारे अज़म जो वर्चाउ कयो। तेहरान पहुचण ते सिकंदर मोमनी मोहसिन नक़वी जो आदर भाव कयो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: सामीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाय नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

तारीख़ ऐं नक्शे तां न ख़तम करण वारो हिसो आहे। भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ियाईंदड़ बयान ज़ाहिर करे थो त भारतीय क़यादत पाकिस्तान जे वजूद वारे तसवुर खे क़बूल न करे सघे। भारत खे पाकिस्तान जी अहमियत तस्लीम कंदे पुरमन गड़ियल बका जो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो। भारतीय आर्मी चीफ जे हाणोके इंटरव्यू में बयान ते रदअमल ज़ाहिर कंदे ISPR चयो त हक़ जे जंग दौरान भारत जी मायूसी समूरी दुनिया में वाखी थी। पाकिस्तान पहिरें ई आलमी सतह ते हिकु अहम मुल्क आहे, तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे। अहिड़ी धमकी ज़हनी दिवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी। ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहप स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं। भारती क़यादत ॾखिण एशिया ते हिकु ॿिए बहरान या जंग तरफ़ ढिकण खां पासो करे

0: बांग्लादेश खिलाफ सिलेट में जारी सीरीज के बे ऐं आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम परेशानियुनि जो शिकार। पहिरीं इनिंग में 150 रनसनि ते 6 रांदीगर पवलियन मोटी पिया। बाबर आज़म जे 18 रनसनि खां सवाइ को बि बैट्समैन बंगाली बालरनि जो मुक़ाबिलो न करे सघियो। गुज़िरियल ॾींहुं बांग्लादेश जी टीम पंहिंजी पहिरीं इनिंग में 278 रनसूं ठाहे आउट थी वई हुई। बांग्लादेश पारां लेटन दास 126 रनसूं ठाहे नुमाया रहियो। पाकिस्तान पारां खुरम शहज़ाद 4, मोहम्मद अब्बास 3 ऐं हसन अली 2 विकेटूं वरितियूं। अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरो ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको उन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारीअ जी मुकमल तयारी करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिब विचो भर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जी फ़ौज ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बमबारी, नार फार्स में वाक़िए ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, खारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी तेहरान में ईरानी मनसब सां मुलाक़ात। ॿतरफ़नि लाॻापनि ख़िते सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी पारां ख़िते में अमुन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी तामीरी किरदार जी वाखाण। सिकंदर मोमनी अमरीका ऐं ईरान विच में जारी छिकताण दौरान फील्ड मार्शल सद आसम मुनीर जी कोशिशुनि खे पसारायो। ॿिन्ही घरू वज़ीरनि जो सहकार जारी रखण वारे अज़म जो वर्चाओ। तेहरान पहुचण ते सिकंदर मोमनी मोहसिन नक़वी जो आदर भाव कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
5: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
7: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ना जनाब की जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। ऑप्शंस में आप लोगों के लिए जनाब बहुत ही मजे के प्रोडक्ट्स मौजूद है, जैसे कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और उसके साथ

उसके लिए आपके पास लोशन है और हेयर रिमूवल लोशन भी है, ठीक है, जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए डी स्किन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और उसके साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। डी स्किन में आप लोगों को दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाकी वाइट एज में आप लोगों के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरती को बढ़ाते जाएंगे और हमेशा खूबसूरत रहेंगे। और इसी के साथ साथ आज के टॉपिक की जानिब आते हैं, तो मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछना है वो क्या होगा, तो सवाल आज का कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आप लोग बिना वजह के तैयार हुए हैं। ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं जो कि भाई बिना मतलब के रेडी हो जाते हैं और फिर वो हमेशा तैयार होते हैं कि भाई कोई बोले कि कहीं जाना है तो हम बस बोलें चलो लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप भी कभी बिना वजह रेडी हुए हैं या फिर आप उन लोगों में शुमार नहीं आते। बिल्कुल जी मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं या फिर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-100। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आप जब आते हैं तो आपको इजीली हमारी पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव पोस्ट होती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके जी, पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है और लाइक करने वाले लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। चलिए जी, और इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग कभी बिना वजह के रेडी हुए हैं, तैयार होते हैं कभी बिना वजह, ये बताइए आज जरा आप मुझे। और उसके अलावा वजह वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं ना कि भाई वजह है हमें तैयार होने की, लेकिन बिना वजह अगर आपके पास कोई वजह ना हो लेकिन आप तैयार हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जल्दी से मुझे बताइए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब ये भी आपको पता होना चाहिए कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हर जगह हमने अवेलेबल करा दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो उसके लिए आपने हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी है। उसके लिए आप नंबर डायल करेंगे जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, तो नंबर डायल कीजिएगा, उसके ऊपर नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए और ने बताइए कि भाईजान हम भी लेना चाहते हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमें कहां से मिलेंगे, और फिर वो आपको बता देंगे कि भाईजान आप कहां से जाकर परचेस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो फिर वो अवेलेबल भी करा देंगे। तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए जो कि महर इरफान सियाल साहब का नंबर है जो कि आप लोगों को रिस्पांस देने वाले हैं, और नंबर के ऊपर आप रابطہ करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा, सही तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप कहां से जाकर परचेस करने वाले हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी। तो 03-15-799-0595 ये नंबर आप जरूर से डायल कीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, बिल्कुल आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है। और ये हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते खुश आयो जी जी, शायरी लिखी था वह हमने तो

तुम्हें लफ्जों में कैद करना चाहा मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी। शोर भाई कहते कि खूबसूरती की बात हो और स्मार्ट ना हो, ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। ये तो सही बात है वैसे। और कहते घर के ताने सुनने का सबसे ज्यादा हक लड़कियों का होता है, क्योंकि हम ज्यादा घर में नहीं होते ना, तो सिर्फ आराम करने घर जाते हैं, इसीलिए हाँ ये वैसे सही बात है। और हालात हमारे साथ मौजूद है, और के जी वालेकुम अस्सलाम, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी कैसी है। और इकबाल लाशरी हमारे साथ मौजूद है, मीरपुर खास ही हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। अनवर भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते फिर ओके जी। एस एन अरबानी भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजे कैसी हैं आप, वेलकम दिल से वाइट एशियन डी।

0: इसके लिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने, तो आपने कहीं नहीं जाना, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. और हमारा साथ दीजिए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. White-ish and DA Skin Beauty Show is sponsored by White-ish Beauty Products and DA Skin Beauty Products. Lagate jaiye, khoobsurat hote jaiye.
1: This program is brought to you by
2: jade maa panjo khayal rakhandi aahe ta sehat naslan tai halandi aahe. Hi pegam Kash Foundation and Canadian Government je tarfa pesh kayo vayo.
3: Ab aapki khoobsurti ka fan White-ish Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

नाइट क्रीम है, यानी कि रात के टाइम लगाने वाली क्रीम है, और उसके अलावा ये एवोकाडो और एलोवेरा से तैयारशुदा है। तो एवोकाडो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एलोवेरा तो भाई आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। एलोवेरा से आपके चेहरे पर जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर एक्ने का मसला है वो खत्म हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन स्मूथ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाते हैं। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जल्द को नरमी मुलायम करती है और आपकी जल्द को हमेशा तरोताजा बनाए रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई हैं वो सारी आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है। और साथ साथ जबकि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है। जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन है ना वो किसी भी टोन की हो तो आपको बेफिक्र होकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और जनाब सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो ये जरूर आप देखा करें कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं। तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है, हर कोई लगा सकता है, लड़के लड़कियां सब ही लगाएंगे और साथ साथ खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है। व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप परचेज करेंगे, और साथ साथ अगर आप साबुन नहीं लगाते या फेस वॉश लगाते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है, जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ अगर आप एक्ने की वजह से शदीद वाला परेशान है तो भाई परेशान मत हो, ये वैसे भी जब गर्मियों का सीजन आता है ना तो बहुत से लोगों के चेहरे पर ये एक्ने का मसला ना ये आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप टीनेजर्स हो या फिर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उनकी एज चाहे कितनी भी हो ना, लेकिन उनके चेहरे पर अगर एक मरतबा एक्ने आ चुका ना तो उसने ये बोलना है कि भाई मां हानिकारिक होने में तो मामा इतने उन एक्ने के चो बाबा हलो आने ताजी मोकल थी भैया। तो एक्ने के खत्म कयो एक्ने जलाए डॉक्टर पिंपल इंक एंटी एक्ने जिकवाने ही ट्यूब अवेलेबल आ तमाम जलाए तमाम ही एंटी एक्ने ट्यूब लगाए सगो था जिको डॉक्टर पिंपल जी नाले सा है। डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब आहे जिको आयुर्वेदिक फार्मुलेशन

करण जो निशान आहे, कट जो निशान आहे, उन्हनि सभिनी निशाननि खे तव्हां जमा करे उते सभिनी ते तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब लॻाईंदा ऐं ट्यूब लॻाइण खां पोइ तव्हां छॾे ॾींदा। सुबुह जो उथी करे तव्हांखे दुबारा जेको पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदा त बाबा तव्हांजे चहिरे ते जेका रिज़ल्ट आहिनि अचणु शुरू थी विया आहिनि, बाबा कमु स्टार्ट थी वियो आहे। सो तव्हां लाज़मी लॻाइजो, तव्हांजी ख़ूबसूरती वधंदी वेंदी। उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा असां सभिनी जो राज दुलारो थी वियो आहे, जंहिंजो नालो आहे वाइट एज जी लवली क्रीम। सो वाइट एज जी लवली क्रीम जे तरफ़ अगरि असां अचूं त हिन जे बारे में तव्हांखे नॉलेज हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे। त वाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे न, हीअ तमामु ज़बरदस्त क्रीम आहे। वाइट एज की लवली क्रीम जेका आहे, हीअ रेडियंट आहे, अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु थियल आहे, जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल मौजूदु आहिनि, सम्झो था, जंहिंमें हर तरह जो वाइटमिन तव्हांखे मिली वेंदो, चाहे उहो वाइटमिन B3 हुजे, वाइटमिन C हुजे, वाइटमिन E हुजे, वाइटमिन D हुजे, हर वाइटमिन हिन जे अंदरि मौजूदु आहे, 30 वाइटमिन्स आहिनि, सम्झो था। उन खां अलावा वाइटमिन सां भरपूर आहे ऐं वाइट एज जी जेका लवली क्रीम आहे हिन जे अंदरि सनस्क्रीम बि मौजूदु आहे। ऐं सनस्क्रीम जेका न उहा इन लाइ भई एड कई वई आहे हिन जे अंदरि, त जीअं तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त तव्हांखे ख़ूबसूरती बि मिले ऐं तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि थी सघे। सो वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो, हिन सां तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी, तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी। तव्हां अगरि कोई भी मेकअप नथा यूज करण चाहियो, तव्हां कोई भी अहिड़ो प्रोडक्ट नथा लॻाए सघो जेको तव्हांजी जेको आहे न गर्मी जे मौसम में तव्हांखे थोरो डिस्टर्ब कंदो हुजे, त तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम लॻाए सघो था, जेका लाइट वेटेड आहे ऐं मतिलबु ईज़ी आहे। हिन जो फार्मूलो बसि तव्हां ॾींहं जो लॻायो, सुबुह जो लॻायो, मंझंदि जो लॻायो, राति जो लॻायो, जॾहिं टाइम दिलि चयो लॻायो, ऐं हिन में कोई बि एज जी लिमिट नाहे, तव्हां हर एज में लॻाए सघो था। ऐं हिन जो जेको टेक्स्चर आहे न, ॾाढो स्मूथ आहे, ॾाढी VIP क्रीम आहे। सो तव्हां लॻाईंदा त तव्हांखे पाण मज़ो अची वेंदो। सो तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम त लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। जेके माण्हू इहो सोचींदा त बाबा असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं, असां फलाणा हेवी प्रोडक्ट न लॻाईंदा आहियूं, त बाबा तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम हिकु दफ़ो मुंहिंजे चवण ते लाज़मी लॻाए ॾिसजो। सो वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां सभु लॻायो ऐं सफ़ा लवली लवली थी वञो। उन सां गॾो गॾु ई तमामु प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां ईज़ीली लॻाए सघो था, किथां बि वञी पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां परचेज़ करे सघो था। अगरि न बि मिलनि था त उन जे लाइ तव्हां डायल कयो जनाब 03-15-799-0595। ही नंबर तव्हांजे आसानी जे लाइ आहे, तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वञी पुछा करे सघो था। मिलनि था त बढ़िया, नथा मिलनि त पोइ तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे सघो था, ठीकु आहे। सो राबितो कयो बाबा, अवेलेबल कराईंदा वञो। उन खां अलावा जेको आहे न त हाणे तव्हां वञी ईज़िली वठी सघो था। सो मूंखे हीउ वारो गानो हलाइणो हुयो, हो त हरूभरू हली वियो। ओके जी, सो प्रोग्राम आहे वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट किताबनि सां। तव्हांजी सिदरा तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, मूं सां गॾु केरु आहे ॿुधाईंदा वञो पिया। तव्हांजा मैसेज आहिनि, तव्हांजा कॉमेंट आहिनि ऐं फेसबुक वारो पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, जे ख़बर पए बाबा जोश में आयो।

अच्छा किशोर भाई वो निशान भी हटजी वेंदो बस तवा लगाए रिसो कोई भी निशान आ केडी भी टाइप जो निशान आ तवा जो रिमूव थिंदो जदे तवा डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब इस्तेमाल करना सही है।

जी ओके एडम हमारे साथ कहती आप भी मुझे भी सॉन्ग सुनाओ जी मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाएंगे और ये मीरपुर खास से शुएब महर हमारा शो सुन रहे हैं शुएब आपको भी वेलकम करते हैं अब्दुल्ला महर आप क्या कहते हैं कि बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है जबरदस्त क्रीम है बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए ऐसे ही हमें बताते रहिए और गुलाम शबीर तुनियो भाई हैं फ्रॉम कंबर हाई आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून हम भी अच गया आपके शो में शो इज ब्यूटीफुल आप ही सॉन्ग तो सुनाएं मंजूर सही रानी की आवाज में है अदम

पोस्ट को लाइक और शेयर करो। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, घर जाके शो सुनूंगी, आप कहीं शायद बाहर हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को। और हमारे साथ जी अच्छा कुछ कमेंट्स ना आप लोगों के ऊपर चले गए हैं, तो जिनके कमेंट नहीं मैं पढ़ सकी हूँ तो जरा काइंडली दोबारा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये गाना किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दिया था तो उनको डेडिकेट करते हैं। अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारे भाई। गुलाम हुसैन हमारे साथ हैं, हेलो। इखलाक बलोच कहते नाइस यो आंसर, बिना वजह रेडी असान चू कुराड़ियों तीन आने इन लाए असा तैयार ही नाहूँ तींदा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा किशोर भाई कहते अदी बचपन का हमेशा दोस्त आस पास वारा पड़ोसी कदें भी सामू इंदा हुआ ये चवंदा हुआ दे खबर तैयार लगो पयो आही किथे वनी पयो छा जो साग्यो हाल अन्या ताई आहे, यानी तवा की आदत आ हमेशा का तैयार रहने जी। या वैसे सुठी गाल हुंदी थव हमेशा ये चिकना रहो। जेको मानो डेसे दे छे दियो खबर है ताडी वनी पछा बिला।

अच्छा राजा खान भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो इमरान अली उजन भाई मुमताज मलाई बिल्कुल आपको सुनाएंगे। अच्छा हिदायतुल्ला मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे। सनोला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमान वालेकुम अस्सलाम। वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है। वरियाम कैसे हैं, ठीक ठाक। और ये फिरोज अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर भाई कहते हैं जे क्रीम में एतरा वाइटामिन सूंदा ओआ क्रीम तो लाजवाब हूंदी नी। बिल्कुल बाबा बिल्कुल, तमाम इस्तेमाल जरूर कजो वाइट एसी लवली क्रीम जेके चवंदा आहिनि त बाबा असां फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा आहियूं, असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं। तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे वाइट एज़ी लवली क्रीम। हाणे ॾिसो मां हर कंहिं जे लाइ हर हिकु प्रोडक्ट खणी आई आहियां। कोई चवंदो आहे असां साबुण आहे लॻंदा, असां फेस वॉश लॻाईंदा त हुनजे लाइ फेस वॉश आहे। कोई चवंदो आहे असां नाइट क्रीम नाहियूं लॻंदा, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे। कोई चवंदो आहे असां एक्नी वारी ट्यूब लॻाइणु चवंदा, तव्हांजे लाइ एक्नी वारी ट्यूब आहे। त हर प्रोडक्ट तव्हांजे लाइ आहे बाबा। हाणे तव्हांखे भॼण कोन ॾींदासीं, तव्हांखे इस्तेमालु कराईंदासीं, तव्हांखे ख़बर पए त वाइट एज़ जा प्रोडक्ट मार्केट में आहे न केतिरा ज़बरदस्त आहे। अच्छा हिदायत लगे थे टॉपिक, वैसे आजकल वजह बनी हुई है इतनी शादियां हैं कि बंदा तैयार ना भी हो तो रिश्तेदार तैयार कर ही देते हैं इतनी गर्मी में भी। ये तो वैसे सही बात है। अनवर भाई कहते शादी वाले दिन तैयार हुए थे, सही किया था या गलत आप बताएं। सही किया था भाई। ओके जी महर इरफान सियाल साहब कहते नाइस होस्टिंग मैम आरजे सिद्धरा मुस्कान, बहुत शुक्रिया जी आपकी नवाजिशें हैं। और आपको भी वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल साहब। और टाइम आ चुका है यहाँ पर जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में। आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। टॉपिक को फॉलो करते रहिए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
1: कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: न्यूज़ तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे. अहिड़ी धमकी ज़हनी निवालपणी जनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी. ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहब स्ट्रेटेजिक संजीदगी जो मुज़ाहिरो कनि थियूं. भारतीय क़यादत ॾखण एशियाई मुल्क वई बुरान जा जंग तरफ़ धिकण खां पासो करे

पाकिस्तान के खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशन की अहमियत वधी पई। अमरीका दहशतगर्द खिलाफ़ कोशिश में पाकिस्तान के अहम ए मरकजी हिस्सेदार करार दे छो। अमरीकी सेंट्रल कमांड गडियल कामयाबियों पाकिस्तान ए अमरीका की पुरानी दोस्ती गडियल अजम की सिदी की तकासी कन थी। दहशतगर्द वारे सरगर्मियों इलाके सिक्योरिटी खतरन सबब अफगानिस्तान वाशिंगटन जो ध्यान जो मरूर है।

0: ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट्स अभी तैयार किए गए हैं। अगर आप मजीद जो है ना अच्छा वाला इन्हें प्यार दिखाते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट का जो है ना वो रिव्यू देते हैं, अच्छी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करके उन्हें बताते हैं, तो ये मजीद प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इजाफा करते जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए चाहे आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है, अगर आप डी स्किन की ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी दोनों लगाते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सकें। तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं। तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें डी स्किन की ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयार शुदा है, 2 रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। जनाब क्या बात है, समझ रहे हैं, 2 रातें बस आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाइए जनाब, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। ओके, सो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी क्या कभी बिला वजह जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे है कि तैयार होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं भाई हाँ तैयार छो थे बुला करो जरूर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे शादी ब्याह हो कोई इवेंट हो तब भी वो जो है ना वो कम तैयार होते हैं, और कुछ लोग बड़ी ऐसे होते हैं ना कि बस कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये अच्छी बात होती है, वैसे तैयार रहा करें, हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रहा करें। और ये एक और पर्सनल मेरी बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है ना आज हम कॉल्स लेने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। ओके, सो कॉलिंग वाला सेगमेंट हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम का होने वाला है 03221322N88। सो 03221322N88 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं वाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये बताने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना हम बातें करेंगे, और अगर आप भी कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल हम पिक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमारे प्रोग्राम में आ रही है तो हम जरा पिक करेंगे और देखेंगे फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम, के रस सगट मौजूद है? दुआ तव बुधी छो सब दुआ मुझी तव ये चवंदा है ना मानू केंजी दुआ लगी थी, मुझी दुआ लगी थी, बिल्कुल हुआ सो मुझी दुआ तो अरे दुआ दे हाल अवाल केड़ो प्रोडक्ट लगाई थी, कौन लगाई थी, छा कयो थी?
1: लवली
0: वरती थी?
1: हां वठो थी आया हूं।
0: थोड़ा ये पार पता दे जी मुके खबर पे तो तू वाकई लवली वठी आई हां। हलो ये न कर बाबा, ये न कर दुआ दिस। अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी? टॉपिक यो आहे त छा तव्हां कॾहिं ईअं बिना वजह तयार थींदा आहियो? कुझु माण्हुनि जो शौक़ु हूंदो आहे न बिना वजह ई बसि तयार थियण जो, वञू घर त बसि हू तयार लॻा वेठा हूंदा आहिनि ईअं। अच्छा पहिरियां थींदी हाणे न?
1: ईअं
0: छो? हाणे छो वॾा थी विया आहियूं ईअं चओ, हाणे वॾा थी विया आहियूं, अकुल अची वियो आहे। चलो दुआ कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा, दुश्मन खे अॼु बि सलाम आहिनि बसि। चलो दुश्मन खे सलाम दुआ जे तरफ़ा, सो थैंक यू सो मच दुआ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई। एकदम व्हाइट एसी लवली क्रीम लगाया था. नेक्स्ट टाइम तव्हां कॉल कई त तव्हांखे लाज़मी पुछंदमि बाबा निशानी ॿुधायो ईअं असां यकीन कोन कंदा आहियूं. सम्झो था. सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132128. नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां मौजूदु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम. अॼु इहो कहिड़ा सिजुबड़ियूं आहे कॉलियूं मायूं मायूं. ली नालो ॿुधाए पंहिंजो माई. सुणी अला नालो त ॿुधाए पंहिंजो. लेला लेला लेला ख़ुशा सदको वञाए काॾा ज़ाहिर थी आ. ख़ुशि लॻी पई आदी बि ख़ुशि आहे. ॿियो ॿुधाए प्रोग्राम ॿुधो पिया लीला. चलो मूंखे ॿुधाए टॉपिक ते लीला छा चवंदी. टॉपिक आहे बिला वजह तयार थियण शौक़ अथई या बसि ईअं.
1: अच्छा हा ॿुधो न, हर शइ असांखे तयार लॻी पई हूंदी आहे, सिर्फ़ असां न हूंदा. इन करे थी सघे असांखे न वठी वञनि त वरी मेणा मिलंदा न.
0: हा पोइ दिलि टुटी पवंदी.
1: दाना खाई खाई माना
0: ॿुधो ॿुधो लीला, घर जा ताना खाई खाई पोइ सिदरा शो में गाना ॿुधंदा आहियूं ईअं न. अच्छा लीला मूंखे ॿुधायो त तव्हां वाइट एज जा कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कया या डी स्किन जा कोई लॻाइण जो इरादो आहे या माना. चलो चलो तव्हांखे वापसी ते वेलकम चऊं था. कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदी लीला. सलाम ॾे मिड़े कंहिंखे या बसि बाए बाए कयूं हाणे.
1: सलाम तव्हांखे सुशली ऐं सीमा ऐं विस्मा
0: जी.
1: रोकसाना असांखे ॿुधी पई ऐं असां सां गॾु भाजी मौजूदु आहे.
0: जी जी.
1: ऐं बसि सभिनी ॿुधण वारनि सिंधियुनि खे सलाम.
0: चलो थैंक यू सो मच लीला असांजे प्रोग्राम में शामिल. लीला परी ॾाढी माशाल्लाह सुहिणी ऐं सुठी सबाजड़ी छोकिरी आहे. उन खां अलावा तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया जनाब. प्रोग्राम में तव्हां कॉल कयो पिया. कॉलिंग नंबर आहे 0332132128. कॾहिं कॾहिं मूंखे लॻंदो आहे शायदि मां नंबर ग़लति न ॿुधाए वञा, पर सदाईं सही हूंदो. हीअ वारी कॉल ॾिसूं था कहिड़े सां सेकंड मौजूदु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: कहिड़े सां सेकंड मौजूदु आहे. ओके रुस्तम भाउ, ख़ुशि आहियो. जी जी अलहमदुलिल्लाह मज़े में. जी जी प्रोग्राम ॿुधो पिया. टॉपिक ते तव्हां छा चवंदव.
2: टॉपिक ते इहो ई असां चवंदव की असां खां अञा क्रीम ख़रीद कोन कई आहे.
0: चलो इहो बि ज़बरदस्त आहे. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदे ॿियो ॿुधायो, तव्हांजे घोट में मिले थी वाइट एज जी क्रीम या डी स्किन जी क्रीम. जी त पोइ तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधायां थी हुन ते नंबर ते तव्हां राबितो कयो न त तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराए छॾनि. ॻाल्हि ई सवली. चलो चलो ठीकु आहे, दोस्तनि खे यादि करे वठो. जी जी फाइज़ा त वैसे बि हलाईंदा आहियूं रोज. बिल्कुल जी कॉलिंग नंबर 0332132132128. बिल्कुल जी कॉल कीजिए, आपकी कॉल हम अटेंड कर रहे हैं. आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या आप वो इंसान है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएं जरा.

0: मुझे जल्दी जल्दी से, और उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों की कॉल्स हम पिक करते जा रहे हैं। ओके सो ये वाले कॉल हम पिक करते हैं, देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सफा मजे में फारूक भाई, छाला कुशायो माशाल्लाह माशाल्लाह। मामी सफा मजे में आए, प्रोग्राम बुधो प्या बस इहो सफ़ा भलो कंदा आहियो अला। चलो जबरदस्त, मूंखे इहो ॿुधायो तबियत वग़ैरह सही अथव, ठीकु आहियो? शुक्र आहे। अच्छा मूंखे ॿुधायो हाणे वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमाल करण जे बारे में कोई इरादो वग़ैरह आहे? लवली क्रीम त वठिजो तव्हां ज़रूर।
1: चलो

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सलाम से वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद थे जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एंड स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी जनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो ये शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं. तो बढ़ाते जाइए जनाब खूबसूरती कंखे ना वणंदी बाबा हर कोई चाहींदो त असांजी खूबसूरती जेके ना वधंदी रहे. तो तव्हां वधाए सघो था जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो. ओके जी, अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त हुन जे लाइ तव्हांखे नंबर आहे जेको डायल करणो पवंदो. नंबर आहे 03-15-799-0595. ही नंबर तव्हां डायल कयो, जेको बाबा तव्हां डायल कंदा त तव्हांखे रिस्पॉन्स मिली वेंदो. नंबर ते तव्हां ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे आया आहियो, तव्हां पंहिंजे ॻोठ में अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे शहर में नथी मिले वाइट एज जी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन जी प्रोडक्ट्स, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण चाहियो था उहो तव्हां हुननि खे ॿुधायो जी तव्हांजी आसानी थी वञे, तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए वञनि. ठीकु आहे, सभ खां सवली ॻाल्हि. हुन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां लॻायो पिया. अगरि तव्हां अञा इरादो कयो आहे त बाबा एतिरी देरि इरादा न आहिनि कबा, बसि करे ॾेखारियो तॾहिं ज़िंदगीअ में अॻिते वधंदा. ओके जी, सो लुबना हमारे साथ मौजूद थी. वालेकुम अस्सलाम मेरी जान लुबी. वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक कहती हूँ, आपके साथ साथ हूँ. आज कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे नाम करो और सलाम टू माय बेस्टी जी आलिया बासी निदड़ी और सब क्यूट लड़कियों को. ओके जी, वालेकुम अस्सलाम. और निदड़ी बस कल्ला आई वरी सागो गुम थी वही, अलाए कड़ो मसलो आ छोकरी सा. और फजीला भी हमारे साथ मौजूद है. फजीला मेरी जान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. और ये है जी, हाय बाची, कल गाने जी फरमाइश मुनवर मोलाई जी आवाज में याद करो, नहीं चलाया था लाड़काना से. आप हमारे साथ हैं सोनारो बाजार खां इमरान अली बिरोही भा. इमरान भा, बिल्कुल तव्हांजी गानो मतलब याद अचे थो त तव्हां मुनवर मोलाई जो गानो चयो, पर कहिड़ो गानो चयो इहो यादि नथो अचे.

0: सो बिल्कुल मुदी वटनासी और फहद देरी सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह सलामदी अदी सफा भलिया तामदा की आयो अरीबा की थी यहाँ पे ये गाना तो लगाएं बिल्कुल जी आप ही गाना लगाते हैं आपके लिए बस ता थोड़ा सबर करना कहो और इरम भी हमारे साथ मौजूद है थैंक यू बेवस जेड ए बलोच हमारे साथ कहते हैं दरगाह साईं जमाल शाह बांदी रोड मोरो खां अच्छा कहते हैं गुलन भी घाव डिना तकंडन हे छा चवा मां पांजा पांजा न थिया त धारण के छा चवा मां या हकीकत त वाला बस कें के भी कुछ भी न जो बस मुझो प्रोग्राम बुदो वाइट एज जा प्रोडक्ट लगायो इंडी स्किन जा प्रोडक्ट लगायो बस सोना सोना थी वनो गाली खत्म और गोट मोमन तैयब थेबू खाबी बुला थेबू तवा जो शो वेरी नाइस आहे वालेकुम अस्सलाम प्यारा बा मोहब्बत हुआ तवा जो कुछ कॉल्स वठी वटू था न तो बाबा यो बुधण में तो सिदरा गालू न थी वटे दिसो सिदरा गालू वटे थी वटे दी वटे अदा ताबीदार सही ओके जी सो कॉलिंग नंबर 0332231322 तमाम भी बिल्कुल कॉल करे सगो ता ही वाली कॉल उठूंगा रिसु के रस सगर माजो दा हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: के रदो अस सगर माजो दा चलो जबरदस्त जबरदस्त बुधायो तो केड़ो प्रोडक्ट लगायो पिया
1: हाँ माशाल्लाह पाजी अच्छे सब पुछी आया यो जो खाके जानी यो जो बाबा के ऐसे कुछ साबुन
0: वठी आया जबरदस्त सही मुखे बुधायो त इस्तेमाल कयो त या अन्या पो कदो
1: हां बस इस्तेमाल हां शुरू कंदा से
0: चलो
1: पते लेडी ने देखो पाजी कुछ सब खाबो दे
0: जी जी बुधायो
1: ओ व्हाट इज ब्यूटी साबुन बनोवा खुशबूदार
0: छा गाल कजे केड़न दोस्तन के याद कंदा ओके ओके ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा बात आंजो मोहब्बत लास्ट में थोड़ो तांजो आवाज कटजी वयो वाह सही भाजो टैलेंट डाडो भलो आयो डाडो वीआईपी वीआईपी गाना उदाइंदा ना सजे प्रोडक्ट ते सो तमाम भी कॉल करे सको ता कॉलिंग नंबर आई 0332231322 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: के रस सगडा नालो बुदाय जो
2: सीमा
0: सीमा छाला खुश आयो मां भी मजे में प्रोग्राम बुदो प्या सीमा कुछ भी न माना बस बाहरी बने थे प्रोडक्ट को इस्तेमाल चलो लाड़काने में तो मिलन था रेशम गली वे ना वी अच वही इदई शॉपिंग न कई दई छ अन्या
2: न तैयारी करना वठी न
0: हां वने शॉपिंग करना त वठी जा वाइट एज क्रीम या वडी स्किन जी वाइट एज लवली क्रीम वठी अच जा चलो सीमा बे छा चवंदो ये
2: डॉक्टर शामिल कर
0: जी जी शामिल क्यों
2: ये की आपकी पानी प्रोग्राम बुझ रही है
0: जी
2: आई लेना करू आई पार्टी में पानी प्रोग्राम हो तो
0: जी
2: सिद्रा मुस्कान के प्रोग्राम होते थे
0: जी सिद्रा मुस्कान भी प्रोग्राम होते थे चलो चलो सुठी गाल माशाल्लाह थैंक यू सो मच सीमा तुम प्रोग्राम में कॉल कई जी जी चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई सिद्धरा मुस्कान भी असो प्रोग्राम बुधे भाई कॉलिंग नंबर आए 0332132238 नेक्स्ट कॉलर. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. केड़ो भास से गड़ा
1: अदी अली कुछ सवाल तो गला
0: नवाब शाह का कॉल किया. खुश आयो भा प्यारा.
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी दुआ मन जी तो खुश आयो.
0: माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया. प्रोग्राम बदो प्या प्यारा भा. नंबर प्रोग्राम बुधाए नंबर ते तव्हां कॉल करे वठो.
1: नंबर त मिलंदो इहो नंबर ते कॉल कयो ॿुधाए
0: जी. बिल्कुल बिल्कुल तव्हां कॉल त करे ॾिसो न. चलो ठीक आहे. तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराईंदा फिर जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो नंबर ते तव्हां राबितो ज़रूरु कजो हिकिड़ो दफ़ा. जी जी
1: अली अदर जमाली
0: एरम बस एरम शो
2: बस लेदा
0: आ रहे हैं बस चल रहे हैं बस चल रहे हैं बस एरम खेल लगो प्या तू कुछ लगी पया अम्मा खुशा अम्मा खुशा. अच्छा एरम बुधाया वया आयो मार्केट को चक्कर बकर आयो था इदे शॉपिंग कई था वठी आया प्रोडक्ट जके बुधाया थी शिकायत खणी आया त सर पवन कुमार वटि न मिलियो आहे प्रोडक्ट. चलो तव्हां शिकायत ते गौर कयो वेंदो. चलो ठीकु आहे. चवंदा सर पवन कुमार खे बाबा रखो क्रीमियूं वठण वारा जेके न तव्हां वटां वठी वेंदव. वञ न जंहिंजी सिक हूंदी त वेंदा ॾिस तूं पंधु करे थी न साॻो. चलो चलो एरम थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. ॿियो छा चवंदी. चलो थैंक यू सो मच. ॿियो छा बस मिनसा बि ख़ुशि आहे. कहिड़ो कहिड़ो ॿुधाए. हा सुभाणे हलायां भला हाणे त टाइम ख़तम थी वियो
2: आहे.
0: चलो ठीकु आहे. थैंक यू सो मच मुंहिंजी प्यारी बस एरम तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में. बिल्कुल जी प्रोग्राम में हाणे असां कॉलिन खे थोरो स्टॉप लॻायूं था छो त बाक़ी वञी 5 मिंट बचा आहिनि असांजे प्रोग्राम में. सो इहा असांजी प्यारी एरम हुई वीचारी जेको आहे न ॾाढा पंध कंदी आहे जेके प्रोडक्ट लॻाइणा हूंदा अथसि वञी वठी ईंदी आहे जितां किथां ॻोल्हे. सो बिल्कुलु तव्हां बि मोहबत कयो बाबा पंहिंजे चेहरे सां पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो. ऐं वाइट एस्ट जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु करे सघो था. ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु करे सघो था. तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदा तव्हांखे प्यारो सुहिणो बणाईंदा ऐं तव्हां सभु चिमकंदा वधंदा. सो कॉलिंग नंबर आहे जनाब कॉलिंग नंबर खे जंहिं ते तव्हां राबितो कंदा उहो नंबर आहे 03157990595. नंबर डायल कयो जी तव्हांजे करीबी जो स्टोर ते बि प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि. अच्छा किशोर भाई कहते कि दुआ खां धागो कराए ॾे बाक़ी खे दुआ खां वाके धागो कराए ॾियणो पवंदो तव्हांखे. तव्हांजी कॉल छो नथी लॻे.

अच्छा मुनव्वर मौलाई जो इमरान भा गानो चयो हो मरा तकेला है मरा यो बिल्कुल बिल्कुल यो गाने ताजो हलाइंदाजी पर ॾिसो करे ता हलायो और दारावन से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ है जे एम जोगी फकीर हाय सिद्रा डियर आप कैसी हैं प्लीज प्ले आबिदा परवीन जी ओके मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश भी लगाएंगे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा नेमतुल्लाह जतोई हैं नवाब जतोई हैं बहुत शुक्रिया जी बहुत

हाय इरशाद अहमद शाह हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, न्यू दिल्ली से हमारे शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है, सकरेंट से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। अकबर भुट्टो हमारे साथ हैं और आप शो में शामिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ हैं, हेलो। सैयदा बुखारी हमारा शो सुन रही है, सैयदा बुखारी वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। हाँ जी, बड़े दिनों के बाद आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, सो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि आप डेली बेसिस पर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो सके।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: देर सां ॿी इनिंग में बैटिंग जारी. पाकिस्तान ॾखिण एशिया जी तारीख़

पाकिस्तान के खिते में इस्तेहकाम लाए कोशिशन जी अहमियत वधी वही। अमरीका दहशतगर्दी खिलाफ़ कोशिशन में पाकिस्तान के अहम ए मरकजी हिस्सेदार करार दे छो। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड कॉपर है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे लाए एतमाद जोगो हिस्सेदार है जो खिते में कालदम दाइश खरासान खिलाफ जंग में मरकजी हैसियत रखे तो। अमरीका के सेनेट कमेटी के ब्रीफिंग दींदे इंतकाम सरग्राम सरबराह पाकिस्तान से मजबूत फौजी हिस्सेदारी सबब दहशतगर्द खिलाफ़ वही कामयाबी मिली है। गडियल कामयाबी पाकिस्तान ए अमरीका की पुरानी दोस्ती गडियल अजम की सिद्धी रीत अकासी कन थी। दहशतगर्दी वाले सरगर्मी ने इलाके सिक्योरिटी खतरन सबब अफगानिस्तान वाशिंगटन के ध्यान जो महूर है। अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरो बीहर खबरदार कंदे है तो ईरान जल्द का जल्द जंगबंदी करे उनके हक में बेहतर थी। जर जल्द अमन मुआदो तय न थो तो ईरान के तमाम दुख वक्त के मुंह दियण पव जो उनके वेझो पहुंची चुको है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई है तो अमरीका इसराइल के ईंदड़ हफ्ते ईरान से हमले की तैयारी मुकम्मल कर वरती है। हमला ईंदड़ हफ्ते बीहर शुरू थी सकन था। अमरीकी अखबार मूजिब विच ओभर के बिन आला अहदेदारन इसराइल ए अमरीका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शन से गौर कर रहा है जिनमें ईरान के फौजी ए बुनियादी ढांचे से वही बम्बारी नारफार्स में वाक़ ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज खारज आइलैंड कब्जो ईरानी सरजमीन के कमांडोज लाहे मलबे हेठा दबियल एटमी मवाद के कब्जे में वठण शामिल है। तवानाई की सप्लाई बाबत रुकावटन की सूरत हाल बरकरार रही तो मुआशी तरक्की मुतासर थी वे पैमाने से डिघे मुद्दे लाए मुआशी दुख्यों पैदा थन्द गडियल कौम के मुआशी और समाजी काउंसिल के इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद है तो हाणोको आलमी तवानाई सप्लाई में इंदड़ रुकावटन का असर दुनिया के हर खिते मैशियत में महसूस क्या पाया वन बारण जो कीमतों 2025 की सरस्वती भेट में बिन का टे करोड़ 20 लख मू गुर्बत में वन खतरो पैदा थोड़ा है। ओला एशिया जहा मुल्क इन बहरान में सीधी रीत शामिल ना पर असर बर्दाश्त कर रहा है। तकरार सबब सब का मुतासर मुल्क में पाकिस्तान भी शामिल है।

0: थींदी तनक़ीद करणु अपोज़िशन जो कमु आहे, असीं पंहिंजो कमु करियूं पिया, ज़रूरत पए त जवाबु ॾींदासीं। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे शर्जील मेमण चयो त वॾो वज़ीर पाण हर हफ़्ते BRT जो दौरो करे रहियो आहे, मनसूबे में देरि थियण ते आवाम सां माज़रत कयूं था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
3: क्या देख रहे हो,
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो, बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुन जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे, पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
8: पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: વાહ સાહેબ, અજય સમય આવા બધી લોક ધૂન જેમે અસાંખે બુધાયણ વાયા હવા સુગર ફકીર અલગોઝ નવાઝ અબ્દુલ મજીદ ચાંડો સાહેબ. અજય સમય હી એક તમામ ખૂબસૂરત લોક ધૂન હુઈ જેકા અસાંખે અબ્દુલ મજીદ ચાંડો સાહેબ બુધાયું. સમય હી પ્રોગ્રામ જી એફ એમ નેટવર્ક જે તસલસલ સા અસાંજે 8 એફ એમ ચેનલ્સ તે કનેક્ટ આહે. માવાજો પેંજો મેઝબાન સલીમ અહેમદ સરકારી. સમય અસા સા ગડ સિંધ જા મશહૂર મારૂફ ભલોડ સુગર મોજૂદ હન. બિના કે દેર જે અસા પેંજન સુગરન તરફ હલો થા. હાણે અસા હલંદાસી અસા જો મશહૂર મારૂફ સુગર સાઈ ઉસ્તાદ મંઠાર અલી બુગ્યો સાહેબ તરફ, જેકે અસાંખે ખુદા જે ડિને માં કુછ બુધાઈંદા. અસલામ અલૈકુમ સાઈ.
1: निहायत ही थोरायतो आया एफ एम वारन जो जिन्हें ये प्रोग्राम शुरू कयो आए तो सब सुन रहा है गुड़ो सिंध जे कल्चर जो लोक अदब जो बोली जो जैसा इन्हें वा गुर्ब कया वर कया आडो असाजे ईद उल उजाब अचे पी दिल कटे पी तो आऊँ कुछ चंद सिटू उन तरफ वा एफ एम ते अलाह कया इलाही आहिनि अहसान जो सॼी सिंध में पंहिंजे ॿोलीअ जी प्रचार थो करे. सलीम सरगाणी सकरन में विझोधो आहे जवान जंहिं सुगड़नि खे सिंध में आहे मर्ज़ ॾिनो मान. सुगड़ भला सिंध जा सभु ख़ाशा आहिनि खान के आया के ईंदा के विया के वेंदा आहे फ़ाइक जो फ़रमान. अॻियां ईद अचे पई उज़ा जी ॾिस थियो पए कामिल नबी क़ुर्बान. उन ई अलाए आका ऐं आगे आहे फ़रमायो मज फुरकान. जीअं जंहिं सुनत कई हज़रत इब्राहिम जी अला पाक थियो इंसान. जेको पासे रहे पंतन पाक जे उन ते राज़ी रब रहमान. सुगड़ सोड़ा सिंध जा ऐं सकरनि जा कनि था बारीअ जो बयान. अॼु एफ एम जो अदा आहे ॿुधियो मंथार थियो महिमान. तंहिंखे दाता ॾींदो दान हूंदो मशर में गॾु महबूब सां.
0: आऊं
1: निहायत ई थोरायतो आहियां शुक्रगुज़ार आहियां साईं सलीम सरगाणीअ जो जेको पंहिंजे हिन बाक़ाइदे प्रोग्राम खे तरतीबवार हलाए पियो. अॼु जॾहिं मूंखे बि सॾु थियो त मूं बहादुरी ॾिनी छो त मुंहिंजी नौकिरी आहे पंजनि ॿारनि जी तारीफ़ ऐं तौहीद करण जी ऐं सुगड़नि जी नौकिरी जेके सिंध जा सभा जा सुगड़ आहिनि. ऐं हमेशह चवंदो आहियां उहे सभु मूंखां भला आहिनि. ऐं कंहिं जहिड़ो न कंहिं जेॾो छो त मूंसां जेके बाह बेली अॼु हिन प्रोग्राम में सुगड़ आहिनि उहे बि अजीब सुगड़ आहिनि. ऐं उन्हनि खे बि मां सम्झां थो मूंसां खोड़ सारो टाइम थियो आहे. ऐं एफ एम खे बि उन्हनि तमामु घणो वक़्तु ॾिनो आहे जीअं उस्ताद गुलबेग जमाली मोहम्मद इदरीस जमाली हाजी नवाब संजराणी ग़ुलाम अहमद संजराणी साईं मोहम्मद कासिम ॾाहिरी हिदायत अली रिंद ग़ुलाम सेन लुंड अब्दुल मजीद चांडियो नजन खोसो केतिरनि जा नाला वठां. सभु माण्हू भला आहिनि पर आहे सॼी ॻाल्हि सम्झ जी. छो त कंहिं फ़क़ीर जी सिट आहे त सूर आहे सम्झ खे बेसम्झ सां बात करणु आहे अजाई. घुमी लठ में घिटियूं त कान्हे यारनि में वफ़ाई पंहिंजनि मां परूं कर वेही. सुहिणा आहे सचाई मोहबत वेही मामनि मां ऐं चाचा कनि चङाई. प्रीत वेही पाड़े वारनि मां वेही राजनि मां राजाई. ज़मींदारी वेही ज़मींदारनि मां वही कमदारनि मां काराई. फसल पिटा बननि कया वही ज़मीननि मां ज़ोराई. राहुनि ते रही न का घुरल आहे बटाई. तोर वेही दुकानदारनि खां जेके सोना ॾींदा सवाई. बरकत वेही बस थी जॾहिं थ्रेशर आहे आई. बरकत जॾहिं थ्रेशर आहे आई. प्यार न कर पुलिस वारनि सां कंदा भाॻियनि सां भलाई. चमा चोर खे विराटी पाई त अशराबनि घर अधु राति जो चढ़ी कंदा चढ़ाई. इंसाफ वयो अदालत मां बंद थी वकीलन जी वाई जजनाणी जुग कया बि ॾिसो क्लर्कनि जी कमाई ॿिनि साल में बंगलो बनियो इजा कार बि आहे आई त महिनत वई मज़दूरनि मां वई अफ़सरनि मां अफ़सर आई साइड न कंदा साल में कंदा कागज़नि कूड़ी कारवाई साइड न कंदा साल में कंदा कागज़नि कूड़ी कारवाई सचु चवणु सभु कंहिंखे आहे ॻाल्हि अजाई होटल ते हर को थो करे ॾिस टिपी यार टेड़ाई होटल ते हर को थो करे ॾिस टिपी यार टेड़ाई त जलाल मंज़ूर ख़ान कोन वणे तूं जलाल ॾिजांइसि जाई जे बेसुरी वॼंदी बैसुरी त बि चवंदा वाहजी अथसि वॼाई उहो पान चवंदा पप्पूअ खे तूं चांहि चङी अचु चाही मनछार माण्हुनि जी मूंखे कल पवे नथी काई तूं बुगिया कढ ॿियाई त सम्झे कंहिंजे सूर खे सभा जा सुघड़ सिंध जा सिंध ते जेका शइ ख़ुशी थींदी आहे त सुघड़ वीचारा ख़ुशीअ खे चिटींदा आहिनि जे ग़म थींदो आहे त उन ग़म खे चिटींदा आहिनि असां वटि अलाह जो महिरबानी आहिनि चारि मौसमूं हूंदियूं आहिनि सिरो बहार उन्हारो सियारो पोइ उन चइनी मौसमनि में जेको रंग थींदो आहे अलाह जे पाक ज़ात जे तरफ़ां सुघड़ उन चइनी रंगनि खे चिटींदा आहिनि जॾहिं राति थींदी आहे त राति जे सितारनि खे चिटींदा आहिनि जॾहिं ॾींहुं थींदो आहे त सूरज जे ताप खे चिटींदा आहिनि पर ख़ासि करे जॾहिं बननि ते वेही हिक ॿिए सां पंहिंजे सिंध जे गुझ जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उन्हनि खे वरी गुझार त चइबो आहे मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी गुझार त अचे पई दिलि कढे पई त आउं सुघड़नि जे सथ में वेठो आहियां त उहा गुझार त पढ़ां त ॾिसूं पाण उहे सुघड़ उन गुझारत खे कीअं था ॻोल्हनि गुझारत में अर्ज़ु थियो त जॾहिं मारवी क़ैद में आई त उमिरि खे चयो पियो अदा मूंखे छॾ त मां पंहिंजे वतन वञा उमिरि जो जवाबु आहे त मारी तुंहिंजो वतन हींअर ततल आहे तुंहिंजो वतन भिणभांग आहे सुञू आहे हिते तोखे महलनि माड़ियूं आहिनि नौकर आहिनि चाकर आहिनि खाधा आहिनि पीता आहिनि तूं वतन जी आ

0: छोती करे साईं सलीम जेॾी महिल मारीअ खां इहा ॻाल्हि हुन पुछी त मारी चयो अदाड़े उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे
1: ॾींदासीं
0: पंध गुजारत जा टई ज़ातियुनि जा सुघड़पाई जी ॾात ई अलाह जंहिंखे बख़्शे पर सुघड़नि जे साम्हूं आऊं उमेद थो करियां जेकॾहिं अखर सुठा हूंदा ऐं सोयल भली ॻाल्हि हूंदी त सुघड़ जे साम्हूं उहा गुजारत बीह न सघंदी
1: ज़रूरु
0: पंहिंजो मान माणींदी गुजारत में अर्ज़ु थियो त अदाड़े उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदा
1: वाह सही वाह अजी असां इहे हुया सुघड़ फ़क़ीर मंठार अली बुखियो साहिब जिन्हनि गुजारत ॾिनी आहे जेके असांजा ॿिया सुघर दोस्त ॻोल्हींदा अजी साईं बिस्मिल्ला
2: हा उस्ताद मंठार गुजारत अमी पढ़ो
0: अर्ज़ पे कयमि
2: जी
0: त अदाड़े उमिरि जेकर तूं छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदा
2: ज़ातियूं विझी ज़ातियुनि में
0: जी जी
2: वञी ज़ातियुनि खे ॾींदा
0: वञी ज़ातियुनि खे ॾींदा
2: वाह रे वाह तूं ईअं थो चवीं त मारुई पीउ चवे त अदा उमिरि से हड़ राति जा हिन
0: सीहड़ो
2: से हड़ इन गंढनि में विझी मां वञी फुल अख़्तियारनि खे ॾींदी
0: आहे
2: कातियारनि खे ॾींदी राति जा कातियार चथो कातियारनि खे ॾींदी
0: आहे
2: भला ईअं बि तूं चवीं थो त इहे सलाम पैगाम मान ख़त पटन में विझी मां दामर इन मलीर
0: मोकिलींदी
2: आथर मोकिलींदी ज़ात जा गंवार बि चवई थो मता चवे थो अदा उमर हीअंर जेके बरसातियूं मींग मल्हारियूं थियूं अदा उमर इन्हनि खे मां सलाम ॾींदुसि वञी मुंहिंजे इन रेढारनि पहवारनि इन गंवारनि खे ॾींदी
0: अञा
2: हिकिड़े चकर पढ़ो
0: अर्ज़ु पई कयमि त मारी उमिरि खे चए पई अदाड़े उमिरि जेकर तूं छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातियुनि में वञी ज़ातियुनि खे ॾींदासि
2: वाह रे वाह ज़ातियूं विझी ज़ातियुनि में वञी ज़ातियुनि खे ॾींदासि
1: वाह सही वाह तमामु ज़बरदस्त असांजे सिंध जे भलोर उस्ताद उस्ताद मंठर अली बुखियो साहिब जी जिन जी गुज़ारत आहे जंहिंमें मां ॾिसां थो पियो त जेके असांजे स्टूडियो में सुघड़ वेठल आहिनि त उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे पई त असां सां सुघड़ मौजूदु आहिनि साम्हूं वक़्त जो अहसासु साढा टे थियनि पिया साढे टी वॻे वठंदा आहियूं असां कमर्शियल ब्रेक पहिरीं हलूं था असां नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तरफ़ तव्हांखे केॾनि आहे वञिणो ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क असां अचूं था नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ असांजो ई अव्हांजो साथ रहंदो पूरे पंजे वॻे ताणी त असां अचूं था नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ
3: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई

0: असां जे प्यार जो तोहफ़ो क़बूलींदे त ख़ुशि हूंदे, गुलाबी गुल ही गुलदस्तो क़बूलींदे त ख़ुशि हूंदे। असां वटि इश्क अणखुट आहे, अव्हां वटि सूंह सभु कुझु आहे। ही सिक ऐं सूंह जो सौदो क़बूलींदे त ख़ुशि हूंदे। उञारा दीद जा आहियूं, बुखारा कुर्ब जा आहियूं। सवाल आहे त संगत जो क़बूलींदे त ख़ुशि हूंदे। मुहबत ज़िंदगी आहे, मुहबत बंदगी आहे। इहो उस्ताद जो गुफ़्तो क़बूलींदे त ख़ुशि हूंदे। वेलकम बैक जी एफ एम नेटवर्क जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सुगड़ कचहरी पेश कयो पियो वञे। मां वरी भलीकार चवां थो उन्हनि सभिनी सॼणनि खे जेके असांखे लाइव ॿुधनि पिया, कमकार दौरान, ड्राइविंग दौरान, जंग में माल चाढ़ण दौरान। उन्हनि सभिनी सॼणनि खे मूं सलीम अहमद तरफ़ां वरी बि सिक भरियो ऐं मुहबत भरियो सलाम क़बूल पवे। असांजे सिंध जा भलोड़ सुगड़ असां सां गॾु लाइव स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। हीअ प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क जे तसलसल सां असांजे अठनि स्टेशन चैनल्स ते लाइव आनियर हली रहियो आहे। असांजे सिंध जा भलोड़ सुगड़ पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कनि पिया। सामिन, प्रोग्राम कमर्शियल ब्रेक खां अॻु में असांजो सुगड़ मंठार फ़क़ीर साहिबु जिन गुज़ारत ॾिनी, जिन्हनि खे असांजे ॿियनि सुगड़नि ॻोल्हियो पिए ऐं उहे उते ई बरक़रार हुई, उहा ॻोल्ही न सघिजी हुई, त वरी बि असांजी मंठार साहिब वटि हलूं था जेके उनखे रिपीट कंदा। जी साईं, बिस्मिल्लाह।
1: गुजारत में अर्ज़ु हुयो।
2: जी साईं जी,
1: त अदाड़े उमिरि जेकर तूं छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदासीं।
2: उस्ताद, तूं ईअं बि चवीं पियो त हींअर जी पका पेरूं आहिनि त माई मारल पई चवे त अदा उमिरि जे तूं मूंखे छॾी त इहे पका पेरूं ऐं किरड़ राति जा बि कुरड़ थो चवे। इहे कुरड़ पका पेरूं, इहे लाल लाल चतो, इहे लाल थालियुनि में विझी मां माइटनि अज़ीज़नि सरतियुनि साहिलनि खे ॾींदी आहे।
1: भली ॻाल्हि कयव, पर अञा का ॿी ॻाल्हि।
3: भली ॻाल्हि,
2: पढ़ो पढ़ो।
1: अर्ज़ु कयुमि त अदाड़े उमिरि छॾी त आऊं ज़ातियूं विझी ज़ातनि में वञी ज़ातनि खे ॾींदासीं।
2: अञा बि तूं चवीं थो त अदा उमिरि जेकर तूं मूंखे छॾी त हींअर इहे जेके लीड़ा संगर थिया आहिनि त अदा उमिरि इहे बबुरड़ा पलड़ा रोड़े मां पंहिंजे लेलड़नि छेलड़नि खे।
1: वाह वाह, मरी वई
2: मरी वई।
3: गुजार
2: वाह वाह, सही वाह वाह, सही वाह। इहो असां

0: जमाली साहब जिन गुजरात के गोलो अच्छा साई मंठार साहब गुजरात के हाँ सजो करो अस सामान के बुधाइंदा छो जो तवी वही मेहनत है जैमें सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब जन उन्हें गोले वरतो बिस्मिल्लाह साईं सजो कयो सर
1: बिल्कुल सलीम साईं
0: जी साईं
1: ही सुगड़ पाई जी एकड़ी पहरी स्टेज आए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जे के पाण गुजार त चऊं गुजा जी गाल
0: जी जी
1: मारी के उमर चयो त तू इते भली आई हु चवेस पे मुखे छड़ त वणा पंजे वतन पर जातन के हिसाब सा त आऊं जातियों भी जी जातन में वणी जातन के दींदा से जात जा न बबर पलड़ा या संगर चूंडे पान फरमायूं ये बबरड़ा जात जा बबर बया जात जा छजड़ा टिया जात जा लैल उमर चवे तो बबर छजड़ा लैलन से मारी तुझो कड़ो वास्तु चवेस पे ना उमर मु किए भला चयस पे जेकर तू छी तू ये बबरड़ा रोड़े छजड़न में विझी वही लेलड़न के
0: दिनी
1: है सुगड़न के पा उन खोड़ सारियों सुगड़ पाई जो भलियो भलियो गाल बुधंदी
0: वाह सही वाह जबरदस्त सामान यो असाजा भलोड़ उस्ताद मंठार अली बुगियो साहब जी समीन हाँ हलंदी असो सुगड़ फकीर है गुलबेग जमाली साहब जिन्हें मैं ऑलराउंडर सुगड़ चवन आ साई जन बेन भी वजाइंदा सब कम कंदा यानी ऑलराउंडर सुगड़न उस्ताद तो मेरे उस्ताद हूँ पर हर मानू जो पैं हिसाब किताब हों साई मंठार साहब की वही मेहरबानी जिन्हें असा एक सुठी गुजारत बताई हाँ हलंदी असो भलोड़ सुगड़ है गुलबेग जमाली साहब तरफ जी असा खुदा के दिन में बुधन साई अस्सलाम वालेकुम
2: وعلیکم السلام بابا
0: سائیں کیڑا حال ہے نواں جا
2: الحمدللہ دوارم بابا سائیں سلیم صاحب خوش آیو
0: گھو اللہ جا احسان تواں بدھایو کیے پے لگے جو
2: شکر الحمدللہ بہترین
0: بھلیکار چوں تھا ہی اجو کو اسن جو پروگرام جی ایف ایم نیٹ ورک دے تسلسل سا اسن جی سجے نیٹ ورک تے کنیکٹ ہے تواں سا کے خدا دے دینے ما چھا بدھائندا سائیں
2: اساں استاد اساں جے وڈے منٹھار فقیر بگھے گزارت پڑی سر عمر ماری میں हाणे वरी सुर लीला चनेसर में मुंहिंजा अखर थींदा
0: बिस्मिल्लाह
2: त उस्ताद जा फ़क़ीर जेके गुफ़्ता पंहिंजा ठाहिया उन गुजारत जा अखर आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो सुर लीला चनेसर
0: जी बाबा
2: लाइव प्रोग्राम पियो हले सलीम साहब हाणे उन जे हिसाब सां असां सुर रखी था पढ़ूं जो टाइम थोरो हूंदो आहे उस्ताद उस्ताद मंठार उस्ताद मोहम्मद कासम
0: जी जी
2: बेहतरीन सुगड़ वेठा आहिनि इनशाला ताला त गुजारत जा अखर आहिनि त उज़्बे ते उज़्बे जी या औरत माण्हू जा ॾिसो
3: उज़्बे ते
2: उज़्बे ते उज़्बे जी या
3: उज़्बे जी या
2: हा औरत माण्हू जा ॾिसो
1: हिन सिर ते नज़र
2: आचे उस्ताद
3: उज़्बे ते
2: हा उज़्बे ते
3: टिकण ते
2: बचे
3: चौंक ते
1: हिन तिरीअ ते
3: सिरीअ ते
2: बचे
1: सिरीअ ते हिन
3: दिल ते छातीअ ते
2: दिल छाती खां बचे
3: हिन पब पेर ते
2: बच
3: हा
2: बचे
3: उज़्बे जी आ
1: सुर लीला चने
2: सुर लीला चने सर आहे त उज़्बे ते उज़्बे जी आ औरत माण्हू जा ॾिसो
3: औरत माण्हू जा ॾिसो माण्हू जा ॾिसो
2: हा
3: माण्हू जा चालाक ॾिसो
2: साईं बचे
3: होशियार ॾिसो अकाबर ॾिसो
2: बच
3: वकील ॾिसो
2: बच
3: आलम ॾिसो
2: बच
3: सियाणा ॾिसो
2: बचे
3: दाना ॾिसो
2: बच
3: हल भला जमाली
2: हा साईं परावा अखर आहिनि उस्ताद मंटार गुझा पराओ गुझा
1: बिल्कुलु बिल्कुलु हिन में को शक
2: को शक न आहे
1: गुझ खे
3: उज़्बे जी आहे
2: उज़्बे ते मोहम्मद कासम डारी
3: जी
2: हाजी नवाब खान ऐं अब्दुल मजीद बि पाण सां गॾु बहितरीन सुगड़ वेठल आहिनि पर हाणे गुजारत जा अखर आहिनि तूं उज़्बे ते उज़्बे जी आहे औरत माण्हू जा ॾिसो
1: हुन जा लक्षण त ॾिसो
2: बचे उस्ताद
1: अरकान त ॾिसो
2: बच
3: उज़्बे ते
1: उज़्बे ते हिन छातीअ ते
2: बचे
1: तिरी आहे
2: बचे
1: पर हिन दिल ते
2: बच
1: हथ
3: माण्हू जा ॾिसो माण्हू जा ही कम त ॾिसो
2: बच
3: माण्हू
2: उज़्बे ते उज़्बे जी आहे औरत मानू जा दिसो
1: पर ये चवे त ही मुझे जबान जे का है उहा मुठ में आ
2: मरी वई सड तड़के ताड़ी वाड़े मंठार
3: वाह मंठार वाह
2: वाड़े वाह
3: साईं वाह उस्ताद गुलबेग वाह उस्ताद मंठार मारी
0: वाह उस्ताद वाह वाह उस्ताद वाह ये उंदा उस्ताद गुजरात के माने बिनटन मिनटन में गोले उते ही उने के मारे छड सामिन हाँ असा गुजारिश कंदासी साईं गुलबेग जमाली साहब जन के जेके सजो कर गुजरात के साईं मंठार साहब जन जी मेहनत है इन मिंट में जेका है गुजरात के गोले वरतो जी साईं सजो कयो
2: हां से गुजरात मुजी सलीम उस्ताद मंठार गुजरात मुजी मारे वयो उस्ताद मंठार अखर है न
3: हां जी
2: अर्थ जा अखर है न तो उजबे ते उजबे जी या औरत मानू जा दिसो
3: बिस्मिल्लाह वाह
2: उस्ताद मंठार जड़न उस्ताद जा असा भत धोराया गुजारत औ पांजी ठाहे पांजी पढंदो या बेजी गुजारत न पढंदो
3: वाह वाह
2: सुर लीला हाने लीला त बादशाह दादी हुई
3: बेशक
2: पर हार दिसी कौरू वट पांजो मुड़स चनेसर बादशाह के विकणी हार ते खपाए हाने जने जो घर मोटी आई त चनेसर बादशाह ने के तड़े बहर कडी छड्यो तो मु मुड़स के हार ते खपायो मां बादशाह हो सर जे तू मुसा गाल करिया तेड़ा सौ हार मां तो के वटी दिया
3: बेशक
2: ही ते कार पर तू उजबे ते तू हार ते तू चरी थी पई आई
3: बराबर
2: हाने हने के चनेसर बादशाह घर मां तड़े बहर लिहोर जे शहर मां कडी छड्यो हाने हेडा वने पंजे मां जे घर त माबर तड़ेस वरी उता अचे तो वरी चरेसर बादशाह तड़े बहर कडेस
3: हाने
2: लेहोर जे बाजारन में मोहम्मद कासम उस्ताद मंठार लीला बादशाह दादी आ पर ही रुगो रोए पई रड़े पई अचे पई वने पई बाजार में
3: लीलाए पई वाह
2: हाने अचे पई वने पई अचे पई वने पई तो पो ओड़े पाड़े जो मायू बाजार में बिठियो न अकुल वारियो ओए एक बेखे पियो चवन ही तो बादशाह दादी लीला आया जिन के छा थिया जो लिहोर जे बाजारन में रुले पई जे रोए रड़े पई दाऊ पई करे
3: वाह
2: उतां जे औरत हिकड़ी बहन के का सियाणी औरत के ने गाल जी खबर हुई उन जो तो तोखे अधी खबर ना है तिन माई केड़ो किरदार कम कयो
3: वाह
2: के मुख्य खबर ना है के मुख्य खबर ना है पो हन लीला सा हाने ओहा औरत पई गाल आयो हन बेन मायन सा त ही हन माई केड़ो कम कयो ची उजबे ते उजबे जी या औरत मानू जा दिसो साईं उजबो आहे मणको उजबो आहे मणको उजबे जी आहे मुठ अमा मुठ चई आ उजबे जी आहे मुठ
3: जी
2: औरत आहे कमीणी मानू जो आ किरदार
0: वाह वाह वाह वा।
2: उने में सलीम साहब अखर आहे न तो उजबे ते उजबे जी या औरत मानू जा दिसो इए ना अखर आहिन त वो इहा मणके ते मुठिया हाणे इन कमीणी जा किरदार ॾिसो
0: वाह साईं वाह वाह साईं वाह वाह साईं वाह तमामु ज़बरदस्त सामान वक़्त जो हिसाब 3:45 थी विया वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो अव्हां खे केॾे नाहे वञिणो ॿुधंदा रहो जी सकरे नवाब शाह एफ एम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां ऐं असांजे अठनी चैनलनि तां हीउ जी एफ एम नेटवर्क जे तसलसल सां प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे असां चऊं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ असांजो अव्हांजो साथ रहंदो पूरे 5 ताणी केॾे नाहे वञिणो अचूं था नंढड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: क्या दे

0: रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: वेलकम बैक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वरी अरवा सभिनी सजणनि ॿुधंदड़नि खे भलिकार वेलकम ऐं जी आया नू जेके बि असांजा सामाइन असांजा भाइर असांजूं भेनरूं असांजा बुज़ुर्ग असांखे ॿुधनि पिया असांखे कनाए रहिया आहिनि घर झंग कमकार दौरान या ड्राइविंग दौरान उन्हनि सभिनीनि सजणनि खे बि मां वेलकम भलिकार चवां थो। अॼु असां में हीउ प्रोग्राम जीअं मटियारी हैदराबाद एफ एम 91.6 जीअं मातृ एफ एम 90.4 जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जीअं मीरपुर खास एफ एम 88 जीअं लाड़काना एफ एम 88 ऐं जीअं सखर एफ एम 88 ऐं जीअं सकर नवाब एफ एम 90.8 जे लाइव स्टूज मां पेश कयो पियो वञे। असां सां गॾु सिंध जा मशहूरु ऐं मारूफ़ सुघड़ मौजूदु आहिनि। अॼु असां में मां तव्हांखे वरी ॿुधाईंदो हलां जंहिंमें असां सां गॾु मौजूदु सुघड़ आहिनि जंहिंमें उस्ताद सुघड़ फ़क़ीर मंठार अली बुगियो साहिबु, उस्ताद सुघड़ फ़क़ीर गुलबेग जमाली साहिबु, उस्ताद सुघड़ फ़क़ीर मोहम्मद कासिम डायरी साहिबु, उस्ताद सुघड़ फ़क़ीर हाजी नवाब संजराणी साहिबु ऐं अलगोज़े नवाब सुघड़ फ़क़ीर अब्दुल मजीद चांडियो साहिबु जिन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अॼु असां असांजो प्रोग्राम आहे जारियो सारी। असां हाणे हलंदासीं पंहिंजे भलोड़ सुघड़ उस्ताद सुघड़ फ़क़ीर मोहम्मद कासिम डायरी साहिबु तरफ़। साईं अस्सलाम अलैकुम।
1: साईं वालेकुम सलाम सलीम साहिबु, कहिड़ा हाल आहिनि साईं?
0: साईं दुआऊं अलाह जा एहसान, अव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो
1: अलहमदिल्ला, शुक्रु आहे अलहमदिल्ला।
0: साईं तव्हांखे भलिकार चऊं था, जी एफ एम नेटवर्क ते ई प्रोग्राम लाइव हली रहियो आहे। तव्हां असांखे ख़ुदा जे ॾिने मां छा ॿुधाईंदा साईं?
1: साईं गुजार त पढ़ंदासीं, छो त गुजार त जी सनफ हले पई।
0: वाह वाह बिस्मिल्ला।
1: उस्ताद गुलबेग गुजार त चवे थी, जर जो नालो कई, जर जो नालो कई, तोखे रांदि जी हुई कान, तॾहिं त इल्म जी कई।
2: जर जो नालो कई,
1: जर जो नालो कई,
2: हा
1: तोखे रांदि जी हुई कान,
2: हा
1: तॾहिं त इल्म जी कई।
2: वाड़े वाह।
1: जर जो नालो कई,
2: जर जो नालो कई,
1: जर जो नालो कई,
2: हा
1: तोखे रांदि जी हुई कान,
2: हा
1: तॾहिं त इल्म जो कई।
2: तूं ईअं थो चवीं?
1: जी वाह।
2: तूं थो चवीं त इहो इश्क पंहिंजो पूरो न कई, तॾहिं त बस कई।
3: इहो जर जो फुल तार त कई,
2: ही दिलो मट त कई।
1: वाड़े वाह।
2: अञा पढ़ पढ़।
1: जर जो नालो कई, तोखे रांदि जी हुई कान।
2: तूं ईअं थो चवीं त ही ही वेढ़ो वेरान कई, तोखे तो शुद्ध समा हुई कान,
1: बचो
2: कल हुई कान,
1: बचे
4: खराब सजो ख्वाजा कई,
3: टे तो सफा हुई कान,
1: बचो
4: खराब सजो ख्वाजा कई,
1: बचे जर जो नालो कई, तोखे रांद जी हुई कान, तॾहिं त इल्म जी कई।
2: भला ईअं थो चवे त दिल ही तमना पूरो कई,
1: जी
2: शुद्ध समात हुई तोखे कान,
1: बच
2: तोखे कल हुई कान,
1: बच
2: तोखे इश्क हो ई कोन,
1: बचे
2: पढ़ पढ़।
1: जर जो नालो कई, तोखे रांद जी हुई कान,
2: हाणे मुझे
4: मणियो मिठो कई,
2: मुझे समझ में हाणे जड़ो मरे पई।
1: हां
2: तू ई तो चमे ते ही वकार पंजो खराब कई,
1: बच
2: ही खानो खराब कई,
1: बच
4: एतबार यकीन विनाई,
0: हाजी नवाब संजराणी
1: साहिब
0: हाणे सॼो कयो
1: सुर आहे उमर मारवी गुलबेग
2: जी।
1: जॾहिं उमर पा थिया मारवीअ खे भालुआ जे खूह तां खणी अची उमर कोट में कैद कयो। हाणे जंहिंमहिल कोट में पहुती आहे त मारवी उमर सां ॻाल्हाए पई।
2: वाह वाह।
1: मारवीअ जो ॻाल्हाइण,
2: वाह
1: चवेसि पई त जर जो नालो कई, तोखे रांदि जी हुई कान, तॾहिं त इल्म जी कई।
2: वाह
1: साईं जर जो आहे वाह,
2: जर जो आहे वाह,
1: वाह
2: वाह
1: नालो आहे नौरंग,
2: वाह
1: रांदि जी आहे तास
2: जी,
1: साईं पते जी तास थींदी आहे
2: जी,
1: इल्म जी आहे मंज़िल।
2: हल
1: हाणे चवेसि पई मारवी त वाह जो नओं रंग कई,
2: वाह
1: वाह जो नओं रंग कई, तोखे तास हुई कान, रुगो मंज़िल कई,
2: रुगो मंज़िल कई। वाडारी वाह, ताड़ी लॻे थे, वाह वाह वाडारी वाह,
0: वाह सही वाह,
2: वाडारी वाह, वाडारी
0: वाह, वाडारी वाह, वाह मोहम्मद कासिम
2: वाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन।
0: अॼु समय हाणे हलंदासीं सुघड़ फ़क़ीर उस्ताद हाजी नवाब संजराणी साहिब तरफ़। साईं अस्सलाम वालेकुम।
3: وعلیکم السلام سائیں
0: سائیں کیڑا رے نواجا
3: الحمدللہ اللہ جا سائیں تو خوش ہو خیر
0: سائیں دعاؤں اللہ جا احسان سائیں اما چھا بتھائندا اسا کے خدا جے دینے ما
3: نڑ پے تے تھیندا
0: واہ واہ زبردست
3: کے بیت یاد جیان حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائرن خوہ میں اچھلایو
0: واہ
3: حقیقت کرے دا بدھایو انشاءاللہ تمہاں کے پسند دی بدھن وارن کے پسند دی آیو ساتھو سو داگر

छपर रखी दगा दिल में क्या जालम जोरावर खड़ी मिदाऊं खूह में उछले या बंदर वरी न मुंडे भरिया जी कांधी छदे मजन मंझ कपर कहड़ी खबर कयाऊं कायम फकीर जयूं हकीकत कुल थई हाजुर।

वाह जी साहब वाह वाह साईं वाह वाह जी वाह वाह जी वाह अज लै किथे हाजी साहब पहुंचाए छो नड बैद सा जबरदस्त हाजी साहब सामिन हाने लंदासी असो सुगर फकीर गुलबेग जमाली साहब तरफ छो जो टाइम तमाम शॉर्ट है उनका न्यूज़ ब्रेक तरफ हलणो है कमर्शियल ब्रेक तरफ जी साईं गुलबेग साहब ब मिंट जी साईं।

आऊं गोरी आया तन बिठी निहारिया बंदर ते मुझा मुसाफिर चल बोटन जली अथम दामन दस्तगीर जी मां पूजा वेठी पीरन से कदई दम कायम दीन चै मुख्यू अखड़ियूं वरी।

0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। असां भई टाइम ई गुज़रे पियो, ख़बर ई न पई पए, ॼण सेकंड गुज़रनि पिया। असां भई असां सां गॾु असांजे सिंध जा भलोड़ सुघड़ मशहूरु मारूफ़ ऐं असांजा जेके इनाम याफ़्ता सुघड़नि जेके टी वी चैनल्स ते बि ईंदा आहिनि, असांजे सकरनि जी सूंह आहिनि। असांजे सकरनि जे आसपास जा सुघड़नि मां तमामु थोराइतो आहियां असांजे सुघड़नि जो, जेके पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी असां वटि ईंदा आहिनि। साम्हूं वक़्त जो अहसासु चारि थियनि पिया, वक़्तु आहे न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जो। त पहिरीं असां हलंदासीं न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक तरफ़। तव्हांखे केॾे न आहे वञिणो, ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क। असांजे अठी चैनलनि ते हीउ प्रोग्राम यकमुश्त कनेक्ट आहे। असांजो अवांजो साथ रहंदो पूरे पंजे वॻे ताणी। अचूं था नंढड़े शॉर्ट कमर्शियल ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ।
1: इट्स 4 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: पाकिस्तान के खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशन जी अहमियत वधी पई। अमरीका दहशतगर्दी खिलाफ़ कोशिशन में पाकिस्तान के अहम आयम मरकजी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ इतमाद जोगो हिसेदार आहे जेको खिते में कालदम दाइश खिरासां खिलाफ़ जंग में मरकज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जे सेनेट कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे सेनेट काम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली आहे। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधी रीत अकासी कनि थियूं। दहशतगर्दीअ वारनि सरगर्मियुनि इलाइक़े सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो महूर आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन वाइदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो जेको हुन जे वेझे पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिन आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन ते गौर करे रहिया आहिनि जिन में ईरान जी फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बीमारी नार फाट्स में वाक़िए ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ खारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। तवनाई जी सप्लाई बाबति रुकावटनि सूरतहाल बरक़रार रहे त मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी। वॾे पैमाने ते ड्रिघे मुदे लाइ मुआशी ॾुखियाऊं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद चयो आहे त हाणोकी आलमी तवनाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटनि जा असर दुनिया जे हर खिते ऐं मैशियत में महसूसु कया पिया वञनि। ॿारनि जूं क़ीमतूं 2025 जी सरासरी भेट में भेण खां ॿीण खां वधी पियूं आहिनि। वधीक 3.20 करोड़ माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी पियो आहे। ओला एशिया जा मुल्क हिन बहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे। सदर आसिफ अली सरतारी चयो आहे त इतमाद जोगी राब्तकारी माशी तरक़ी ऐं अवामी ख़िदमतनि खे हथी ॾियण लाइ अंतर आहे। डिजिटल राब्ता अॼु तालीम सिहत वापार ऐं अवामी ख़िदमतनि जी बुनियादी ज़रूरत बणिजी चुका आहिनि। पर्यावरण इलाइक़नि में डिजिटल पहुच माशी मौक़नि ऐं ॼाण ताईं पहुच जो अहम ज़रियो आहे। टेली कम्यूनिकेशन ऐं इंफॉर्मेशन सोसाइटी जे आलमी ॾिहाड़े ते सदर ज़रदारी आईटी वज़ारत ऐं पीटीए मोबाइल ऑपरेटर जी ख़िदमतनि जी वाखाण करे चयो त हुकूमत समूरे मुल्क में डिजिटल पहुच ऐं राब्तनि खे हथी ॾियण लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त नेशनल AI पॉलिसी 2025 हिकु इनकलाबी क़दम आहे जेका पाकिस्तान में एतिरादु ज़हनत जे माहौलियाती निज़ाम जी तरक़ी जी ज़ामिन आहे। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ीअ सां तरक़ी करे रहियो आहे। 5G स्पेक्ट्रम जे कामयाब ऐं शफ़ाफ़ नीलाम डिजिटल पाकिस्तान तरफ़ अहम क़दम आहे। कोकेन डीलिंग जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार अनमोल पिंकी सुञाणप कार्ड ऐं पासपोर्ट जी कापी साम्हूं अची वई। दस्तावेज़नि मूजिबि जवाबदार पिंकी 17 अप्रैल 2018 ते कराची मां पासपोर्ट हासिलु कयो जेको 2023 में एक्सपायर थियो। जवाबदार पिंकी सुञाणप कार्ड पे कराचीअ मां 6 डिसंबर 2016 में हासिलु कयो ऐं पतो गुलशन इक़बाल जे अबुल हसन रोड जो लिखियलु आहे। ज़रियनि मूजिबि पिंकी जे कुटुंब जी पासपोर्ट ऐं सुञाणप कार्डनि जा तफ़सील बि हासिलु कया विया आहिनि। पिंकी जा सफ़री दस्तावेज़ हासिलु करण जी बि कोशिश कई पई वञे। जांच अख़्तियारनि मूजिबि पिंकी नालो तब्दील करण हिकु ॿियो सुञाणप कार्ड ठाराइण जी बि कोशिश कई। मामले जे मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच कई पई वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलिना में मुड़े ईंदड़ महीने पिंक टैक्सीज़ आणण जो ऐलान कंदे चयो आहे त पाकिस्तान जी पहिरीं टैक्सी सर्विस हिन में शुरू थींदी। असांजी कोशिशि आहे त जल्द खां जल्द BRT शुरू थिए जिन खे सियासत ऐं तनक़ीद करणी आहे उहे भली कनि। असीं पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं, ज़रूरत पई त जवाब ॾींदासीं। कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे शर्जील मेमण चयो त मंशियात समूरी दुनिया जो मसइलो आहे। बदकिस्मती सां असां मंशियात खे संजीदगी सां न वरितो। जवाबदार पिंकी हिकु ज़र वेकिरो कंदड़ औरत हुई। ऐं कंहिंजो नालो नथो खणणु चाहियां पर हीउ पूरो नेटवर्क आहे। ऐं कंहिंजो नालो वठंदुसि सोशल मीडिया ते मीम्स ठहंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। KTN News.
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हांजे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
7: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
8: सुनते रहो GFM 90.8।

0: दिलबर आख्या दिल खसवे सई हिक हिक अख खिल सई बी अखरो सई ससई कू किवें पुनल रोआया सोने कू साहड़ तड़पाया चाह चके से पिछे खिल पोसें मजनू नाल जो लैला कीता वामिक नाल जो अजरा कीता मैं भांधा हाँ सब सुध हो सई तू नूरी मैं तेडा तमाची मंछर कींझर झोक कराची गाल असाडी गली गली गोसे माशू कांदा होसे मयारी करणी पोसई मिंथ तेजारी दाग बुखारी रोहण धोसे हिक अख खिल सई बी अख रोसे। वेलकम बैक न्यूज ए कमर्शियल ब्रेक का बको रबी अरवा सबनी सजणन बुधदणन प्यारन मोजन बैनरन भायरन बुजुर्गन आई मोजन लिसरन लिसरन के वेलकम भलीकार आई जी आयानु जे समय ही प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क के तसलसल सा असा जे अठनी एफ एम चैनल ते कनेक्ट आ है मां के जा नाला खणा वरी अमा के बुधाइंदो हला त ही प्रोग्राम जी ए मटियारी हैदराबाद 91.6 जी ए मात्री एफ एम 90.4 जी ए मैरापुर एफ एम 90.4 जी ए मिरपुर खास एफ एम 88 जी ए लाड़काना एफ एम 88 जी ए सखर एफ एम 88 आई जी ए सकर नवाबशाह एफ एम 90.8 जे लाइव स्टूडियो में गडियल प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे अजिया समय ही लाइव स्टूडियो में असा सा सुगर मौजूद आन असाजे सिंध जा भलो सुगर आई मां वांजो पेंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगणी मामा के वरी बुधाई दौला असा सा गड उस्ताद सुगर फकीर मंठार अली बुगे साहब सुगर फकीर उस्ताद गुलबेग जमाली साहब सुगर फकीर उस्ताद मोहम्मद कासिम डायरी साहब सुगर फकीर हाजी नवाब संजरानी साहब अलगोजे नवाज अब्दुल मजीद चांडियो साहब जी समय ये असि कचहरी अवाजे लाए जी एफ एम नेटवर्क के तसलसल से पेश कई पी वे असा वहाँ गडी पूरे पंज वगे ती हाँ हल्दी असो सुगर फकीर मोहम्मद कासिम डायरी साहब तरफ जी साई
1: जी साईं
0: छा बुधाई हाँ अवा अस खुदा जो दिन असाजे सामने
1: सलीम साहब गुजारत जो राउंड हली वो
0: बिस्मिल्लाह
1: हाँ वरी तहके वरी कुछ बैत बुधाई था
0: वाह वाह
1: गुलबेग फकीर बैत से आए तो जेडो तुझो नाव बाज पे ओडियाई मंगा
0: वाह सही वाह
1: जेडो तुझो नाव बाज पे ओडियाई मंगा री थंभेरे थोणी छपर तू छां
0: वाह सही वाह
1: आऊं कुजाड़ो कहां तोखे मापर तू छां
0: वाह सही वाह
1: आऊं कुजाड़ो कहां तोखे मालूम।

0: हे कीन वली थियन जन जो इश्क अल्लाह सा
1: वाह सन वाह वाह
0: पर फकीर गुल बेग बैत जदो सर हो सागया पखी मजन ब्या पर सजी गाल इंसान ते आ
1: हाय हाय
0: सर हो सागया पखी मजन ब्या जन लम्यो पे लातू कयो से वेचारा व्या अची जन पाटू दर प्या तन हणी किंझरे किनू कयो
2: वाह सही वाह वाह मोहम्मद कासिम वाह वाह सही सही
0: सही पाए तो गुलबेग फकीरा रुगो काबे अग्यां जे सखणा सिर झुकन रुगो काबे अग्यां जे सखणा सिर झुकन एहराम उजड़ा करे बीणा खणी बधजन पर नियत नेक नाहे ऐं निमाज़ू पिण पढ़जन
2: वाह सही वाह वाह
0: चुम जे चाठ रसूल जी ऐं रोज़ा पिण रखजन तप मौला ऐं महबूब ॿई था दाइम दिलियूं ॾिसन पोइ कलब जॾहिं थो कलब थिए त पोइ दोहरा दान मिलनि तालब मौला तलब में जन मोहब्बत रख भी मन हज हजार कजन तब दर्जान दिलन ते
1: वाह कासिम साईं वाह वाह मुमताज वाह
2: वाह वाह वाह वाह
0: पर वरी असा जे पाड़े जो शायर आ हमल फकीर लिगारी वरी हमल फकीर चयो आ त तोड़े जिक्र करी जुबान सा लखे लैल निहार तोड़े जिक्र करी जुबान सा लखे लैल निहार तस्बियूं थुलियूं तोड़े अस्तगफार तोड़े वेस वडा करी हमल चवे हजार तप दोस्त वट दरकार दुको आ एक दिल जो
1: वाह
2: वाह दा मोहम्मद कासिम
1: वाह वाह
0: वाह पर नहीं वगैरह पैता है ताही कीमत संदो कतरो त कावड़ छड़ दो कटे फकीर जदो पहरी तू सोच पैदा किथा थियो ही
1: वाह
0: आही कीमत संदो कतरो त कावड़ छड़ दो कटे हित घुमी दो हे कांदो वाह वाह शपर वटे पर मिट्टी घर मलूक चे तो साजुर इंदा सटे पो जारी जारी कबर अंधारी पो न दिसंदे पटे मामा चाचा बाबो भाईर तो के लालण इंदा लटे आही डीह बटे हल अदब इखलाक सा
1: वाह साईं वाह वाह
0: पर आही कीमत संदो कतरो छड वाह तखे न विसारे अवल आखिर आही सोने रब जे सहारे सीनू साफ करे छड ब्याई के बोहारे इहो सबक साईं दिनो आ पिरी पैगंबर प्यारे त मौत अथई मथां वींदे गिफ़लत मंझि गुज़ारे प्यार कर पंज तन सां त तार मां छॾींदी तारे लॻ तन सजणनि जे सहारे त कंदी माड़ मुख़्तियार छा चए पर आकिल ऐं बेअकुल ॿई चरखो न सघनि चोरे ही सच ॻाल्हाईंदो सफ़रो तारा जी जीअं तोरे ही वेठो वात वॼाईंदो कंहिं थधे न थोरे सलाह कजे कंहिं सुपते सां ॾाहे सां ॾोरे अकाबर सां अबासी चए अचो ओर मिठा ओरे बेअकुल कॾहिं बाज़ न ईंदो तोड़े घर ॾिजे त घोरे जेको न जीअ में झोरे त खां मट जुमो मलोक चए पर अकुल वारो अकुल सां जोड़े ॾींदो जवाब अकुल वारो अकुल सां जोड़े ॾींदो जवाब बेअकुल पियो बक कंदो करे होॾ हिसाब साल क समझदार सां थी सा त पल सवाब मिठल ॼट मलूक न थिए तोड़े ॿधे कंध किताब पर सम्झण वारा सम्झनि पिया हिकु जुमिले साण जनाब बाक़ी रिढनि अॻियां रबाब खे वॼाईंदे वरह थिया पर गुज़री वियो जो वक़्तु सो मोटी न सारजे गुज़री वियो जो वक़्तु सो मोटी न सारजे बेसमझ सां अॼायो मथो की न मारजे अॼुकल्ह बसि ग़रीब थी घर में गुज़ारजे अहिड़ो कजे तजुर्बो जो पथर पघारजे पर दुश्मन खे हथ सां की न की रस्तो ॾेखारजे इहा कुदरत ख़ुदा जी आहे असांखां आहे दादना सो बि टहे थो तंहिंखे न भरिसां बि हरदम पंहिंजे ख़्याल खे सुठो हलाइजे हरदम पंहिंजे ख़्याल खे सुठो हलाइजे शरीयत खां हरगिज़ न ॿाहिरि पेर पाइजे
2: बेशक
0: हक़ जे हुकुम खे भला छो लिकाइजे खोले मुस्लमाननि खे हिकदमि ॿुधाइजे
2: वाह
0: परहेज़गारीअ जो ख़ुदा हुकुम कयो क़ुरान में छेर ॿधी छो भला औरत न चाहिजे
2: वाह साईं वाह वाह
0: खॾ में अहिड़ो खटियो पए त पिनी खाइजे कोशिश करे औलाद खे इल्मु पढ़ाइजे
2: बेशक बिल्कुलु
0: कोशिश करे औलाद खे इल्मु पढ़ाइजे बाक़ी क्यारी कूड़े न तंहिंखे नाचू बनाइजे पर फहम ऐं फज़ीलत सां वेही राग ॻाइजे बाक़ी खदड़नि वांगुरु ख़्वार थिए असीं त दादन फ़क़ीर जी दिलि सां लाइजे पराई औरत जे पुठियां छो था पंहिंजी हड़ फुराइजे
2: वाह
0: वाह वाह वाह

0: गदला भरी गप में का चिकन भरी चोटी मीम रख मन में का अल पसंदी ओटी तह दिल ताजल छाचे हिकड़ छोड़ी त बियन जोटी यार नियत छ खोटी रिढ़ी तरसी रब के पर असे चे तो ही किस्सो ना है नऊ आहे मिड़ी के मालूम मत
1: वाह वाह डहरी वाह
0: ही किस्सो ना है नऊ आहे मिड़ी के मालूम मत की न वधंदी वने पी हर शे जी कीमत
2: बिल्कुल
0: सठ सैकड़ो सौ में भी कई रुगो मान मिलावट
2: वाह
0: अज मशीनू अची हुई मुल्क में वधी हुई हरफत हार वेचार कम छे ना जे फिर कन फरहत मानून कया मथा उघाड़ा पई है उन्होंने भी आदत पर मुहजा अच्छा कलब जा कारा मोर न थन मोहब्बत अज पुट न मने तो पी के कंधा निपायल नफरत पुट न मने तो पी के कंधा निपायल नफरत पर ढो मानू को डोह करे तो ओडी मल इजाजत ढो मानू को डोह करे तो ओडी मल इजाजत वाड़े वडेरा वाह तुझे करे कई आ मुझा सूबेदार भी सहूलत बाकी कोनी डोह गरीब जो जे पोहियो कन पोहियत पर मोर न सुणन मर्ज के वही हाँ हकीमन मां हिकमत मोर न सुणन मर्ज के हाँ वही हकीमन मां हिकमत मरीज पहतो पैसा पूरा खासी कंदा खिदमत स्टोर भी उन्हनि जा पंहिंजा जेके सुठी ॾियनि सिखत मेड़ी माल मिसकिन मां ॾिसो यार दोखे सां दौलत पर कोन्हे शौक़ु शागिर्दनि खे वई हाणे मास्तरनि मां महिनत तॾहिं त कापियूं हलनि पियूं कॉलेजनि में इहा हले पई हरकत तॾहिं त नौकिरियूं मिलनि पियूं नाणे ते रुगो आहे रिश्वत तॾहिं त नौकिरियूं मिलनि पियूं नाणे ते रुगो आहे रिश्वत पर कहर लॻो पियो आहे कश्मीर में जिते नाहे दाद न दरिया जे पढ़ूं त अख़बारूं त दाकारी आहे क़यामत
1: अलाह
0: शायदि दजाली दौर आहे परोर खे पारत हिते थींदी अदालत अॻिते सोलंगी जहिड़ो आहे दुनिया ते
1: वाह डारी वाह वाह
0: पर ए मुंहिंजा ख़ुदा ए मुंहिंजा ख़ुदा तूं बेपरवाही बारी
1: वाह
0: ए मुंहिंजा ख़ुदा तूं बेपरवाही बारी किन खे सघ ॾिनी संधनि में के लंगड़ा कई लाचारी
1: हाय हाय डारी
0: किन खे ॻारी गणतियुनि में किन खे बदन में बहारी के मोगा कई मुल्क के मोगा कई मुल्क में किन खे होश घणो होशारी के खान सुमारी खटुनि ते किन खे पट ते ॾिनी पाथारी
1: हाय हाय
0: किन खे खान सुमारी खटुनि ते किन खे पट ते ॾिनी पाथारी किन खे दौलतमंद कई दुनिया में किन खे उमिरि सारी
3: प्रारी उस्ताद साहब उस्ताद बुखारी जो मोकिलियो अखियां बादाम चपल गिदरे दियां चह बुक वांगूं चेल नरम बाहां बेद मुश्क दियां शाखां बाग बदन उस्ताद बुखारी खुशबू मोहब्बत वांगियां जी असमिन अवां ॿुधो पिया GFM नेटवर्क जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सुघड़ कचहरी पेश कयो पियो वञे असां छोरो मारू सुघड़ हाणे हलंदासीं उस्ताद सुघड़ फ़क़ीर फ़क़ीर मंठार अली बुघियो साहिब तरफ़ जेके असांखे कुझु ॿुधाईंदा साईं बिस्मिल्लाह
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम
3: बिस्मिल्लाह साईं
4: दोस्तनि जे साम्हूं हिकु भेरो बीहर इनायतूं
3: बिस्मिल्लाह
4: साईं बुखारी जी हिकिड़ी सिट मूंखे यादि पई अचे
3: वाह वाह
4: पाण फरमाईंदो दिल भर दलियांदा वापारी तूं मैडी दिल बि चुका
3: चिंदड़ी
4: दा त गिन मैकू यार उका चा जे मर्ज़ी है मॾे मारण जी तॾहिं अख वाला तीर भुका चा जे करणा है उस्ताद बुखारी त यार जल्दी ॻाल्हि मुका चा ॻाल्हि ॾाढी भली सुघड़नि ॿुधाई आहे दिल कॾहिं पई सुघड़ पाए जो कुझु सिटूं मुंहिंजे साम्हूं अचनि पई
1: उस्ताद मंटार हिकिड़ी ॻाल्हि अवां जी मां रखियां थो इहो असांखे उस्ताद बुखारी जो बैत ॿुधाए तकिड़ा आहे तकिड़ा वेंदे
4: हिकु बिल्कुलु
1: ॻाल्हि उस्ताद बुखारी जी हले पई
4: बिल्कुलु ॿुधाइबो मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो छो त हीअ FM आहे ऐं सॼी सिंध वारनि जे लाइ हिकिड़ो सुघड़नि जो मैसेज आहे त पंहिंजी ॿोली पंहिंजे लोक अदब ऐं पंहिंजे सकाबत खे बरक़रार रखूं अदब उस्तादनि जो कन तलब मां तालिब ज़ाहिद ज़माने में अखरांदा अरबाब तूं मंथार मोहबत जो बाबू पर बाब थींदई सव सवाब अदब साण उस्ताद जी
3: वाह साईं वाह
4: उस्तादनि जी ॻाल्हि हली पियो हुन जे करे मुंहिंजे साम्हूं बि उहा सिट आई अवां जे फरमाइश जे मुताबिक़ मूंखे यादि पियो अचे त साईं चयो त तकिड़ा आई तकिड़ा वेंदई के दम दिलबर टिक थोरा दम के दम दिलबर टिक दम दम दे नाल दिलड़ी न भरी जे चार पहर टिक चौपर

0: राजू चाह न भरी जे जुमा छंछर टिक जुमा छंछर छिक न लादी हफ्ता महीना टिक हफ्ता महीना हान भरी जे साल सरासर टिक साल भ सोना सिक न लादी जेतर जीवा तेतर टिक भला जे मरब वजा उस्ताद बुकाई माशर ताई माशर भला चे तो जे मरीब वजा तू माशर प्यार सब में विरहण त हसद साड़कीनू घटाइण त चाहूं असी सादा साधक संगत पंजी सादी मोहब्बत जा मेला मचाइण त चाहूं
1: वाह
0: जिंदगी जे लाहन चाड़न में मुआशरे के दिसंदे बखोड़ सारी दिल कढे थी हिन ते भी लिखा हिन ते भी लिखा हिन ते भी लिखा पर वक्त जे वोकरे के दिसंदे मुखे सली

0: सियारात
1: हाय हाय वाह वाह वाह
0: नकी मजहब मन में नकी जात सपात
1: हाय हाय
0: केर सैयदा केर पीरा केर कुरेशिया केर बील
1: हाय बस
0: ना ना यो को ने हेनन वट यो कमाए तव्या पूरब पासे पधरा उठी आधी रात नकी मजहब मन में नकी जात सफात नकी निवड़ी पड़ा नमाज के नकी बांग सलात नकी रखियों रोजा नकी जाहिर दिनों जकात नकी पिन्या पेटला नकी वर्तों खेर खेरात नकी मुआ नकी जियरा रुगो साह के सकरात मनसार पने मन में रखियों मुरसल जी मसलात यार लवन देड़ी लात व्या पूरब पासे
1: वाह वाह वाह वाह बाकी
0: चदो व्या पूरब पासे पदरा मुजा जोगी अड़ा जाई
1: वाह
0: इन अल्लाह म साबरीन व्या खुदी के खाई त मुरली पने मन में अथन वादत जी वजाई एकड़ा सुकावार सामिन जा बी छतड़न में चाई मुं त मन ठारा है का लौ जोगन सा लाई यार कढी कस कढ़ाई व्या पूरब पासे
1: वाह साधु
0: व्या पूरब पासे
1: तमाम बेहतरीन वाह मठार वाह
0: वाह साधु वाह साधु गाल कई त अकुल वारा ए बेअकुल
1: जी जी जी
0: उनन जी वाट जुदा हुंदी
1: जी
0: एकड़ो डाहो माड़ू जे एकड़ो वरी बेअकुल जे त ओए बई पाण में गड हली न सकंदा के एकड़ो नंढड़ो पाहाको के टाइम में डनो त बेवकूफ बाजार में संगती न खण जे साण
1: वाह
0: पेरा कुटाए पान पो लहे सार संगत जी एड़े नमूने सा इन के वधाए वीझाए सुगड़न वरी भजुन मालाउन में
1: जी
0: पांजे इरादे जी गाल कई पह जी गाल कई आई पहाके जी गाल कई मुझे कड़े सिट हुई त आकल आई बेकुल जी पान में कदे कान बणी
1: हां जी जी
0: ही सच गालाइंदो सफरो भल कुसी वने खणी ही वरी बक बक कंदो बेकार जा केखे कान बणी रस्ता बिने जा बुग्यो छे कया धार धणी खारे खूह में खंड मिलाए तब हुंदस खार घणी आकल सा अहवाल उर्ज भली कहा महणी ये मन थार गाल गणी अमी साल का सोचो सच के अमी साल का सोचो
1: वाह साधु वाह वाह साधु वाह
0: साथ से दिल कढे पई तगड़ी दौर जी सिट रही ये त सांजो कड़ो सुख सुगड़ पाई जो कड़ो बुनियादी नुक्तो है गुजार त उन का पो दौर ताऊं कड़े दौर जी सिट रहे मुझे सामू उहा दिल कढे पई दोस्तन जे सामू रखा त सुगड़ा भला सुगड़ा आई उन्हन के मां दिसा पियो उन्हन वट थोड़ सारी भलियो गालियो मिलंदु
1: जी जी वास्ता दवा वास्ता दवा
0: दौर में अर्ज है ता देखो तो पे सजन सडियो
1: जी जी
0: सो हक मथई ही है
1: वाह
2: वाह साईं वाह
0: देना वठन का दर न कजाए तू वडो कजाए भी पो सोड़ी में सी कोन थिंदे कुंभार चाहे
1: वाह साईं वाह
2: वाह साईं वाह
0: सिंध जो डाहू सुगड़ उसाम जुम्मन कुंभार जो असुल हाला के भरसा वेठल हो राणे बुगे के गोठ में पो वरी ही लडे मटारे मनी वेठो पर उनके डोर जो बादशाह
1: वाह साईं
0: फकीर गुलाम हैदर निजामानी चवंदो उनके ही प्रेस आए जेडी माल उनके चो उन माल डोर तैयार थोड़न अखरन में डोर आए आऊं उनके वरजाया त जेको तो पे सजण सडियो सो हकम थई ही ॾियण वठण खां दरण कजाए तूं वॾो कजाए वीह पोइ सोड़ीअ में सीह पोइ न थींदे कुंभार ते
2: वाह साईं वाह असां में वक़्त जो अहसास साढा चारि थियनि पिया वक़्तु कमर्शियल ब्रेक जो पहिरीं हलूं था शॉर्ट ब्रेक तरफ़ तव्हांखे केॾा नाहे वञिणो ॿुधंदा रहो जीअं सकरे नवाब शाह एफ एम 90.8 असां चऊं था नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: सामीन नाजरीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ

0: रामी ने पई हरणी के
1: जबरदस्त
0: जको हम असल सजण सजो पे ओ आई आकी
1: तमाम भले गाल आ या ब करोड़ ये ब पदमन का परे
0: वाह वाह
1: भले गाल के जबरदस्त
0: अन्या पढ़ो उस्ताद
1: जको तो पे सजण सजो
0: जी
1: सो हक म थई ही
0: जी
1: देण वठण का दर न क जाए यने ड्रिज जाए ना देण वठण का दर न क जाए तू वडो क जाए भी पो सोड़ी में सी कोन थिंदे कुंभार जे
0: महबूब साईं जे दौर में एक जत हो ओ पाजे उठ के लडींदो होयो पर हुन के भुखो डाढो लींदो
1: बराबर
0: पो उने रसो छनाए पो महबूब साईं जे दरबार में उते वनी पोतो पो महबूब साईं वट वनी चई ते साईं अमा वट आयो या मुखे मुजे इन धणी रुगो लडे थो बार खणे थो पर मुखे ही पानी जो उन जे वेगे मा मरी वा
1: सुभान अल्लाह डाडी भले गाल
2: भले
1: पर अन्या का भी गाल वाह
3: संज का या कूंज पखी हो उन जो पर भजी पियो हो जे मन पखण में पचार थई तो तू हल अगते गस ते नबी करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ता गुजरन थिंदो पो तुजो ओ खंभ जो को पर रहे ओ मत ठाहे
1: सुभान अल्लाह डाडी भले गाल मौजे दी गाल है डाडी भले गाल वाह वाह
0: अन्या उस्ताद पढ़ो
1: जेको तोपे सजन सजो सो हक मथई ही देण वठण का दर न क जाए तू वडो क जाए वी पो सोड़ी में सी कोन थिने कुंभार ते
0: उस्ताद मां ई बचाओ प्या त जेको नाबीन वेठो हो सरवर
1: हाओ
0: सरवर नाबीन वेठो त अज भुख जे वेगे मुखे डाडी तकलीफ आ पर ऐं हू अलाह जे आसिरे ते वेठो हो पर चिते को न को सखी गुज़र थींदो पोइ असांजो मौला अली अची पंहिंजे कतार सां उठण जी कतार सां अची लश्कर सां अची घस लंघियो पोइ चयूं कंबर बाने खे चयईं चई त हिन खे मानी ॾे हिन खे मानी जी सख़्त ज़रूरत आहे
1: हुन
0: खे चए पोइ तो जेको उहो सॼो पियो उहो
1: अली अची वियो आहे भली ॻाल्हि कयव पर अञा बचे अञा का बि ॻाल्हि थींदी सुभान अलाह सुभान अलाह ज़बरदस्त
2: तो पे सॼो सो
1: पर खोफ न कजाए ॾियण वठण खां दर न कजाए तूं वॾो कजाए बि पोइ सोड़ीअ में सीउ कोन थींदे कुबार ते।

0: a llenarle este dinero. खैर ते ॾिनो उन औरत जी ॻाल्हि वञी उन काफ़र ते पहुती त हीअ औरत कहिड़ी सखी आहे जेको अलाह जे नाले ते हर शइ ॾिनई। पोइ उन औरत ते आख़िरकार काफ़र पंहिंजा माण्हू मोकिलिया उनखे वठी अची उन जा ॿई हथ कपे छॾे। पोइ हुन जो नंढड़ो बचड़ो हो उहो बि वञी दरिया में पाणी जे उन जे वेगे किरियो। मां तव्हां इहा
1: जेके जिन जी ॻाल्हि हलंदी आहे उहे हयात हूंदा आहिनि। मोतो क़िबल अंत मोतो मरण खां अॻे ई मर। ही जेके ओशाक शाइर अदीब ॾाह सुगड़ जंहिंजी काह अलाह ऐं अलाह जे रसूल ॾे आहे उहे मरणा न आहिनि।
0: जी साईं जी जी
1: उहे उस्ताम जुमन ॾाढी भली ॻाल्हि कई। थोरना करण में वॾी ॻाल्हि करे वियो। जॾहिं माईअ खैर ॾिनो हुनजो बाज़ू कटिजी वियूं ऐं हुनजो बचड़ो जॾहिं वादीअ में किरी पियो त उन टाइम माईअ सोचियो त मूं इन जे सहारे पे जीअणु घुरियो त हीउ वॾो थींदो जवान थींदो ऐं कुफारनि खां हिसाबु वठंदो। अॼु उहो बि वञे पियो उन खां पोइ सॾु थी करे पंहिंजे पाक अलाह ऐं पाक हुसैन खे मुंहिंजा मुर्शद हुसैन मुंहिंजी मदद कर। मौला पाक अचे थो मिटाई जी शायदि इहा त उहो टाइम इमाम जे आख़िरी सते जो आहे। जिस्म लहू लहान आहे, माई परेशान आहे त हीउ केरु आहे जेको आयो आहे पंहिंजो पाण लहू लहान करे मूं वटि पहुतो आहे। मूं त हुसैन खे पियो सॼो। मौला पाक चयो माई तूं ग़म न कर, जेको तो हुसैन पियो सॼो उहो ई मां आहियां।
0: सुभान अल्लाह।
1: ऐं तोखे अॼु इहो बचड़ो बि ॾियां थो, बाज़ू बि ॾियां थो। क़यामत ताईं न ॾियण खां डिॼजांइ, न वरी वठण खां डिॼजांइ। तूं ॾींदी रहजांइ, मां हुसैन वरी तोखे ॾींदो
0: रहां।
1: कॾहिं तोखे तकलीफ़ न ईंदी। हाणे उस्ताद जा अखर आहिनि त जेको तो पे सॼणु सॼो सो हकम अथई हीउ ॾियण वठण खां दर न कजांइ। तूं वॾो कजांइ वीह, पोइ सोड़ीअ में सीह कोन थींदे कुंभार।
2: वाह उस्ताद, वाह वाह उस्ताद, वाह। तमामु ज़बरदस्त मौला हुसैन जी कहाणी। हू त शहनशाह आहे, शहनशाह हुआ, शहनशाह इब्ने शहनशाह, नवासाए रसूल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अॼु समीन हाणे हलंदासीं सुगड़ फ़क़ीर गुलबेग जमाली साहिबु तरफ़, जेके असांखे कुझु ॿुधाईंदा। अॼु साईं बिस्मिल्लाह।
3: जी बाबा जी।
0: सलीम साहिबु,
2: तमामु
0: बहितरीन ॻाल्हियूं आहिनि
2: जी
0: उस्ताद वारनि, तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं कयूं। पर अवां बि बैत अहिड़ा पढ़िया, सिराकी सुर
2: बिस्मिल्लाह,
0: सिराकी जा बैत अहिड़ा उस्ताद जा पढ़िया, उस्ताद बुखारी जा, जो दिलि मुंहिंजी चयो त हिकु गुफ़्तो आऊं बि ॿुधायां।
2: वाह वाह बिस्मिल्लाह।
0: उस्ताद बुखारी जा अखर आहिनि त सन्हा माण्हू सोणा लकुण जा लुचकनि।
2: वाह वाह।
0: सन्हा माण्हू सोणा लकुण जा लुचकनि, पेर जनी जा पद मड़ा से जुतीअ मां जरकनि। जुती त जैसर मेर जी आंदी उस्तादनि, हेठां लालियूं लॻल लाख जो भले मथे टौर टिलनि, ओ उहे मुंहं बि मिलनि जिनखे लाल मोहिड़ा मोहती।
2: वाह साईं, वाह वाह वाह।
0: अञा उस्ताद बुखारी चवे थो त मोहबत बराबर डो होसी पर खिल अलावण डो न।
2: वाह वाह।
0: मोहबत बराबर डो होसी पर खिल अलावण डो नहीं, पाड़े दे विच को बीमार सुजे ओंदा हाल पुछण बि डोह नहीं, गुण कंदा उस्ताद बुखारी हर हर गावण बि डोह नहीं।
2: वाह साईं, वाह वाह
1: वाह वाह।
0: हाणे वरी फरीद चवे थो, सिराकी जी ॻाल्हि अवां कई त सिराकी में अवां जे ॿ टे बैत ॿुधाया, दिलि मुंहिंजी बि चयो त कुझु सिराकी मां बि ॿुधायां। ख़्वाजा ग़ुलाम फरीदा चवे थो त मिठा मिठा महबूब मैडा, तॾहिं दर नाल मैडा दर।

0: ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਦਰਦਾ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਣੇ ਅੱਖਿਆ ਬ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਰਸਨ ਕੀਤਾ ਰੂਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਣੇ ਜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਦੇਸ ਗਿਓ ਸੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਹੇ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਕੋ ਵਣੀ ਸੱਚੋ ਨੇ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਹੇ
1: ਵਾਹ ਸਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਹੀ ਵਾਹ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ 4:45 ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਕਤ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜੋ ਤਾਂ ਪਹਿਰੀ ਸਾਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤਰਫ਼ ਅਵਾਂ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਜਣੋ ਬੁਧਾਂਦਾ ਰਹੋ ਜੀ ਸਕਰ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ FM 90.8 ਆਈ ਜੀ ਐਫ ਐਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕ ਖਾਂ
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है पिलाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: दिल में दर्दन जो दास्तान भरियो पियो आ, दिल में दर्दन जो दास्तान भरियो पियो आ, जीअं तारनि सां आसमान भरियो पियो आ। मुंहिंजी दिल लॻी वई आहे दिलबर तो सां, न त सोणनि सां त जहान भरियो पियो आ। वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक खां पोइ अवां सभिनी सॼणनि ॿुधंदड़नि भेनरुनि भाइरनि बुज़ुर्गनि ऐं मुंहिंजनि प्यारनि सामाइनि खे मूं तरफ़ां सलीम अहमद सरगणी तरफ़ां वेलकम भलीकार अची आया आहियूं। जीअं समय हीउ प्रोग्राम सुगर कचहरी जी एफ एम नेटवर्क तां लाइव पेश कयो पियो वञे, असांजो अव्हांजो साथ रहंदो पूरे 5 वॻे ताईं। हाणे हलंदासीं सुगर फ़क़ीर हाजी ग़ुलाम मोहम्मद हाजी हाजी नवाब संजराणी साहब तरफ़, जेके असांखे कुझु ॿुधाईंदा। जी साईं, बिस्मिल्लाह।
1: जी साईं, हाणे हक़ीक़त आहे त हींअर जेके क़ुर्बानी जा मसाला आहिनि, क़ुर्बानी जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं।
0: बिस्मिल्लाह।
1: हक़ीक़त इहा आहे त पहिरियां त जानवर खे सही चारजे, उन खे चारे, ऐं पहिरीं पहिरीं इहा ॻाल्हि आहे त हिकिड़ा आलम सगुरा चवंदा आहिनि दादा, मतारो हुजे ऐं केतिरो बि हुजे उन खे कोहण जाइ। इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे, बरहाल हदीस लिखे थी त जेको ईद वारे ॾींहुं ॼमे थो सो उहो ईद खां ॿिए ॾींहुं कोहण जाइज़ आहे।
0: अच्छा।
1: हा साईं, ॿारियो ऐं माना ईद वारे ॾींहुं ॼमे, उहो ईद जा 3 ॾींहं आहिनि, उहो वरी ॿिए ॾींहुं कोहण जाइज़ आहे। ऐं हिकिड़ा त चवंदा मतारा हनि मिलाए कोहजे, पर मिलाइण पर शरीयत ज़ाहिर ते आहे, लिक ते न आहे। हाणे शरीयत हज़रत इब्राहिम अलाम साईं, हक़ीक़त आहे त पहिरियों महीनो बि क़ुर्बानी जो, आख़िरी महीनो बि क़ुर्बानी जो। पहिरियों महीनो इमाम हुसैन जो 10 तारीख़ इहो महीनो आहे, क़ुर्बानी आहे। वरी आख़िरी महीनो असांजो त बि क़ुर्बानी जो 10 तारीख़ आहे।
0: बिल्कुलु।
1: हक़ीक़त में जॾहिं हज़रत इब्राहिम खे हुकुम थियो त छॾे आ जबल में, पहाड़ में, जॾहिं हज़रत इस्माइल खे छॾे बीबी पंहिंजी खे, जॾहिं रवानो थियो त बीबी पोयां पुछियो त कंहिंजे आसिरे मूंखे छॾियो थो वञे, ऐं हक़ीक़त पुछियो त हुकुम कोन हो ॻाल्हाइण जो। पोइ बीबी पुछियोसि त तूं पंहिंजे आसिरे छॾियो थो वञी या अलाह जे आसिरे। अलाह हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम मथे अंगरियूं कयूं त अलाह जे आसिरे चई पोइ भले हलियो वञे।
0: वाह साईं वाह,

0: वापसी हलियो वियो वरी हुकुम थियुस कहिड़ो त कुर्बानी कर भली शइ जी उठ कुर्बान कई कोन थियो ॿी राति खा पियो वरी उठ कुर्बान कई टी राति कुर्बान कई पर तपी चवंदो भलियो पोइ आख़िरी पुट जी कुर्बानी लाइ पुट खां पुछई बाबा आऊं तोखे कुर्बान करे रहियो आहियां जी बाबा जी बिस्मिल्ला कुर्बानी करी थो त इहो जल्दी करे वठि अॼोका पुट ॾिसो ऐं वरी तॾहिं जा पुट ॾिसो
1: सुभान अल्लाह
0: हक़ीक़त हाणे उहो हज़रत इस्माइल ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वञनि पिया मीना जे तरफ़ मीना जे तरफ़ जंहिं महिल वञी रहिया आहिनि हक़ीक़त जंहिं महिल अॻिते विया त शैतान हुनखे ॿुधायो त तोखे बाबा कोहण पियो वञे
1: सुभान अल्लाह
0: हज़रत इस्माइल पथरी खणी शैतान खे हई त अलाह अकबर उते बीह रहिया हू अॻिते हलिया विया जंहिं महिल क़ुर्बानी वारी जाइ ते पहुता हक़ीक़त जंहिं महिल कहिड़ी कयूं त उते पहुचण सां हज़रत इस्माइल पंहिंजे वालिद साहिब खे ॿुधाए पियो त बाबा मुंहिंजा हथ ऐं पेर ॿध मता ऐं कुझु चुरां तोखे रत जा छंडा लॻनि
1: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम
0: हज़रत इस्माइल खे हज़रत इब्राहिम खे ॿुधाईं हज़रत इब्राहिम खे ॿुधाईं
1: सुभान अल्लाह
0: जंहिं महिल काती खे कहिड़ी मजाल आहे जो काती कंध ते वहे
1: सुभान अल्लाह
0: जंहिं महिल काती न पई वहे त पोइ वरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पंहिंजे वालिद खे ॿुधायो त बाबा अखियुनि ते पटी ॿध पोइ मूंखे क़ुर्बान कर मता तोखे दिलि रहम खाए त पाण गाफ़िल थी वञूं हक़ीक़त जे हिसाब सां जॾहिं मुंहं ते पटी ॿधई दुंबो जन्नत मां अची वियो जंहिं महिल घरड़ाट कई त जंहिं महिल उथे खणी जंहिं महिल पटी खणी कोन्हे की क़ुर्बानी थी वई हज़रत इस्माइल पासे सां बीठो आहे घेटो क़ुर्बान थियो पियो आहे
1: जे वरी जो काती मथे उछराई त मथे खे मथे वञी सलीम साहिब वञी मकड़ खे काती लॻी
2: वाह वाह साईं
1: मकड़ खे काती लॻी मकड़ खे हज़ाब उते वरी सीर पइजी वियो उस्ताद मंठार फ़क़ीर वरी जो काती हेठि वञी किरी त वरी वञी मच्छी ते पई
2: त
1: मच्छी खे बि उन ॾींहं खां वठी तकबीर
0: आहे हा इहे साईं क़ुर्बानी
1: इहे मकड़ खे ऐं काती हुयो मच्छी खे अॼु
0: ॿिन्ही खे क़ुर्बानी
1: अलाह जे तरफ़ हुयो सीर पियल आहे उन ॾींहं खां वठी
2: पोइ
1: इहो कुदरत जा रंग आहिनि जेको हुयो
0: सभु
1: इहो वरी सतहड़ थींदो आहे वॾनि ढोरनि में जीअं पाॾो आहे या अॻो गाबो आहे या वहड़ी आहे उठा उठा त इन्हनि में सत अड़ थींदा आहिनि या वरी दुंबो आहे या बकर आहे त उन में
0: हिकिड़ो
3: नंढे में वरी पोइ टे पतियूं कबियूं उन में हिकिड़ी पती जेका आहे असां पाण खाइबी हिकिड़ी पती दोस्तनि खे पाड़े वारनि खे माइटनि खे ॾिबी बाक़ी हिकिड़ी पती जेका आहे न उहा वरी ग़रीबनि मिस्कीन में
0: विराए ॾिबी
1: हा उहे त सही मुंहिंजे सम्झ में इहो चम या खल आहे इहो बि मुंहिंजे सम्झ में अलाह जे नाले ते ख़ैरात
3: ग़रीब यतीम खे बेवा खे ॾेई छॾे त बहितर उहो
4: असुल में नंढो वॾो ढोर जेको बि आहे हिकिड़े में सत पतियूं आहिनि ऐं हिकिड़े में हिकिड़ी पती आहे यानी हिकिड़ो छेलो घेटो इहे जेको माल आहे इहो हिकिड़े जी क़ुर्बानी आहे ऐं वॾो ढोर जेको आहे पोइ इहो वरी शरई हिसाब सां सतनि माण्हुनि जो हुन में हिसो थिए थो इहा साईं चयो टे हिसा पर टे नंढे में बि थींदा ऐं टे वॾे में छो त भले सतनि जो हिसो आहे पर उन में बि पहिरीं टे थींदा उन टिनि मां हिकिड़ो कढी जुदा कबो हिकिड़ो ॿियो कढी जुदा कबो हिकिड़ो टियों कढी जुदा कबो पोइ उन टे मां जेको आहे उन मां सत हिसा कबा हर को पंहिंजो पंहिंजो हिसो खणंदो बाक़ी जेके ॿ हिसा आहिनि उहे यारनि दोस्तनि लाइ ग़रीब
3: उस्ताद अॼुकल्ह उस्ताद मंठार अॼुकल्ह ॾिठो वञे थो त ग़रीबनि मिसकिननि खे घटि मिले थो वीचारनि खे असुल में ॻाल्हि आहे त असांजी इल्तिजा इहा ई आहे सभिनी खे त ख़ुदारा ग़रीबनि खे ॾियो ग़रीब जेके बेपहुच माण्हू नथा करे सघनि उन्हनि जी मदद कयो उन्हनि खे ॾियो
4: ऐं असांखे बि चवण जो हक़ आहे ऐं साईं सलीम साहिब खे बि इहो अर्ज़ु कंदुसि त उन्हनि खे ज़रूरु चइबो जेके फिरजुनि जे हवाले कनि था क़ुर्बानीूं उहे अॻिते कम न ईंदियूं जेके उन टाइम ग़रीबनि गुरबनि में विरहाए ॾेई छॾियूं खाकी आहियूं गुनहगार ज़मीनदार कोन आहियूं ग़रीब आहियूं पर जॾहिं खां मूं क़ुर्बानीअ जो अड़ शुरू कयो आहे त विरहाइण खां पोइ जेतिरो जंहिं मिसकिन जे हिसे में ईंदो आहे त आउं पंहिंजे घर में बि ओतिरो ई रधींदो पचाईंदो आहियां, छो त अलाह ॾिनो ई इन जे लाइ ॾियण लाइ, अलाह इन लाइ कोन ॾिनो आहे त तव्हां हुनखे गॾु कयो मेड़ियूं, ऐं छो त उहो मेड़े मरवान विया, कारून वियो, फिरौन वियो, निमरूद वियो, शदाद वियो, उहे मेड़े विया, अव्हांखे विरहाइण लाइ ॾिनो अथसि, अव्हांखे अलाह ऐं अलाह जे रसूल जो इहो फरमान आहे जेको मूं अव्हांखे ॾिनो आहे उहो ॿियनि लाइ ॾिनो आहे उन्हनि खे ॾियो, त महिरबानी थींदी उन्हनि
1: दोस्तनि जी भाॼी थिए, उन जा बचड़ा माना गोश्त खाइनि, अहिड़ा बि आहिनि जो वीचारा ॿारहें महीने वीचारा माना ॿारहें महीने गोश्त था खाइनि,
4: छो त सरंदीअ वारा रोज़ खाईंदा, ऐं मिसकिन मारू माण्हू जेके आहिनि उहे अलाह जो आसरो ऐं दुनिया ते हिन ईद जो आसरो हूंदो आहे त जॾहिं ज़ुल्हिज जी ईद थींदी ऐं मोमिन क़ुर्बानीूं कंदा
1: सुभाणे
4: असांजा बचड़ा बि गोश्त खाईंदा, इंतज़ार में हूंदा आहिनि, अलाह उन्हनि जा इंतज़ार पूरा कंदो, अलाह मोमिननि खे तौफ़ीक ॾींदो त हू पंहिंजो जेको किरदारु आहे जीअं अलाह ऐं अलाह जे रसूल ॾसियो आहे उन ते हलंदा, संदन महिरबानी थींदियूं।
1: इहे बि उस्ताद मंठार, इहे बि ॻाल्हियूं शरीयत मुताबिक़ आहिनि त पाॾो या गाबो इहे उठ इहे बिणादा या चौगा, पर जेको घटो आहे उहो ॿारहं महीननि जो आहे, पर इहो शरीयत में आहे त उहो घटो भले बिणादो न थिए पर उन्हनि वॾनि रिढनि में, वॾनि रिढनि में या वॾनि घटनि सां गॾु वञी माण्हू बीहारे त कद में उन्हनि जेतिरो आहे त उहो शरीयत उनखे कयो आहे त उहो क़ुर्बान थी सघे थो, पर अक्सर करे इहा ॻाल्हि कनि था त माना त जंहिं ॾींहुं तूं उनखे क़ुर्बान करीं थो त उन ॾींहुं उनखे खाधो बि खारा ऐं पाणी पीआरे पोइ भले वञी क़ुर्बान कयो, तमामु बहितरीन।
2: जी हा साहिबु, तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं असांजे छोकिरनि जूं, जीअं हमेशह ईअं ई करणु खपे छो जो हीअ क़ुर्बानी जी ईद आहे त हिन में ईअं न आहे त फिलजूं भरणु खपनि, क़ुर्बानी वांगुरु ई असांखे उन वक़्त जो वेलो खाइणो आहे, उन खां पोइ जेको ॾिसो अलाह पाक हर कंहिंखे ॾिए थो, हीअ ईद ग़रीबनि जी बि आहे अमीरनि जी बि आहे, अलाह असांखे ॾेई असांखे आज़माए थो त असां पंहिंजनि पाड़े वारनि जो, पंहिंजनि प्यारनि जो, पंहिंजनि ग़रीबनि जो केतिरो ख़्यालु रखूं था, सभिनि इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। ऐं असांजे सिंध जा सफ़ीर असांजा सुगर असां गॾु मौजूदु आहिनि, टाइम तमामु घटि आहे, आख़िरी चंद लफ़्ज़ असांजे लाइ छा ॿुधणु चाहींदा? अजी साईं, आख़िरी चंद लफ़्ज़ असांजे लाइ, असांजे सामाईन जे लाइ, हीउ पूरे नेटवर्क ते प्रोग्राम हली रहियो आहे।
1: उस्ताद जा अख़र आहिनि त सामी सफ़र हली आहे जोगी मंझा जूद, नांगन पंहिंजे नफ़्स खे निहोड़े कयो नाबूद, अलहमदुलिल्लाह रबिल आलमीन मञाऊं माबूद, सदक सां सादक थिया माणियो तन मक़सूद, विञाए वजूद पोइ गुर खे गॾिया कापड़ी, पर सामी सफ़र हलिया कने ॿुधी का, परूड़ियाऊं पूर्ब में सम्झी सोचे सा, मूं तूं किबिलल अंत मूं तूं मरणा अॻे ई मुआ, ला ख़ौफ़ अलहम वलाहम या ज़नून डप न को ड्रा, गोदड़िया गुरूअ सां वञी सही सादक थिया, पोइ लाहे लाॻा पा पोइ गुर खे गॾिया कापड़ी। त जोगियुनि हिन जहान तां असुली खयो आरो, नाथ ॾिठाऊं नाह में कामिल करारो, वा आमेनू वा अमेलू सुवाल हाते मतिलब थियनि मोचारो, पोइ नर हणी नारो पोइ गुर खे गॾिया कापड़ी। त अञा बि असांजो फ़क़ीर साईं चवे थो त ध्यानु कर तूं धरतीअ ते, बंदा न कर तूं बांवर, तड़जी विया तकिड़ा जन तोड़ू कयो तकबर, वॾाई जुगाए थी वाहिद खे जेको पाक धणी आहे परवर, नई धरींदई धूड़ में जित कारी आहे कबर, ॾींदई न हुन ॾेह में साधक को समर, पोइ वठी वठ वखर मता बाज़ारि वञे बंदि थी।
2: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, तमामु ज़बरदस्त। जीअं समिन असां सां गॾु हुया असांजा सिंध जा, असांजे सकरनि जा भलोड़ सुगड़ सामिन, अॼु जे हिन सुहिणी कचहरी मां मोकिलाईंदे अवां सभिनी ॿुधंदड़नि जा दिलि जे गहराइनि सां थोराईंदा आहियूं, जिन पंहिंजनि प्यार ऐं साथ सां महफ़िल खे चार चंड लॻायो। अलाह पाक अव्हां जी ज़िंदगीनि में ख़ुशियूं, मोहबतूं ऐं सुकून हमेशह क़ाइमु रखे। वरी नई कचहरी सां ऐं नवनि रंगनि ऐं नवनि अहसासनि सां मुलाक़ात थींदी। जेसीं ताईं जे लाइ इजाज़त ॾियो, पंहिंजे दौन में यादि रखिजो, छो त अव्हांजो प्यार ई असांजे लाइ हिमत आहे। खिलंदे रहजो, भुरकंदे रहजो ऐं सिंध जी सुगंध खे पंहिंजे दिलनि में हमेशह ज़िंदा रखिजो। सामिन, वक़्त जो अहसास सुगर कचहरी जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। जॾहिं बि दुआलायत खणो, पंहिंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी खे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो, ॿिए प्रोग्राम में हूंदसि अवां सां गॾु। तेसी मूंखे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु। अला वाही अला निगहबान, जेॾां पेर तेॾां ख़ैरु ख़ैरु।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: तस्लीम थियल एटमी ताक़त आहे. अहिड़ी धमकी ज़हनी ॾिवलपणे जुनून ऐं जंग पसंदीअ जी अकासी करे थी. ज़िमेवार एटमी रियासतूं सहप ऐं स्ट्रेटजिक संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो कनि थियूं. भारती क़यादत ॾखिण एशियाई हिकु ॿिए बुहरान या जंग तरफ़ धिकण खां पासो करे

पाकिस्तान जी खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशुन जी अहमियत वधी वई। अमेरिका दहशतगर्दी खिलाफ कोशिशुन में पाकिस्तान के अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ एतमाद जो हिसेदार आहे, जेको खिते में कालादम दाइश खरासान ख़िलाफ़ जंग में मर्कज़ी हैसियत रखे थो। अमरीका जी सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधीअ जी तकासी कनि थियूं। दहशतगर्दनि वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वॉशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर ख़बरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त उन जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमुन माहिदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको उन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिबि विच ओभर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जे फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बमबारी, नार फॉर्स में वाक़िए ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़, ख़ारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाहे मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे। सप्लाई बाबति रुकावटुनि जी सूरतहाल बरक़रार रही त मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी ऐं वॾे पैमाने ते डिघे मुदे लाइ मुआशी ॾुखियाईं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी इफ़्तिख़ार चयो आहे त हाणोकी आलमी तवानाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटुनि जा असर दुनिया जे हर खिते ऐं मैशियत में महसूस कया पिया वञनि। ॿारण जूं क़ीमतूं 2025 जे सरासरी भेट में भीड़ खां वधी वियूं आहिनि। वधीक 3.20 करोड़ माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। ओलह एशिया जा मुल्क हिन बुहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि, पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे।

0: खानो रिजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार गरीबाबाद सखर खमीस आए जुमो मिलना जो हंद मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नस्त लाला शहजादा चौक रोहड़ी राब्तो 0300 36 26 176
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जा रहा है जिसकी वजह से हम आपसे इंशाल्लाह 6:15 बजे तक रुखसत हो जाएंगे. आज इससे पहले कि हम बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच की और दुनिया भर में क्या हो रहा है, मैं बात करूंगा पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप की, जिसका दूसरा एडिशन डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में जारी है. और आज हम डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में बैठकर आपसे मुखातिब है प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड में, यानी आज का शो आपके स्टूडियोज नहीं बल्कि लाइव ग्राउंड से हो रहा है. और मेरे साथ दो हमारे साथी मौजूद हैं जिनमें बड़े ही एक्सपीरियंस इंग्लिश के और उर्दू के बड़ी आवाज पाकिस्तान की कमेंट्री की एफ एस मलिक साहब मौजूद हैं और एक हमारे बहुत ही यंग मगर बहुत टैलेंटेड साथी जिनका ताल्लुक और उनका नाम है मोहम्मद वकास, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं इस इवेंट में, वो मेरे साथ मौजूद हैं. इन दोनों की गुफ्तगू पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच के हवाले से भी और

0: कर आपसे मुखातिब है प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में, यानी आज का शो आपके स्टूडियोज नहीं बल्कि लाइव ग्राउंड से हो रहा है और मेरे साथ दो हमारे साथी मौजूद हैं जिनमें बड़े ही एक्सपीरियंस
1: 2023 में जियो सुपर पे डेब्यू हो गया, फिर आप जैसे साथ मिलकर काम करने का बहुत मजा आया और ये सफर जो है इसको जारी रखे हुए हैं, मजीद एफर्ट्स भी कर रहे हैं। पेप बॉल तो प्रेडोमिनेंटली कवर करते हैं बहुत ज्यादा पंजाब में भी और कराची में भी, टेप बॉल के जितने मेन इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए आते हैं, कमेंट्री करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अपनी एफर्ट जो है वो क्रिकेट बॉल में कमेंट्री की उसको भी जारी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ भी मैंने ओवर 40 ग्लोबल कप भी कवर किया 2023 में, फिर 2025 में वर्ल्ड कप ओवर 40 जो है वो भी जियो सुपर पे कवर किया। तो इस तरह जो है इट हैज़ बीन वेरी गुड, आई एम पैशनेट, पैशनेट होने के साथ साथ जो है वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद को जो है मनवा सकूँ इस फील्ड में और अपनी एफर्ट को जारी रखे हुए हूँ। आप जैसे सीनियर की दोस्तों की दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी व्हाट आई हैव अचीव्ड और फ्यूचर में भी यही कोशिश है कि जितना कुछ हिस्से में आए उसको हासिल करें।
2: बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि तो मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा ये स्टेटमेंट रहा है हमेशा कि एफएस हमारे एक साथी कमेंटेटर हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें पीएसएल की अंग्रेजी कमेंट्री में भी होना चाहिए, उर्दू कमेंट्री में भी होना चाहिए। ही गॉट अ वंडरफुल एंड सूदिंग वॉइस, ही गॉट अ ग्रेट फ्लुएंसी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: hard part water because I've retired from the international commentary, as people knew. But yeah, nowadays I'm covering football here in Pakistan, and what I'm sensing, the people like to go big. Shift this, and the boundary is the batsman. And on the other hand, the bowlers have different varieties. But at the moment, the game has become battle's game, and I don't like it the most. Lots of people in the past used to say that Shoaib Akhtar, one of the lethal bowlers and one of the greats, though he has pace, but at times the accuracy lacks. So he can be one of the greatest ones. But, and not as much as I can assume. People might think, but me, would not that great.
1: Wonderful, wonderful. हम तालियां बजा रहे हैं फैज मलिक के लिए जिन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज में और माइकल होल्डिंग की कमेंट्री की झलक जो है बिल्कुल कानों को बहुत भली लगती है और वो सुनाई भी दी। इस वक्त प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में जीए एफएम रेडियो नेटवर्क पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है के तो एफएस से मजीद बात करेंगे कमेंट्री के हवाले से भी एंड ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच एज वेल। लेट्स टेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऑन जीए एफएम रेडियो नेटवर्क।
2: आप सुन रहे थे जीए।
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
6: अम्मा, हेलो सुमा का छा मिलियो
7: पुत्र।

0: महसूस।
1: असाया पानी साफ ना है तेंजे करी तो सब बीमार था थे। असा के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे।
2: केदो सयानो पुटरा मुंजो
1: बाबा इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो।
3: साफ पानी महफूज जिंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्म।

0: गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत सां टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशहूरु ऐं हफ़्ते जे लाइ 0327-99-84-768।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शर पसंद देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क
2: खुशखबरी डॉक्टर सलमा मीर अब्बासी
1: नेटवर्क सिंध की आवाज।

दरिया सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध के 8 जिलों में मकानी इदारन की नंढी चूंड लाए पोलिंग जो अमल मुकम्मल थियण बाद गैर सरकारी ए गैर हतमी नतीजा अचण शुरू थी वया। हैदराबाद जामशोरो सिजावल सखर नौशोर फिरोज जैकबाबाद ए घोटकी में चूंडू थी। सखर के यूसी नसीराबाद में वाइस चेयरमैन की सीट लाए पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार लियाकत अली 275 वोट खड़ी अगते जेयूआई के कारी खादिम हुसैन 170 वोट हासिल किया। नंदापुर वार्ड 3 में जेयूआई जो इसरार कलवड़ 624 वोट खड़ी अगते आजाद उम्मीदवार अब्दुल गफार कलवड़ 144 वोट खया। चारू शाह के यूसी मोलण के जिले काउंसिल की सीट पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार रोशन विस्तड़ो 453 वोट खड़ी अगते आजाद उम्मीदवार अब्दुल कदीर विस्तड़ो 217 वोट हासिल किया। नौशर फिरोज के पोलिंग स्टेशन अजमत देरो से पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार 342 आजाद उम्मीदवार के 78 वोट मिलया। के एन शाह के यूसी बुरड़ा के चयन पोलिंग स्टेशन के नतीजन मूजिब पीपुल्स पार्टी जो अमजद बुरड़ो 942 वोट खड़ी अगते है जडे तो जी डी ए उम्मीदवार जुल्फकार कुहारो 243 वोट हासिल किया। पाकिस्तान दक्षिण एशिया की तारीख ए नक्शे त न खत्म थियण वारो हिस्सो आहे। भारतीय आर्मी चीफ जो चिड़ डियारींदड़ बयान जाहिर करे तो भारतीय क्यादत पाकिस्तान की वजूद वाले तस्वर के कबूल नथी करे सघे। आईएसपीआर जो भारतीय आर्मी चीफ जी हाणोके इंटरव्यू में बयान ते रद्द अमल। आईएसपीआर मूजिब भारत के पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम कंदे पुरअमुन गडियल बका जो रस्तो अख्तियार करणो पवंदो। हक की जंग दौरान भारत की मायूसी समूरी दुनिया में वाखी थी। पाकिस्तान पहिरियां ही आलमी सतह ते अहम मुल्क ए एक तस्लीम थियल एटमी ताकत है। जिम्मेवार एटमी रियासतू सैप ए स्ट्रेटजिक संजीदगी जो मुजाहरो कन थी। भारतीय क्यादत दक्षिण एशियाई एक बे बोहरान या जंग तरफ देखने का पासो करे।

पाकिस्तान जी खिते में इस्तेहकाम लाइ कोशिशुनि जी अहमियत वधी वई। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कोशिशुनि में पाकिस्तान खे अहम ऐं मर्कज़ी हिसेदार करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे। अमरीका जी सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमरीका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधीअ जी तकासी कनि थियूं। दहशतगर्दी वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वाशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे।

एक ही सदर डोनर। अमेरिका जी सेनेट कमेटी के ब्रीफिंग दींदे सेंटकॉम सरबराह चयो तो पाकिस्तान सां मजबूत फौजी हिस्सेदारी सबब दहशतगर्दन खिलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमेरिका जी पुराणी दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधी रीत अकासी कनि थियूं। दहशतगर्दी वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वॉशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे।

सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भेर बीहर खबरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंग बंदी करे वठे त उन्हनि जे हक़ में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमन मुआदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको उन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिब विच ओभर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते गौर करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान जे फ़ौजी ऐं बुनियादी ढांचे ते वॾी बमबारी, नॉर्थ फॉर्स में वाक़े ईरान जे अहम तेल बरामदी मर्कज़ खारिज आइलैंड ते कब्ज़े ऐं ईरानी सरज़मीन ते कमांडोज़ लाइ मलबे हेठां दॿियल एटमी मवाद खे कब्ज़े में वठणु शामिल आहे।

0: वञे थो। याद रखंदा औरतुनि जे चेहरे जे गैर ज़रूरी वारनि जो इलाज लेज़र थेरेपी ज़रिए कयो वञे थो। डॉक्टर इरम जुणे जो हाइड्रा फेशियल ऐं चमड़ीअ जे बीमारियुनि जी माहिर। याद रखंदा जुमे जे ॾींहुं 1 बजे खां 3 बजे ताईं औरतुनि ऐं नंढड़नि ॿारनि जी चकास ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं। एड्रेस इंडस हॉस्पिटल, लेडीज़ जेल रोड, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ 0343-312-567।
1: It's 6:15 PM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हेलो वर्णा, खबर न है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो हूँ दिया है।
5: तू खाइंदी चाय स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संधन जो सूर कुंदरग जो सूर कंधे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन अलावा पित्ते गुर्दे मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो टाइम सुबह 10 का शाम 6 वगे ताईं एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आचर से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचन नंबर वठन लाए 0327-84-60-746
3: सूरत सफा मारे छजुआ
4: आदात ने जो इलाज छो न तो कराई
3: इलाज कराए कराए थक जी पियुआ
4: अदा इन सूरत जो इलाज खात्मा दर्द दवा सा मुमकिन आहे जी हां खात्मा दर्द एक एड़ी दवा जेका सूर खा दे निजात सूर चाहे जोड़न जो हुजे पठन जो हुजे चेल जो हुजे या घिंटिया जो कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे के भी नंडे वडे सूर जे लाए आसमोदा दवा आहे सतन दीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपए में खात्मा दर्द मिलन जो हंद बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामो अल नूर दवा खाना रोहड़ी राप्ती जी लाए 0305-580-616 खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
5: होमियो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
4: DHMS सिंध
5: RHMP इस्लामाबाद
4: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
5: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
4: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
5: कमर दर्द
4: अर्कुन निसा
5: जोड़ों का दर्द
4: हेपेटाइटिस
5: वजन की कमी या ज्यादती
4: बे औलादी
5: गंजपन का मुकम्मल इलाज
4: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
5: टाइम
4: हफ्ते से जुमेरात
5: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
4: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
5: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
4: राब्ते के लिए
5: 0326-22-00-440
4: गर्मी थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया हाने परेशान थियण की जरूरत ना है पेश है शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटी मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी सुकून आई हकीकी राहत दिल की धड़कन के मुतवाजन रखन गर्मी के असर के घटाएं आई जिस्म के तवानी देने लाए शरबत रूहे राहत रोजानो सिर्फ एक गिलास आई महसूस करो थकावट का आजादी कीमत सिर्फ 450 रुपया शरबत रूहे राहत मिलन जो हंद मदनी तिबी दवाखानों रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर खमीस आए जुमो मिलन जो हंद मदनी तिबी दवाखाना मसान रोड नस्त लाला शहजादा चौक रोहड़ी राब्तो 0302-36-26-176
0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना गाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GA FM 88 नेटवर्क

0: चल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तहजीब सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमती रही, पहरो भेरो मा थी रही है ना।
3: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी। माँ ता एत्रो थकी थी पवा, छा कयो हो तवा।
4: हो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध, अब दूध कैसे आए ये जरा पूछ।
3: क्या

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: चीफ जिहानों के इंटरव्यू में बयान ते रहते अमर आईएसपीआर मौजे भारत के पाकिस्तान जिया में तस्लीम कंदे पूरा मुनगालिन गरियल बका जो रस्तो अख्तियार करनो पवंदो। हक की जंग दौरान भारत की मायूसी समूरी दुनिया में वाखी थी है। पाकिस्तान पे ही आलमी सतह से अहम मुल्क है। एक तस्लीम थल एटमी ताकत है। जिम्मेवार एटमी रियासतों साहब स्ट्रेटजिक संजीदगी जो मुजाहरों कन थी। भारतीय क्यादत दक्षिण एशिया के एक बे बोहरान या जंग तरफ देखने का पासो करे। पाकिस्तान के खिते में इस्तेहकाम लाए कोशिशों की अहमियत वधी वही। अमेरिका दहशतगर्दी खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान के अहम ए मरकजी हिस्सेदार करार दे छो। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर है पाकिस्तान दहशतगर्दी की खात्मे लाए एतमाद जोगो हिस्सेदार है। अमरीका के सैनेट कमेटी के ब्रीफिंग दींदे सेंटकॉम सरबराह तो पाकिस्तान से मजबूत फौजी हिस्सेदारी सबब दहशतगर्द खिलाफ वही कामयाबी मिली। गडल कामयाबियों पाकिस्तान ए अमरीका की पुरानी दोस्ती ए गडल अजम की सीधी हरी तकासी कन थी। दहशतगर्दी वाले सरगर्मियों ए इलाकई सिक्योरिटी खतरन सबब अफगानिस्तान वाशिंगटन के ध्यान जो महवर है।

सिंध के अठ जिले में मकानी इदार की नंबी चूंड ला पोलिंग जो अमल मुकम्मल थे बाद गैर सरकारी ए गैर नतीजा अचान शुरू। हैदराबाद में यूसी 49 वार्ड 2 पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार आलम खान 325 वोट खड़ी अगते। यूसी 43 के चेयरमैन वाली सीट से वोटन की गणप जो अमल जारी। सख के यूसी नसीराबाद में वाइस चेयरमैन की सीट ला पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार लियाकत अली 275 वोट खड़ी अगते। जेयूआई के कारी खादिम हुसैन 170 वोट खया। निंदापुर वार्ड 3 में जेयूआई जो इसरार कलवड़ 624 वोट खड़ी अगते। आजाद उम्मीदवार अब्दुल गफार कलवड़ 144 वोट हासिल कया। थारू शाह के यूसी मोलण के जिले काउंसिल की सीट पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार रोशन विस्तड़ो 453 वोट खड़ी अगते। आजाद उम्मीदवार अब्दुल कदीर विस्तड़ो 217 वोट खया। नौशरो फिरोज के पोलिंग स्टेशन अजमत देरो से पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार 342 आजाद उम्मीदवार 78 वोट हासिल कया। केन शाह के यूसी बुरला के चैन पोलिंग स्टेशन के नतीजन मूजिब पीपुल्स पार्टी जो अमजद बुरड़ो 942 वोट खड़ी अगते। जीडीए के जुल्फकार फहारो 243 वोट खया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार बीहर खबरदार कहते है तो ईरान जल्द का जल्द जंग बंदी कर वे तो उनके हक में बेहतर थो जल्द अमन वायदो तय न थो तो ईरान के तमाम दुखे वक्त के मोहड़ो पवो। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा किया है तो अमरीका और इसराइल के ईंदड़ हफ्ते ईरान से हमले की तैयारी मुकम्मल कर वरती है। हमला ईंदड़ हफ्ते बीहर शुरू थी सकन था। अमरीकी अखबार मूजिब विच ओभर के बिन आला अहदेदारन इसराइल और अमरीका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शन से गौर विचार कर रहा है जिनमें ईरान के फौजी ए बुनियादी ढांचे से वही बम्बारी। नार फार्स में वाक़ ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज खारिज आइलैंड के कब्जे ईरानी सरजमीन से कमांडोज लाहे मलबे हेटा दबल एटमी मवाद के कब्जे में वन शामिल है। लगे तो अमरीका और इसराइल गलतियों में न सीखो है। रूस पारा ईरान से बीहर हमलन वाली खबर से रदेमल। गडल कौमन के मुआशी ए समाजी काउंसिल के इजलास दौरान रूसी नुमाइंदे लगे तो अमरीका और इसराइल माजी के गलतियों में सबक न सीखो है।

पंहिंजी सप्लाई बाबति रुकावटनि जी सूरतहाल बरक़रार रही त मुआशी तरक़ी मुतासिर थींदी ऐं वॾे पैमाने ते डिघे मुदे लाइ मुआशी रुखायूं पैदा थींदियूं। गॾियल क़ौमनि जे मुआशी ऐं समाजी काउंसिल जे इजलास दौरान पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त हाणोकी आलमी तवानाई ऐं सप्लाई में ईंदड़ रुकावटनि जा असर दुनिया जे हर खिते ऐं मैशियत में महसूस कया पिया वञनि। ॿारनि जूं क़ीमतूं 2025 जी सरासरी भेट में भीड़ खां वधी वियूं आहिनि। वधीक 3.20 करोड़ माण्हू गुरबत में वञण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। ओलह एशिया जा मुल्क हिन बोहरान में सिधी रीति शामिल न आहिनि पर असर बर्दाश्त करे रहिया आहिनि। तकरार सबबि सभ खां वधीक मुतासिर मुल्कनि में पाकिस्तान बि शामिल आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
2: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आय होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश, गुर्दे की पथरी, सोज, पुरानी खंघ, जुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक, बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाए 0327-99-84-768।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जल्द आ रहा है।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे माया गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा ओगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन के 5 सालन जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ इतिहाद के मजबूत करण ते इतफाक। कराची में अहम मुलाकात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर खास के रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 जणा गिरफ्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसीई 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मौतल। रिकॉर्ड सील सेक्रेटरी तलब। लाड़काने अस्पताल में व्यम लाए आयल औरत बार समेत फोत। डॉक्टरन ते गफलत जो इल्ज़ाम। आई स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा। सिंध में कारोकारी जो कारोबार कदें खत्म थींदो।

सिंधु हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं DAP जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूदि कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंधु हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि DAP ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूदि कणक जी पोखाई न कई आहे, उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फ़ैसिले हेठि DAP ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूदि कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंध हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फ़ैसिले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फ़ी एकड़ जे हिसाब सां DAP ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपयनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियण ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंधु हुकूमत पारां सख़्तु फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवणु आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान जी राजा हाउस आमद सिंध में PP मुखालिफ इतिहाद के मजबूत करण जो फैसलो। उन दसमी काल मौलाना फजल रहमान राजा हाउस पहुंची GDA के सरबराह पीर पागारे से मुलाकात कई। मुलाकात के आमद वक्त सैद राशिद शाह राशिदी ए मौजम आबासी संदस इस्तकबाल कयो। जॾहिं त मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिणु मौजूदु हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्क जी सूरत हाल ते गुफ़्तगू थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में JUI क़ियादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़ियादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि में मंशियात फरोशी ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जे मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफ़त संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त ते इल्ज़ाम आहे त हू हेराफेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदारु अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त 80 रुपयनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोहरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़े जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयारु कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफ़त अहम इनकशाफ़ कया आहिनि जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगीअ बावजूदि इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया। जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंदि उमेदवारनि खे कामयाब करार ॾिनो वियो। उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई ते जारी कयल प्रेस रिलीज़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी।
लाड़काणे जे शेख जैद औरताणी अस्पताल में वियम जे लाइ दाखिल शहदाद कोट भरसां ॻोठ गोलू वाह जी रहवासण अठनि ॿारनि जी माउ चालीहनि वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फोत थी विया। वारसन अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतिजाज कयो। उन मौक़े ते फोती औरत जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त मंझंदि ॿारहें वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख जैद औरताणी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशोरे ते मां हज़ारे रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं। रत जूं अठ थेलियूं खे ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथूं बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जंहिंजी गिफ़लत ऐं लापरवाहीअ सबबि मुंहिंजी भेण अठनि ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो इस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जी धरती मोहब्बत, अमन, रवादारी ऐं सूफ़ीज़म जी सुञाणप रखे थी, पर अफ़सोस जो अॼु बि कुझु इलाइक़नि में कारोकारी जहिड़े ज़ालमाणी रस्म इंसानियत जे चहिरे ते कारो दाग बणियल आहे। कारोकारी सिर्फ़ु हिकु रस्म न पर केतिरनि ई हंधनि ते उहो हिकु कारोबार बणिजी वियो आहे, जिथे इज़त जे नाले ते इंसानी जाननि सां रांदि कई वञे थी। कारोकारी में घणो करे औरतुनि खे निशानो बणायो वेंदो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाक्यनि में ज़ाती दुश्मनी, ज़मीन जा तकरार, कर्ज़ या क़बाइली अना बि असुलु सबबु हूंदा आहिनि। कुझु माण्हू पंहिंजे मुफ़ादनि जे लाइ कंहिं औरत या मर्द ते इल्ज़ाम हणी जुर्गनि ज़रिए ॾंडु वठी या क़तल खे जाइज़ करार ॾेई हिन ज़ुल्म खे रवायत जो नालो ॾियनि था। अहिड़ी तरह बेगुनाह माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेहनि था ऐं समाज ख़ामोश तमाशाई बणिजी बीठो रहे थो। अफ़सोस जी उहा ॻाल्हि आहे त केतिरनि ई इलाइक़नि में कारोकारीअ जा फ़ैसिला कानून बदिरां जुर्गनि में कया वञनि था। उहे जुर्गा अक्सर ताक़तवर माण्हुनि जे मर्ज़ीअ मूजिबि हलाया वञनि था, जिथे इंसाफ़ बदिरां असरु रसूख ऐं पैसे जी

अहमियत हूंदी आहे। नतीजे में ग़रीब ऐं कमज़ोर माण्हू वधीक मुतासिर थियनि था। औरतुनि खे पंहिंजी सफ़ाई पेश करण जो बि हक़ नथो ॾिनो वञे ऐं खेनि समाज जे ख़ौफ़ सबबि ख़ामोश रहणो पवे थो। इस्लाम बि बिना सबूत कंहिं ते इल्ज़ाम हयण या क़तलु करण जी सख़्तु मुखालफ़त करे थो। क़ुर पाक ऐं शरीयत इंसान जी जान खे मुक़दस करार ॾियनि था, तंहिं करे कारोकारीअ खे मज़हब सां जोड़णु सरासरी ग़लति ऐं ज़ुल्म आहे। हीअ रस्म न सिर्फ़ क़ानून जे ख़िलाफ़ु आहे पर इंसानी इख़लाकियात ऐं समाजी क़दरुनि जी बि तोहीन आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त समाज में शऊर पैदा कयो वञे, तालीम खे हथी ॾिनी वञे, औरतुनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं क़ानून ते सख़्तीअ सां अमल करायो वञे। मीडिया, उस्तादनि, अदीबनि ऐं मज़हबी आलमनि खे बि पंहिंजो मुस्बत किरदारु अदा करणो पवंदो, जीअं माण्हुनि जी सोच बदिलजी सघिजे। जेकॾहिं अॼु बि असां ख़ामोश रहियासीं त सुभाणे वधीक बेगुनाह ज़िंदगियूं हिन बेरहम रस्म जे वर चढ़ी वेंदियूं। कारोकारी कंहिं बि सूरत में इज़त न पर इंसानियत जो क़तलु आहे। सिंध खे अहिड़ियुनि ज़ालिमनि रस्मुनि खां आज़ादु कराइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे, जीअं हीअ धरती ॿीहर अमन, मुहबत ऐं इंसाफ़ जी सुञाणप बणिजी सघे।

0: इहो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां

0: फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह साहब वापस आहिनि। डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कनगलो पुराणो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जलन तिली जो वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालेज खंग टीबी हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन के इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन तड़े औरतन में वजन जो न वधण इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वे तो। डॉक्टर साहब रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तई हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। जुमो सुबह 9 का मंझंद 12 वगे तई बाकी आम डीहन में डॉक्टर साहब की टाइमिंग सुबह जो 9 का शाम 6 वगे तई सिर्फ जुमो सुबह जो 9 का मंझंद 12 वगे तारी। नोट सिर्फ दवा स्टोर त वठणी पवे थी, डॉक्टर साहब जी होम्योपैथिक जी मेडिसिन होंदी आहे जेका सिर्फ होम्योपैथिक स्टोर ताईं तव्हांखे मिली सघे थी। जेको डॉक्टर साहब वटि होम्योपैथिक स्टोर मौजूदु आहे, सामिन परेशान थियण जी ज़रूरत कान्हे का, कंहिं बि क़िस्म जी बीमारी आहे, इलाज कराए कराए थकिजी पियो आहे पियो फ़ाइदो नथो पवे, हिकु बार होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सां पंहिंजो इलाज कराए ॾिसो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहियो त तव्हां ज़रूरु शफ़ायाब थींदा। सामिन शफ़ा ॾियणु अलाह जी ज़ात जो कमु आहे, इलाज ऐं हिलो वसीलो तव्हां लाज़मी करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सां पंहिंजो इलाज करायो। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में कोई साइड इफेक्ट न आहे ऐं बीमारियुनि खे जड़ खां ख़तमु कयो वेंदो आहे। डॉक्टर साहब सां गॾु मौजूदु आहिनि, मां मूंखे डॉक्टर साहब जो नंबर नोट कराईंदो हलां, 0327 9984763 2387894763। जीअं समय इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे, तव्हां इन ते कॉल करे डॉक्टर साहब खां लाइव सवाल पुछी सघो था। डॉक्टर साहब मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कहिड़ा हाल आहिनि मुंहिंजा?
1: अलहमदुलिल्लाह।
0: डॉक्टर साहब अॼु को पंहिंजो टॉपिक कहिड़ो आहे असांजे सामाइन जे लाइ?
1: जी बिल्कुलु, अॼु को टॉपिक प्रोग्राम सिहत जुराज़ होम्योपैथिक सां गॾु जेको अॼु को टॉपिक असां रखंदासीं कंहिं बीमारी जे हवाले सां, कंहिं तकलीफ़ जे हवाले सां, उन जे बारे में मुकमल मालूमात अवां खे ॾींदासीं। पर हिकु ॿिए वरी अवां यादि रखो त इलाज होम्योपैथिक, होम्योपैथिक इलाज में को साइड इफेक्ट कोन्हे को। इन में सभिनी खां पहिरीं इहा शइ ज़रूरु आहे त पेशंट जेको आहे उनजी सिहत बहाल थिए, तंदुरुस्ती उनखे थिए ऐं को नुक़सान न थियनि, दवाउनि जो इस्तेमाल सां को साइड इफेक्ट न थिए ऐं बीमारी खणी वधे न, बीमारी आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थिए। त अहिड़े तरीक़े जो इलाज सिर्फ़ु होम्योपैथिक तरीक़ेकार इलाज में मौजूदु आहे। असां वटि होम्योपैथिक जी दवाऊं मौजूदु आहिनि, होम्योपैथिक दवाउनि सां असां इलाज कंदा आहियूं, जेको कुदरती दवाऊं आहिनि ऐं कुदरती तरीक़ेकार सां दवाऊं ठाहे तयारु करे वेंदियूं आहिनि। इन जे तयारु करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ कंपनीज़नि जेका पंहिंजे रूल्स ऐं रेगुलेशन जे हिसाब सां दवाऊं तयारु कंदियूं आहिनि, उन खां बाद में डॉक्टर्स खे रेफर कंदियूं आहिनि, पोइ डॉक्टर साहब उनखे प्रिस्क्राइब कंदा आहिनि, पेशंट खे ॾींदा आहिनि तकलीफ़ुनि में मर्दनि में। अवां बि पंहिंजो बीमारीअ जो इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कराए सघोसि था। होम्योपैथिक हिकिड़ो नालो आहे होम्योपैथिक, पर असल में इहो कुदरत ई इलाज आहे। होम्योपैथिक जे तव्हां इलाज जे बारे में सम्झणु चाहियो था त इहे सम्झो त होम्योपैथिक इलाज ई कुदरती तरीक़ेकार इलाज आहे, जेको कुदरती दवाउनि सां, कुदरत जी तरीक़ेकार सां अव्हां जी बीमारियुनि जो इलाज कंदी आहे होम्योपैथिक। अवां यादि रखो, अॼु बि पेशंट मुंहिंजा हुआ त कुझु शेरवानी किरी हलिया विया, वरी वापसि आया आहिनि, त हीअ कुझु ॾींहुं ज़रूरु इहा दुखाई ज़रूरु थींदी आहे, पर प्रोग्राम असांजा जेका ॿुधनि पिया त उन्हनि सभिनीनि खे मां इहो ज़रूरु चवंदुमि त इलाज जे लाइ अचिणो आहे त अव्हांखे स्टेशन रोड ते अचिणो आहे, शेरवानी किरीअ ते नाहे अचिणो। ऐं जेको अॼु पे पेशेंट हुआ असाजा तकरीबन कुछ जो एफएम बुधी आया हा तो कुछ राबतों कर आया हा तो सीधा असाट पोची दवाओं से वी वह कुछ जो परेशान थी वह होदा पौता वरी हेदा आया तो परेशान थी इन में अवां के जरूर चवंदुसि एफएम से अनाउंसमेंट हले पई उन के अलावा प्रोग्राम में भी असा अनाउंसमेंट क्यों पाया असल में ये शे एतरी जल्दी इन कर टाइम असट न हो असट खमीस जो ढी होंद खबर है खमीस वाले ढी प्रोग्राम न होंद जुमे जो ढी क्लिनिक बंद होंगी तो असट इो ही टाइम हो तो जैमें अस शिफ्टिंग कर सकूँ था बाकी टाइम असट न हो सजो हफ्तों अस क्लिनिक हलासी या शिफ्टिंग कदसूँ तो शिफ्टिंग करण बुधन में आराम आसान वर्डन त माना शिफ्टिंग कर इतना खड़ी होदा वनो पर उनमें जो मेहनत है तो वह जरूर लगे थी समिट प्रोग्राम में बीमारी का बीमारी के अच जरूर डिस्कशन कदासूँ अवान के उन बारे में जरूर का न का शे समझाइंदासूँ एहतियात परहेज किरी इन सभी शय के बारे में अवान प्रोग्राम में शामिल भी थी सको था का बीमारी आ का तकलीफ आ का मर्ज है तो उन बारे में मालूम वी वी सोस था उन के अलावा का पेशेंट है उनको इलाज कराओ पाया इलाज कराए कर परेशान थी वह को फायद न पो दिस में अचे तो मालूम मशवरों कर सोस था असम प्रोग्राम में भी कॉल कर मशवरों कर सोस था या लाइव क्लिनिक अची भी मालूम मशवरों कर सोस था असि पूरी नीयत से अवान के उन बीमारी के बारे में जरूर बुधाई तो इन सा तकलीफ इन वजह से थी आ इन जो इलाज इं थी सके तो उन में एहतियात परहेज इं अवां के करनी है अजो के प्रोग्राम में असा जो टॉपिक रखूँ था असो टॉपिक है मायदे के हवाले से गर्मियों आन तो उनमें कर मायदे के बारे में जरूर कबो मायदे के बारे में गाल इन करबियों तो गर्मी में मादे में गर्माइश है तो समझो गर्मी जल्दी लगन का चांस थी था वन उन्हें का अलावा जिसम में पानी की कमी गर्मी लगन का पो पानी की कमी जरूर थी पवी तो उन्हें में भी तकलीफ जरूर थी तो गर्मी लगी सकेस थी जिसम में रत जो खट होजन उन अवान के गर्मी लगी सकेस थी इन शयन में अवान पाँजो एहतियात जरूर कर जै पेशेंट हन जो ब्लड प्रेशर हाई थी या लो थी वह गर्मी के पानी पान के जरूर बचाण जैके रत की कमी थी है तो वह भी कोशिश कन गर्मी के पान पान का बचाएं मादे की गर्माइश है तो उनके भी चंदा तो पान पानी गर्मी में बचाएं गर्म शूँ तरल शूँ मिर्च मसालन का पान पान के बचाएं एहतियात कन तो एहतियात से ही समझो इलाज थे शुरू थी सके तो एहतियात न होंगी तो इलाज में भी तमाम घनी दुखाई परेशानी थी वे एहतियात से ये फायदो आ बीमारी वे को बाकी जो दवाओं अवान इस्तेमाल कंदा उन आस्ते आस्ते खत्म थी वे यो फायदो है एहतियात जो इलाज जो असमें प्रोग्राम में जो अज मादे के हवाले से अवसा गाल मादे में तकलीफ थे मादे में हा में साड़ो जलन गैस भर्ती कब्जी जख्म वात जो पची वन मानी खाओ पेट से सूर थे उल्टी थी वन केदी मल कब्जी थी वन केदी मल दस्त थी वन सब शूँ इन मादे के कर इन का अलावा मादे की बीमारी जो अस इलाज न कंदासूँ तो अगत अस जिगर से गर्माइश जिगर के मथा चर्बी जो थी वन हेपाटाइटिस जो थी वन फिकी साइज जो थी वन जिगर जो साइज नंढो वो थी वन रक्त जिसम में घट थी वन यो भी तो दिली भी वी वे मादे की खराबी से लब लबो पाँजो कम किरदार तकरीबन घट कर वो जेम मादे से गर्माइश थी है तो अवान के शुगर जहाँ जड़ा मसला पैदा थी सकन था आंटन में खराबी थी सके थी जो खाधो पीतो सही तरह हजम न पो थे तो आंटन में हजम न थो टाइफॉइड बुखार आंटन में जख्म आई हर्निया वट घुमरा ये सब शूँ पैदा थी सकन थी बवा सिर ती इन थी सके थी यानी गाल सिर्फ यह हुई तो बीमारी तकरीबन तक एतरी बुधाऊँ तो अना कुछ रहल तो जी दिल जहाँ मसला ब्लड प्रेशर हाई लो थी वन रात टंगन में पट पटा वेयू थी मगज के चक्कर मथे में सूर चिड़ कावड़ जान सुस्ती सब शूँ इन मादे के कर जेस ती अवजो ही मायदो ठीक न रो अवान के इन सभी गाल में के ना के बीमारी में अव जरूर रो इन कर मुझे वटो भी पेशेंट तो अचे तो मुझी कोशिश यही रही है तो पैं उनके मायदे के हवाले से दवा जरूर थे तो खराबी ही शुरुआत इतना ही मायदे का थी है मादे की खराबी से ही आस्ते आस्ते बिया बीमारियों पैदा थे शुरू थी पवंदन कुछ बीमारियों जिनके बारे में शुगर तक चिंत शुगर यकदम नी थे कुछ वक्त का तकरीबन 20 साल तीन मैदे की खराबी रुपये को पेशेंट रो तो 20 साल तीन पेशेंट जो मैदो खराब रो तो उनको लब लबो खराब थी पवो मतलब एक रिसर्च के मुताबिक यह गाल चई वन इन करे मादे में का तकलीफ है का मर्द है मादे में का जलन थे पे भर्ती केस थे पो उन्हें जो इलाज जरूर करायो। अच्छा सामिन प्रोग्राम में मादे के हवाले से चूं पे तो मादे के बारे में इन कर चूं पे तो सब बीमारियों की शुरुआत ही इन मादे का थन्दियों मादो अवजो सही रो अवे तकलीफू मर्ज ना असि दवाओं भी असरात अवं जरूर दिखार असि दवाओं की शुरुआत ही इन मादे का ही थन्दियों
0: डॉक्टर साहब गाल पे हल्द रह लेकिन कॉल वा केर असला
2: छड़े वनी थी वरी माना 6-12 महीने थींदी आ।
0: अच्छा खंग वगैरह
2: जी कम पढ़ाई दो आ
0: खंग
2: जी
0: खंग वगैरह थे थी
2: ना ना खंग को नहीं।
0: चलो ठीक है एफएम तो डॉक्टर साहब बुधाइन था डॉक्टर साहब साथ ही सोड़ जी की तकलीफ हुंदी आ
1: सही साहब में सोड़ जी तकलीफ खंग वगैरह वहां के कने का पो भी अवे साह में सोड़ ए तकलीफ थे पी तो इनमें अवज जो ब्लड प्रेशर आने जरूर चेक करायो अवजी जी दिल की जी कारदगी उनके जरूर चेक करायो माना ईसीजी करायो ईसीजी से फायद ये तो दिल में का मसलो है तकलीफ है उन साह में सोड़ थे पी तो उन मू इलाज कराए जो मायदे के करे थे पी तो उन मू इलाज कराए जो छाती है जो क्लियर थी छाती जो को पर नक की हड्डी जो वन मौसम की तब्दीलिया में ये साह में सोड़ थी मतलब कि बीमारी यह है एकड़ी साह में सोड़ पर इन चार पंजन शयन में कें के शे के करे साह में सोड़ थी है हाँ अवां क्लिनिक अचो हाँ तो असा ये सब शूँ पान चेक कर वो हाँ तो अवां के बुधा छो हाँ हाँ सही यह मसलो अवजो इन बीमारी के करे थे पो उन अवजो इलाज भी सही थी वे अवी सेहत भी सही थी वे अवजी यह तकलीफ भी खत्म थी वही असल में जो मर्ज रिपीट थो पांच साल में 6 साल में 3 साल में रिपीट थो तो उनमें खास कर यह तकलीफ होंगी है तो पेशेंट के बदपरहेजी थी वाले इलाज उनको मुकम्मल न पो थे थोड़ो घो इलाज थे पो तो सेट थे पी तो वरी पेशेंट हलिया वन इलाज वगैरह न कराइंदा तो केंद्र मल जारी गल सब सजो ढी तो मू एहतियात कर सके तो पर कुछ महीनों ती एहतियात नो करें एहतियात नथा थे बदपरहेजी थे थी पो ही या तक वरी रिपीट थे पी अवे के सिर्फ यहाँ चुन अवं जो चो पे साल में खत्म साल में वरी दवा वगैरह का खत्म थी पवी तो यो इलाज अवजो न पो थे ये दवा अवं के सिर्फ वक्त ही फायद दियन पे अलहमदुल्ला होम्योपैथिक में यह वक्त ही फायदे वाली का भी गाल कान्ने का उन्हें जो है तो पहाड़ में बीमारी के खत्म कर जड़ में खत्म कर कहानी खत्म कर छो बीमारी न हो पेशेंट के वरी या तकलीफ थे ही न इन करे अवां के असा वरी चौंदासूं ता होम्योपैथिक इलाज करायो होम्योपैथिक तरीकेकार के इलाज सा अवां जी या तकलीफ जरूर खत्म थी सके थी।
0: जी असमें डॉक्टर साहब बिल्कुल तवां के सही बताया तो होम्योपैथिक तरीका इलाज सा अवां जी केड़े भी किस्म जी तकलीफ हो जे वा जरूर खत्म थी सके थी। हाँ अदे सैदाबाद वाले जो को सवाल हो तो साह में तकलीफ है 7-8 सालन का हाँ अदे इलाज तो पंजो जरूर कराया होंदो पर फायदो ना है होम्योपैथिक तरीका इलाज से तवा इलाज कराए दिसो इंशाल्लाह जरूर सेहतयाबी थींदी। डॉक्टर साहब भी कॉल वठो था केर ससा गर मौजूदन किथा का अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: अदा केर गलाए पे किथा का
2: फादर बोल चमे चांदे बोलता
0: अजी अदा छा सवाल है डॉक्टर साहब ला
2: डॉक्टर के जो सवाल है यो डॉक्टर ते दे ने दे मा सब बीमारी थेंदी हूं
0: जी अदा
2: बुदो ना मुझे डॉक्टर ऐसा खुद हूँ तो ये डॉक्टर कहते तो सब मतलब मैदे में ही सब बीमारी पैदा थी थे
0: जी यो सवाल तवा जो यो पूछन चाहे था तो बीमारी किथा पैदा थन थी
2: हां डॉक्टर ऐसा खुद हूँ ऐसे में जो को ना
0: जी जी
2: हा इहो डॉक्टर सही थो चए पर माना मूंखे थोरो चए थो माना जीअं अखियुनि खे चकर जा अहिड़ी कंहिंखे ॾिसां थो न उहो जीअं फिरे इहो मूंसां चकर थो थिए।
0: अच्छा
2: हा
0: ठीकु आहे दादा, तव्हां एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाइनि था। जी डॉक्टर साहिबु,
1: साईं इन में अमा अखियुनि वारो जेको डॉक्टर आहे उहिदा हलिया वेंदा, मुंहिंजे इन शइ जो इलाज न थी सघंदो। अच्छा उन में बि असां जे अखियुनि वारे डॉक्टर वटि वञूं त छा वञूं छो वञूं इन्हनि जे बारे में ॿुधायां थो। त अखियुनि वारे डॉक्टर खां अमा पंहिंजी नज़र चेक करायो, अखियूं चेक करायो। जीअं मिसाल तौर ते नज़र जी घटि वधी आहे या नज़र जे करे अव्हांखे तकलीफ़ थिए पई, पोइ असां वटि इलाजु इहा न थी सघंदो। असां अव्हांखे ईंदा हुआ पोइ दवाऊं बि ॾींदासीं, फ़ाइदो न थी सघंदो। इन करे पहिरीं अव्हां सकरनि में सिविल हॉस्पिटल में सुभाणे सूमरु आहे त डॉक्टर ज़रूरु ईंदा अखियुनि वारा। अव्हां पंहिंजी नज़र चेक करायो त नज़र जी घटिताई आहे उन जे करे थिए पई त उहो असांजो इलाजु उतां ई थी सघे थो। बाक़ी जिस्म में का बि का तकलीफ़ आहे, का मर्ज़ु आहे उन जे करे थिए पई, त बि असां वटि तव्हां अची सघोसि था, उन जो इलाजु असां करे सघूंसि था। बाक़ी जेका नज़र जे करे थिए पियो त उहो इलाजु असां न करे सघंदासीं।
0: जी हा समीन, अवां ॿुधो पिया जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण करे हाज़िर ख़िदमत। मां मुंहिंजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी मूंसां गॾु सकरनि जा मशहूरु ऐं मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब। समीन, अवां डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था, सवाल पुछी सघो था। डॉक्टर साहब असां सां गॾु आहिनि पूरे 9 वॻे ताईं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक, हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकरन। डॉक्टर साहब जी एड्रेस आहे, काफ़ी मरीज़ अॼु अची चुका हुआ जिन्हनि ॾिठो, ऐं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक घणनि मरीज़नि खे पहिरीं जी ख़बर आहे, छो जो डॉक्टर साहब जिन जो वाल साहब ऐं डॉक्टर साहब जिन जो ॾाॾो इन ई क्लिनिक ते वेही मरीज़नि जो इलाजु कंदा हुआ। जीअं समीन, साॻी पुराणी क्लिनिक ते डॉक्टर साहब अची चुका आहिनि ऐं तव्हां अची पंहिंजो इलाजु कराए सघो था। पहिरीं थोरी शहर खां ॿाहिरि हुई, तव्हांखे अचण में दुश्वारी हुई, इन जे लाइ डॉक्टर साहब अव्हां जी सहूलियत ख़ातिर शहर में अची क्लिनिक आबाद कई आहे ऐं तव्हांजे लाइ मुंतज़िर आहिनि त पंहिंजो अची इलाजु करायो ऐं बीमारियुनि खां पंहिंजी जान छॾायो। सामिन, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में साइड इफेक्ट न आहे, बीमारियुनि खे जड़ खां ख़तमु कयो वेंदो आहे, पुराणी में पुराणी बीमारी खे बि आहिस्ता आहिस्ता ख़तमु कयो वेंदो आहे, यानी जड़ खां इलाजु कयो वेंदो आहे। त शुरूआति किथां खां थी ऐं पोइ हुनखे आख़िर एंड ख़ात्मे ताईं पहुचायो वञे थो। असांजो कमु कोशिशि करणु आहे शफ़ा ॾियणु, अलाह जी ज़ात जो कमु आहे। पुराणे में पुराणो मर्ज़ बि होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सां ख़तमु थी सघे थो। कहिड़े बि क़िस्म जो मर्ज़ु हुजे, औरतूं हुजनि चाहे मर्द, नंढा ॿार हुजनि चाहे वॾा, चाहे बुज़ुर्ग हुजनि, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज सां इलाजु कराइनि ऐं पाण खे शफ़ायाब हासिलु कराइनि। अॼु समय असां सां गॾु मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहबु। डॉक्टर साहबु जनरल फिज़िशियन आहिनि, हर बीमारी जो इलाजु कंदा आहिनि, हर क़िस्म जी उमिरि जे माण्हू जो इलाजु कंदा आहिनि। डॉक्टर साहब खां तव्हां पंहिंजो इलाजु कराए हिकु दवा होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां दवा खाई ॾिसो, इनशाला ज़रूरु सहतियाबी थींदी। असां तव्हां डॉक्टर साहब ॾे कॉल करे सघो था, मां तव्हांखे नंबर नोट करायां थो, 0327-99-84-763 0327-98-84-763। जी असां इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे ऐं मां तव्हांखे नोट कराईंदो हलां त डॉक्टर साहब सत ई ॾींहं क्लिनिक ते मौजूदु आहे, पर टाइमिंग जो थोरो फ़र्क़ु आहे। जुमे ते सुबुह जो 9 खां मंझंदि जो 12 वॻे ताईं, बाक़ी सभई ॾींहं डॉक्टर साहबु क्लिनिक ते मौजूदु आहिनि सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं। डॉक्टर साहबु कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, सर क्या हाल त ख़ुशि थियो?
0: अदा सभु ख़ैर, केरु ॻाल्हायो पिया किथां खां?
3: अयाज़ हुसैन जमाली पियो ॻाल्हायां, नवाब शाह खां।
0: अयाज़ हुसैन जमाली, नवाब शाह, जी अदा, छा सवाल आहे डॉक्टर साहब लाइ?
3: डॉक्टर साहब का सवाल है, एक रात जो टंगन में सूर तो पे।
0: अच्छा, सिर्फ रात जो टंगन में सूर पवे तो?
3: जी जी,
0: पटपटा थे थी।
3: जी जी हां
0: ठीक है। एफएम पे तो डॉक्टर साहब बुधन था। जी डॉक्टर साहब,
1: साईं रात जो टंगन में पटपड़ा थे माना बेचैनी थे और निंड जो केदी मल अची वन केदी मल न अचन अखियो बूटी पयन पर ख्वाब ख्याल हलन पिया तो ये सब आन मादे जे करे। अच्छा ख्वाब ख्याल में वरी ब गालियों थी वेंदियन बाकी ख्वाब ख्याल घटाए तो वरी ये सब मादे जे करे मतलब एकड़ी गाल थी वनी मादे जी खराबी जे करे या तकलीफ थिंदी आ रात जो बाकी रत घटा जिस्म में कमजोरी आए तब या गाल थी वेंदी उन्हें अलावा जी मोचम द ख्वाब ख्याल निंड कान अखियो बंद ही दिमाग है माए तो दिमाग जिस्म में कमजोरी रत जो घट थे ये सब गालियों मिक्सन जैसे करे अवां के या तकलीफ थे पाई इन्हें जो अवां जी होम्योपैथिक तरीके से इलाज कराइंदा तो इंशाल्लाह अवां के पाने ही बिन कोरस में अवां पान बिल्कुल सेहतियाब सेट थी वेंदव तो ये बीमारियों एतरी कान के एतरा वो मसलो ना है अयला करे न पहुंचे तो अने चा अवां जो इलाज सस्तो बेहतरीन इलाज अवां जो थी सके तो होम्योपैथिक असल में होम्योपैथिक जो माना ही यह है तो जेका बीमारी आहे उन्हें बीमारी की दवा मिले वह बीमारी खत्म थी वे होम्योपैथिक जो जो असा चवंदा होम्योपैथिक उनका मतलब यो है तो जेका बीमारी जिथा पैदा थे पी उन होता ही दवा रही होते ही खत्म कर छो अगते वे न इन की कौम परस्ती थे ही न अंदर में कौम वे ही ना इनकी तो उनमें अवा होम्योपैथिक इलाज कराए सको था। होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट वाली शूं न होंद मतलब कि इलाज अस क्यों पे जे बीमारी के ला जे तकलीफ के हवाले से तो उ बीमारी आस्ते आस्ते दवाओं से इलाज से खत्म थी सकें थी बाकी असांजी कोशिश रही है तो होम्योपैथिक की दवाओं अवं मिलन बेहतरीन दवाओं मिलन इन करेम अज भी आयो हों पान डिठो हों कल भी आया उन्होंने पान डिठो मुझे प्रोग्राम बुधन पे तो नोट किया हों तो मैं सिर्फ पंजे रूम में वेठो न हों पेशेंट जैसे चेकअप करे उन्हें बाद में बस मैं कुर्सी से वेठो ये न हों कड़ी कड़ी मल मुझे जी मल खबर पवी है या मुझे थोड़ा महसूस तो हि दवा में थी सके कोई गड़बड़ न हो चेंबर में निकरी स्टोर में हलो वो हाँ भाई यह दवा कें ठाई कई मतलब हर शे मैं पाँच नोट कह रहा रो ये बिना तो मैं अचान पो तो मैं बुधा तो मैं अचान तो निना बुधाए हलो वो स्टोर से हाँ भाई घना पर्चा पियान दवाओं कें पन कड़ी दवा ठाई है मतलब चेक मैं कह रो तो इन वजह यो है तो पेशेंट जो आयो उम्मीद सारे तो उनके दवा जी मूँ लिखी है वह दवा उन मिली या न मिली या कान्ने का न दिनी है मटाई छी ये सब शूँ न थे उनके जै दवा की जरूरत है वह दवा मो पर्चे से लिखी आई दवा मिले इन कर पान ये कभी कभी मैं नोट कह कभी मल तो पा पेशेंट की कंडीशन दिसंद तो पा मुतमिन ही नींद पा मुझी दवाओं मेडिसन पा मुझी ठाईद इन पेशेंट की दवा ना हुई पा अच्छी पा ठाईस उनमें चाहे तो केस तमाम खराब हूं तो दवा जो जो ठाने तरीकेकार हो पा ठाईद तो यह शूँ जरूर आज पेशेंट अस उम्मीद से अचे पो तो उनके दवा सही मिले बाकी कम है उनके खाण जो टाइम से खाधी टाइम से इस्तेमाल कई परहेज कई तो अलहमदुल्ला तुम यह शूँ नोट कर तो चार साल में असाजा प्रोग्राम हलया तकरीबन इलाही माना हफ्ते में एक मोकल अस खी बाकी यको अस प्रोग्राम हलया इन प्रोग्राम में केतरा पेशेंट अस आया हूँ अव पा सोची सको तो अंदाजो लगे सोस प्रोग्राम से नेटवर्क आई डी से जो असि हलंदी है प्रोमो हल्द उन्हें से वही जो अस पुराना पेशेंट हुआ वह केतरा पेशेंट अस आया हूँ कें भी एक बिन के अलावा कें भी कॉल न कई एफ एम से अस दवा न लगी आ तकरीबन पेशेंट अलहमदुल्ला तैयार थे रिपीट रिपीट भी इंदा दवा खत्म थी वरी रिपीट इंदा दवा खत्म थी वरी रिपीट इंदा तो उनको जो मुकम्मल कोर्स थी तो वे अस उन जो बुधन पे तो उनके भी याद हों तो कें पेशेंट के इं भी चयन तो दवा हाँ दवा खत्म थी वे तो मोड़े ना है अचो बी टे चार ढी हफ्तों गुजारे मोड़े इंद उनकी वजह चाहे तो दवा की मेडिसन्स बंद थी वो जी बीमारी या तकलीफू आन थी सके अवा दवा खाओ पे तो दवा तैयार थो पे दवा तुम बंद क्यों तो दिसूँ कड़ी तकलीफ हाँ थे पी तो मैं जे दवाओं हलाइंदा दवा इस्तेमाल कर अल किथे वही खुटंदूँ टेस्टू रिपोर्ट कराया तो सागो तुम खर्च बैलेंस जया तो बी एक ढी बी तवाओं इस्तेमाल न कौ बंद कौ अ तकलीफ छे पी सिर्फ़ वह शे अवा याद रखो दवा ख़त्म थी वही, ॿ ॾींहं में ॾिठई को तकलीफ़ कोन्हे को, त तव्हां ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, सिहतमंद आहियो। जीअं ॿ ॾींहं टे ॾींहं खां पोइ का तकलीफ़ महसूसु थिए पई, त उन सां इहो सम्झ में अची वेंदो त हाणे सिर्फ़ु इन बीमारी जो इलाजु करिणो आहे, बाक़ी बीमारियूं अलहमदिल्ला ख़तमु थी वई। उहा इलाजु करे पेशंट खे असां चवंदा हाणे बिल्कुलु तव्हां तयारु आहियो, हाणे तव्हांजी सिहत, तव्हांजी ज़िंदगी ख़ुशहाल आहे, उन सां अव्हां जे लाइ बहितरी आहे, छो त इन में अव्हां खे नुक़सान खां असां बचाए वियासीं। असमिन, होम्योपैथिक तरीक़ेकार इलाज कुदरती तरीक़ेकार इलाज आहे। कुदरती ही वसीले दवाउनि सां इहे ई दवाऊं तयारु थींदियूं आहिनि, जेको असां पेशंटनि खे ॾींदा आहियूं, इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं होम्योपैथिक में हिकिड़ी वॾी रेंज आहे मेडिसन्स जूं, वॾी वसीलो दवाऊं आहिनि, त उन सां पेशंट खे जेका मेडिसन खपे थी, जेका मेन पेशंट खे ज़रूरत आहे, उहा ई मेडिसन, उहा ई दवा उन पेशंट खे असां ॾींदा आहियूं। उन जी वजह छा आहे त असां वटि को बि क़िस्म जी दवा तयारु न हूंदी आहे, असांखे पाण सभु फार्मुलेशन करणी पवंदी आहे, त जेको फार्मुलेशन जी ज़रूरत उन पेशंट खे आहे, असां उहो ई फार्मुलेशन ॾींदा आहियूं।
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: अदा केर ॻाल्हायो पिया ऐं किथां खां? जी अदा, छा सवाल आहे डॉक्टर साहब लाइ?
2: मुंहिंजो सवाल इहो आहे, मुंहिंजे पेरनि जे अङुरियुनि में आहे ख़ारिश।
0: अच्छा, पेरनि जे आङुरियुनि में सिर्फ़ु ख़ारिश आहे?
2: ख़ारिश ॿिन्ही पेरनि जे चीट जे अङुर जे विच में, वरी हुन पासे बि, इहे ॿिन्ही पेरनि में ख़ारिश थी, पोइ रस्त आहिनि उहे ज़ख़्म उहे थिया पिया आहिनि, बसि केॾी महिल
1: रखो। मां एफ एम ते वेही कॾहिं बि कंहिं बीमारी जो इलाज न ॿुधाईंदो आहियां, का डस वग़ैरह जेका मुनासिब हूंदा आहिनि त अवां करे सघो, अवां मतिलबु की उन ॻाल्हि खे सम्झी उन ते अमल करे सघो, सिर्फ़ु एतिरा मां डस ॿुधाईंदो आहियां, इन खां वधीक शयुनि जी तरफ़ मां न वेंदो आहियां, छो त असां चऊं अवां कयो का ग़लती थी वञे, मिसिंग थी वञे, ऐं उहा शइ ख़राबु थी वञे, अवां इस्तेमालु कयो, सुभाणे चयो डॉक्टर तव्हां चयो इहा खाधी त असां खाधी, असां सां इहा तकलीफ़, इन करे अवां खे मां या त तव्हां मुंहिंजी क्लिनिक ते अची वञो, ऐं तव्हांखे हिकिड़े पर्चे ते लिखाए छॾंदुसि, पने ते लिखाए छॾंदुसि, ऐं तरीक़ेकार कीअं करिणो आहे, कीअं न करे, सभु शयूं मां तव्हांखे सम्झाए छॾंदुसि, पोइ अवां वापसि भले हलिया वञो। उन ते अव्हांखे सम्झ में अची वेंदी कीअं दवा खाइणी आहे या का बि शइ आहे कीअं करणी आहे, अव्हांखे सम्झ में अची वेंदी, अव्हांजी तबियत सही थी वेंदी। बाक़ी जे अव्हांखे इलाजु करिणो आहे, होम्योपैथिक इलाजु कराइणो अथई, त अव्हां अची सघो था, सुभाणे क्लिनिक खुलियल हूंदी सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं, शाम जो 6 वॻे ताईं क्लिनिक खुलियल रहंदी, हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकरण, क्लिनिक आहे असांजी स्टेशन रोड सकरण ते, तव्हां स्टेशन रोड सकरण ते ईंदव ऐं परेशान थी वेंदो त यार हेॾां वञिणो आहे या होॾां वञिणो आहे, कंहिंखे चओ पारक वारी घिटी कहिड़े पासे आहे, ऐं पारक वारी घिटी चवंदव त बसि तव्हां पारक वारी घिटी वटि पहुची विया, उन खां अॻे घिटी असांजी आहे, हुते वञी पहुचंदो आहे इहा हाजी इनाजी क्लिनिक किथे आहे, पाण चवंदा साम्हूं त आहे, त इन करे पारक वारी घिटी अवां यादि रखी सघोसि था। असां प्रोग्राम में असां मादे जे हवाले सां तव्हांखे सयोसीं त एतिरी बीमारियूं हिन मादे जे बारे में आहे त जंहिंजे करे मादे जे करे एतिरी बीमारियूं थी सघनि थियूं, उहा इन करे चयोसीं त असांजी जेका मेन इंजन आहे त उहा मादो ई आहे, मादे में ई असांजी दवा वेंदी, मादे में ई पाणी वेंदो, मादे में ई खाधो वेंदो, मादे में ई हर शइ वेंदी आहे, जेॾी महिल इहा सिहतमंद आहे त उहा सभई खाधो पाणी जूस दवाऊं जा विटामिन्स मिनरल्स ताक़त सभई उन खे जज़्ब करे सघेसि थो, पोइ असांजे रत सां गॾु मिलाए करे जंहिं जिथे जंहिं शइ जी ज़रूरत आहे होसि ताणी पहुचाइण जो कमु कंदो आहे। जेॾी महिल खाधो पीतो सही तरह हज़म ई न थींदो त तव्हां पाण ॾिसंदा त जिस्म सफ़ा अबोरो थियल आहे, कमज़ोर आहिनि, खाधो पीतो नथो लॻे, जान न पई ठहे, त उन में मेन वजह थींदी आहे मादे जी कमज़ोरी। जेॾी महिल मादो सहतियाब थी थो वञे, मादो तयारु थी थो वञे, त पोइ इहा सभु तकलीफ़ूं या न हुअण जे बराबरि हूंदियूं आहिनि, इन करे मादो लाज़मी आहे, मादे जो इलाजु कराइणु लाज़मी आहे। मादो सिहतमंद आहे त सम्झो तव्हांजी ज़िंदगी बि सिहतमंद आहे, खाइण पीअण ग़म ख़ुशीअ में हर जॻह ते तव्हां फिट फाट तयारु यकदमि तयारु आहियो। जंहिं में मादे में को ख़राबी आहे, का चांहि पी वरिती, पाणी न चांहि पी वरिती, अव्हांखे यकदमि गैस भरती सूरु महसूसु थियनि, छा मादो ख़राबु थी वियो, मादो ख़राबु आहे, गरम गरम शइ पीअंदा थी ख़राब थींदो। इन करे अवां पंहिंजे माइते जेका तकलीफ़ हुजे त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ होम्योपैथिक तरीक़े सां इलाजु करे, छो त हिन में ॾिसो दवाउनि जी रेंज आहे। जीअं मां अव्हांखे चयमि मादे में गर्माइश अलॻि दवा आहे, मादे ते भर्ती केस आहे अलॻि दवा आहे, मादे में अल्सर आहे ज़ख़्म आहे अलॻि दवा आहे। मतिलबु की अहिड़े हिसाब सां हर तकलीफ़ जी माना जिस्म में का बि बीमारी आहे उन में कहिड़ी तकलीफ़ आहे, छा तकलीफ़ आहे, कीअं थिए थी, केॾी महिल घटि थिए थी, केॾी महिल वधीक थिए थी, उन मुताबिक़ दवा सिर्फ़ु उहा ई दवा उन जी मौजूदु आहे असां वटि। ईअं न आहे त सिर्फ़ु मिसाल तौर ते त मूंखे टंग में सूरु आहे त उहा ई गोरी, मूंखे मथे में सूरु आहे त उहा ई गोरी, मूंखे चेल में सूरु आहे त उहा ई गोरी, त हिकिड़ी गोरी सभिनी सूरनि में हलाइनि पिया। त असां वटि जेका आहे त मथे में सूरु आहे त उन जे लाइ अलॻि ख़ासि सिर्फ़ु मथे जी सूर जी दवा, टंग में सूरु आहे त ख़ासि टंग जे सूर जी अलॻि दवा। ईअं होम्योपैथिक में अलॻि अलॻि दवाऊं ऐं ख़ासि उन्हनि तकलीफ़ुनि जे हवाले सां मौजूदु आहिनि। अव्हांखे जेका तकलीफ़ आहे अव्हांखे उहा ई दवा मिलंदी त तव्हांखे फ़ाइदो इनशाला ज़रूरु थींदो। इन करे होम्योपैथिक में तमामु घणियूं दवाऊं जी रेंज आहे, जंहिं पेशंट खे जंहिं दवा जी ज़रूरत आहे सिर्फ़ु उनखे उहा ई दवा मिले त उनजी ज़िंदगी त बिल्कुलु ठीकु ठाक थी सघे थी। वधीक शिफ़ा अलाह जे हथ में आहे।
0: डॉक्टर साहब अवांजो पैगाम छा हूंदो असांजे सामिन जे लाइ? सर
1: सामिन जे लाइ आख़िर में पैगाम सिहत चौराज़ होम्योपैथिक जे प्रोग्राम में अवां जे लाइ सिर्फ़ु एतिरो पैगाम रखंदासूं त होम्योपैथिक इलाज अवां जे लाइ हिकिड़ी नई शइ आहे। हिकिड़ी शइ अहिड़ी आहे त यार अलाए छा आहे, अलाए छा आहे, अलाए छा आहे, यार परेशान माण्हू हर को परेशान थींदो आहे। अवां जेसिताणी इन ॻाल्हियुनि ते अमल करे ॿुधी करे ईंदा तमामु इस्तेमालु अज़माइण त हर कंहिंखे शौक़ु हूंदो आहे न अज़माइण जो, अवां अज़माए ॾिसो होम्योपैथिक खे, अवां अज़माईंदव अवां पाण परेशान थींदो यार वाक़ई पहिरीं ई किथां हुई, दवा खाधीसीं न को असांखे को सूरु थियो न को तकलीफ़ थी, असांजी जेका तकलीफ़ हुई उहा ई अलहमदिल्ला ख़तमु थी वई। त अहिड़े तरीक़ेकार आहे असांजो होम्योपैथिक तरीक़ेकार इलाजु। ऐं अलहमदिल्ला सकरनि में तक़रीबन सम्झो होम्योपैथिक इलाजु जेको अव्हांखे मिली सघे थो उहा सिर्फ़ु हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते, बाक़ी किथे बि नथो मिली सघे सकरनि में। उन जे लाइ छा त इन जे लाइ पढ़ाई तमामु ॾुखी आहे, पढ़ाई करनि, ॻाल्हियुनि खे सम्झनि, दवा जे असरातनि खे सम्झनि, दवा कहिड़े पेशंट खे कहिड़ी ॾियणी आहे उहा शयूं सम्झनि, वरी पेशंट अचे उन जी हालात कंडीशन ॾिसी को उनखे कहिड़ी दवा ॾियणी आहे, होम्योपैथिक जी दवा जे मुताबिक़ कहिड़ी दवा इन जे लाइ सही आहे, इहे सभु शयूं तक़रीबन तकलीफ़ ते अमल आहे ऐं वॾी पढ़नि जे लाइ वॾी मुश्किल शइ आहे। त उन जे करे होम्योपैथिक तक़रीबन घटि इस्तेमालु थींदी आहे, पर इलाजु सुठो आहे। दवाउनि जेके सम्झ में अची वियूं, जेके पेशंट खे लॻी वियूं त ईअं खणंदी हुयूं तव्हां पाण परेशान थींदो त यार मां कल्ह बीमार पियो अॼु फर्स्ट क्लास ठीकु ठाकु आहियां। पर फ़र्क़ु इहो आहे असां खां गाॾी वठूं था, मोटरसाइकिल वठूं था, 70 माण्हुनि खे वठी था वञूं, 70 दफ़ा उनखे चेक कंदा आहियूं, हेठि मथे ऊंधो सूंधो करे चेक कंदा आहियूं, हर शइ कंदा आहियूं, पर वठंदा आहियूं दवा होम्योपैथिक जी। अवां अचो, इस्तेमालु कयो, खाए ॾिसो, अव्हांखे को नुक़सानु वग़ैरह थिए अलहमदिल्ला कोन थींदो, छो त हिन में साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, अव्हांखे फ़ाइदो ई इन दवाउनि सां मिलंदो। त इन करे परेशान या सोचण जी का बि ज़रूरत कोन्हे को, तकलीफ़ आहे मर्ज़ आहे त उनजो इलाजु करणु, कहिड़ी ख़बर अव्हांजी इन बीमारी जी शिफ़ा इन होम्योपैथिक दवा सां थी सघे। अव्हां एतिरा परेशान थी वियो त डॉक्टर वटि धिका खाओ, वञो अचो, मूं तक़रीबन अहिड़ा डॉक्टर ॾिठा आहिनि त वॾे वॾे अस्पताल में माण्हू वेंदा आहिनि, ॿाहिरि रोडनि ते सुता पिया, पेशंट दाख़िल आहे रोडनि सुता, 10 ॾींहं 15 ॾींहं महीनो थी था वञनि, परेशान परेशानी आहे न। थी सघे उनजी का अहिड़ी तकलीफ़ आहे त उनजी का अहिड़ी दवा होम्योपैथिक असां वटि मौजूदु हुजे, पेशंट अची असां चेकअप कयूं, असांखे ख़बर पई आहे तकलीफ़ आहे, उनजी दवा असां वटि मौजूदु हुजे जे उनखे ॾियूं, उहा घर वेही खाए एतिरी वक़्त जी तकलीफ़ुनि मां वॾे ज़लालनि मां बची वञे, त इहो सम्झ छा आहे, इहा ई त कमाल आहे न होम्योपैथिक जो। अवां इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झो, पंहिंजो होम्योपैथिक इलाजु करायो, इनशाला अवां मायूस न थींदव, इनशाला अलाह जा सां उमेदु आहे अव्हांखे ज़रूरु शिफ़ा मिलंदी होम्योपैथिक तरीक़ेकार इलाज सां। वधीक कचहरियूं असांजी हलंदी रहंदियूं, प्रोग्राम हलंदा रहंदासीं, असां अव्हां सां गॾु रहंदासूं। फ़िलहालु ॾियो इजाज़त, अलाह निगेबान।
0: जी हा सामिन, असां सां गॾु हुआ सकरनि जा मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह से वापस था हैं। डॉक्टर साहब माहिर अमराज नककन गलो पुरानो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जलन तिली जो वधन जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालेज खंग टीबी हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाले जी पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन के इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन तड़ औरतन में वजन जो न वधन इन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहब रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी किरिया मेरापुर रोड नर्स बाईपास सकरन में मरीजन जो इलाज कदा है जुम्मो मोकल कदा है छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप करो है नोट सिर्फ दवा स्टोर तटी पवी है। डॉक्टर साहब जो मालूमती नंबर 0327 89 84 700 68 7 9 8 4 7 6 3। सामिन वक्त जो एहसास प्रोग्राम से जी गाल जो भी वक्त पहुंचे तो पुजाणी ते जदे भी दुआ लायत खणो पेंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगन के तौर में जरूर याद रखो। जिंदगी अगर साथ रिनो बे प्रोग्राम में होदस अवां सा गड ते सी दिंदा इजाजत सदाई गड अल्लाह वाही अलन गहबान जेदा पे तेदा खैरो खैर।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: ढाडो सुठो
4: जीए FM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुझी सकंदा। कणक खरीदारी लटकियल, आबादगारन पारां सब्सिडी वठण बावजूद कणक न मिलण ते हुकूमत आपे खां बाहिर। आबादगारन खां सब्सिडी जा पैसा ओगाइण जो हुकुम। डिफॉल्टर आबादगारन खे 5 सालनि जे लाइ ब्लैकलिस्ट करण जी तजवीज़। मौलाना फजल रहमान ऐं पीर पागारे में पीपी मुखालिफ़ इतिहाद खे मज़बूत करण ते इतफ़ाक़। कराचीअ में अहम मुलाक़ात। एंटी करप्शन सिंध पारां मीरपुर ख़ास जे रेवन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी कंदड़ वधीक 3 ॼणा गिरफ़्तार। जांच दौरान अहम इंकशाफ़। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CCE 2024 इम्तिहान जा तकरारी नतीजा मुअतल। रिकॉर्ड सील, सेक्रेटरी तलब। लाड़काणे अस्पताल में वियम लाइ आयल औरत ॿार समेत फोत। डॉक्टरनि ते गफ़लत जो इल्ज़ाम। ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध में कारोकारीअ जो कारोबार कॾहिं ख़तमु थींदो?

सिंधु हुकूमत पारां सूबे जे 3,36,000 नंढनि आबादगारनि खे कणक पोखीअ लाइ यूरिया ऐं DAP जे मद में सब्सिडी ॾियण बावजूदि कणक सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ताईं न पहुती। सिंधु हुकूमत पारां कणक ख़रीदारीअ जो 10 लख टन वारो हदफ़ पूरो न थियण जो इम्कान। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी हिदायत कई आहे त जिन आबादगारनि DAP ऐं यूरिया जे मद में 22,000 रुपया सब्सिडी वठण बावजूदि कणक जी पोखाई न कई आहे उन्हनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां सिंध जे ज़राअत खाते जे अख़्तियारनि पारां समूरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखी उहा हिदायत कई वई आहे त सिंध काबीना जे फ़ैसिले हेठि DAP ऐं यूरिया जे मद में रक़म वठण बावजूदि कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां सब्सिडीअ वारी रक़म वापसि वरिती वञे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि सिंधु हुकूमत पारां सिंध काबीना जे फ़ैसिले तहत 25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि खे कणक पोखाईअ लाइ फ़ी एकड़ जे हिसाब सां DAP ऐं यूरिया ख़रीदारी जे लाइ 22,000 रुपयनि ताईं सब्सिडी ॾिनी वई हुई। ज़रियनि मूजिबि त कणक पोखी न थियण ऐं सरकारी ख़रीदारी सेंटरनि ते नंढनि आबादगारनि पारां कणक न पहुचाइण बाद सिंधु हुकूमत पारां सख़्तु फ़ैसिलो कंदे आबादगारनि खां सब्सिडी वापसि कराइण जे लाइ डिप्टी कमिश्नरनि खे ख़तु लिखियो वियो आहे। उन हवाले सां सिंध सरकार जो चवणु आहे त अहिड़नि आबादगारनि खां न रुगो रक़म वापसि वरिती वेंदी पर ईंदड़ 5 सालनि ताईं खेनि कंहिं बि क़िस्म जी सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान जी राजा हाउस आमंद सिंध में PP मुखालिफ इतिहाद के मजबूत करण जो फैसलो। उन दसवीं काल मौलाना फजल रहमान राजा हाउस पहुंची GDA के सरबराह पीर पागारे से मुलाकात कई। मुलाकात के आमद वक्त सैद राशिद शाह राशिदी ए मौजूम आबासी संदस इस्तकबाल कयो। जॾहिं मुलाक़ात दौरान JUI अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो ऐं ॿिया अॻवान पिणु मौजूदु हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात दौरान सिंध समेत मुल्की सूरत हाल ते गुफ़्तगु थी। मुलाक़ात में सिंध जे GDA ऐं JUI पारां गॾियल हिकमत अमलीअ तहत सिंध सरकार खे टफ़ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। होॾां GDA तर्जुमान मूजिबि मुलाक़ात में JUI क़्यादत पारां सखर में कोठायल अमन कॉन्फ्रेंस में GDA क़्यादत खे शरीक थियण जी दावत ॾिनी वई। मुलाक़ात में सिंध समेत सॼे मुल्क जे तालीमी इदारनि मंशियात फरोशी ते पिण गणतीअ जो इज़हार कयो वियो। मीरपुर खास में रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी ऐं जाली खाता ठाहिण जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार थियल मीरपुर खास तालके जे अॻूणे मुख़्तियारकार राशिद जी मुबैना इनकशाफ़नि खां पोइ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कंदे हिकु ॼणे इम्तियाज़ बरफ़त संदसि सोरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त ते इल्ज़ाम आहे त हू हेराफेरी कंदड़ रेवेन्यू आफ़िसरनि लाइ फ्रंटमैन तौरु किरदारु अदा कंदो हो। एंटी करप्शन खाते जे ज़रियनि मूजिबि इम्तियाज़ बरफ़त 40 रुपयनि जी मिल्कियत पंहिंजे सोहरे ग़ुलाम मुस्तफ़ा खासकेली ऐं पाड़ेसरी मोहम्मद हाशिम जे नाले रजिस्टर्ड कराए छॾी हुई। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदार ते उहो पिणु इल्ज़ाम आहे त हुननि रेवेन्यू अमलदारनि जे मिली भगत सां क़ीमती एराज़ी जा जाली खाता ठाहिया ऐं गॾोगॾु सरकारी ऐं निजी ज़मीनुनि जूं फर्ज़ी दाख़िलाऊं तयारु कयूं हुयूं ऐं गॾोगॾु हुननि सरकारी रिकॉर्ड में रदो बदल करे ज़मीन जी मिल्कियतुनि खे पिणु तब्दील कयो हो। ज़रियनि मूजिबि गिरफ़्तार थियल इम्तियाज़ बरफ़त अहम इनकशाफ़ कया आहिनि जंहिं बाद ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ छापा पिणु हया वञनि पिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन CCE 2024 इम्तिहान जे तकरारी नतीजनि खे मुअतल करे छॾियो। काल्ह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जे नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त उहे स्क्रीनिंग टेस्ट ऐं लिखत वारे इम्तिहान में सुठी कारकर्दगीअ बावजूदि इंटरव्यू में नाकाम करार ॾिना विया, जॾहिं त मेरिट जे उबतड़ मनपसंद उमेदवारनि खे कामयाबु करार ॾिनो वियो। उन ई इम्तिहान में वेठल 10,000 मां सिर्फ़ 70 उमेदवारनि खे पास कयो वियो आहे। अहिड़े अमल सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी साख विञाए चुकी आहे। अदालत इब्तदाई ॿुधणीअ बाद मामले खे गौर तलब करार ॾींदे कमीशन जे सेक्रेटरी कंट्रोलर एडवोकेट जनरल सिंध ऐं लाॻापियल ज़रियनि खे 21 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे हुकुम ॾिनो त गॾियल मुक़ाबले वारे इम्तिहान 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पेश कयो वञे। अदालत वधीक हुकुम ॾिनो त 6 मई 2026 ते जारी कयल नतीजनि बाबति प्रेस रिलीज़ ते ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं अमल दरामद मुअतल रहंदो। उन ई बुनियाद ते वधीक का बि कार्रवाई न कई वेंदी।
लाड़काणे जे शेख जैद औरताणी अस्पताल में वियम जे लाइ दाख़िल शहदाद कोट भरिसां ॻोठु गोलू वाह जी रहवासण अठनि ॿारनि जी माउ चालीहनि वरनि जी नाज़िया ज़ाल राज़ी ख़ान खोसो ऐं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार फोत थी विया। वारसन अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं अमले मथां गिफ़लत जो इल्ज़ाम लॻाईंदे एहतिजाज कयो। उन मौक़े ते फोती औरत जे भाउ हिदायतुल्ला खोसो इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो आहे त मंझंदि ॿारहें वॻे धारे मां पंहिंजी भेण नाज़िया खोसो खे वियम जे लाइ लाड़काणे जे शेख जैद औरताणी अस्पताल दाख़िल करायो, जिथे डॉक्टरनि जे मशोरे ते मां हज़ारे रुपियनि जूं क़ीमती दवाऊं ख़रीद करियूं। रत जूं अठ थेलियूं खे ॾिनियूं। उन जे बावजूद डॉक्टरनि भेण जो इलाज न कयो, जिन खे मां इलाज मिंथू बि कयूं पर हुननि मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी। जिन जी गिफ़लत ऐं लापरवाही सबब मुंहिंजी भेण अठनि ॿारनि जी अमर नाज़िया खोसो अस्पताल जे वार्ड में तड़पी तड़पी फोत थी वई, जॾहिं संदसि पेट में पलजंदड़ ॿार बि फोत थी वियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठणी भेण जे इलाज में गिफ़लत जो मुज़ाहिरो कंदड़ डॉक्टरनि ऐं अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जी धरती मोहब्बत, अमन, रवादारी ऐं सूफ़ी अज़म जी सुञाणप रखे थी, पर अफ़सोस जो अॼु बि कुझु इलाइक़नि में कारोकारी जहिड़े ज़ालमाणी रस्म इंसानियत जे चहिरे ते कारो दाग बणियल आहे। कारोकारी सिर्फ़ हिकु रस्म न पर केतिरनि ई हंधनि ते उहो हिकु कारोबार बणिजी वियो आहे, जिथे इज़त जे नाले ते इंसानी जाननि सां रांदि कई वञे थी। कारोकारी में घणो करे औरतुनि खे निशानो बणायो वेंदो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाक्यनि में ज़ाती दुश्मनी, ज़मीन जा तकरार, कर्ज़ या क़बाइली अना बि असुलु सबबु हूंदा आहिनि। कुझु माण्हू पंहिंजे मुफ़ादनि जे लाइ कंहिं औरत या मर्द ते इल्ज़ाम हणी, जुर्गनि ज़रिए ॾंडु वठी या क़तल खे जाइज़ क़रार ॾेई हिन ज़ुल्म खे रवायत जो नालो ॾियनि था। अहिड़ी तरह बेगुनाह माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेहनि था ऐं समाज ख़ामोश तमाशाई बणिजी बीठो रहे थो। अफ़सोस जी उहा ॻाल्हि आहे त केतिरनि ई इलाइक़नि में कारोकारीअ जा फ़ैसिला कानून बदिरां जुर्गनि में कया वञनि था। उहे जुर्गा अक्सर ताक़तवर माण्हुनि जे मर्ज़ीअ मूजिबि हलाया वञनि था, जिथे इंसाफ़ बदिरां असर रसूख ऐं पैसे जी अहमियत हूंदी आहे। नतीजे में ग़रीब ऐं कमज़ोर माण्हू वधीक मुतासिर थियनि था। औरतुनि खे पंहिंजी सफ़ाई पेश करण जो बि हक़ नथो ॾिनो वञे ऐं खेनि समाज जे ख़ौफ़ सबबु ख़ामोश रहणो पवे थो। इस्लाम बि बिना सबूत कंहिं ते इल्ज़ाम हयण या क़तलु करण जी सख़्तु मुखालफ़त करे थो। क़ुरान पाक ऐं शरीयत इंसान जी जान खे मुक़दस करार ॾियनि था, तंहिं करे कारोकारीअ खे मज़हब सां जोड़णु सरासरी ग़लति ऐं ज़ुल्म आहे। हीअ रस्म न सिर्फ़ क़ानून जे ख़िलाफ़ु आहे, पर इंसानी इख़लाक़ियात ऐं समाजी क़दरुनि जी बि तोहीन आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त समाज में शऊर पैदा कयो वञे, तालीम खे हथी ॾिनी वञे, औरतुनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं क़ानून ते सख़्तीअ सां अमल करायो वञे। मीडिया, उस्तादनि, अदीबनि ऐं मज़हबी आलमनि खे बि पंहिंजो मुस्बत किरदारु अदा करणो पवंदो, जीअं माण्हुनि जी सोच बदिलजी सघिजे। जेकॾहिं अॼु बि असां ख़ामोश रहियासीं त सुभाणे वधीक बेगुनाह ज़िंदगियूं हिन बेरहम रस्म जे वर चढ़ी वेंदियूं। कारोकारी कंहिं बि सूरत में इज़त न, पर इंसानियत जो क़तलु आहे। सिंध खे अहिड़ियुनि ज़ालिमनि रस्मुनि खां आज़ादु कराइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे, जीअं हीअ धरती ॿीहर अमन, मुहबत ऐं इंसाफ़ जी सुञाणप बणिजी सघे।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: पहचो शहर पहचो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

गुरुजी अदल सतार भयो चवे। शामराद मिदरी खा फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खा फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर चयो आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जी खात्मे लाइ एतमाद जोगो हिसेदार आहे। अमेरिका जे सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾींदे सेंटकॉम सरबराह चयो त पाकिस्तान सां मज़बूत फ़ौजी हिसेदारी सबबि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वॾी कामयाबी मिली। गॾियल कामयाबियूं पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे पुराणे दोस्ती ऐं गॾियल अज़म जी सिधी री तकासी कनि थियूं। दहशतगर्दी वारनि सरगर्मियुनि ऐं इलाक़ाई सिक्योरिटी ख़तरनि सबबि अफ़गानिस्तान वॉशिंगटन जे ध्यान जो महवर आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं कतर जे अमीर विच में टेलीफोनिक राब्तो। वज़ीर आज़म आफ़ीस जो चवणु आहे त ॿिन्ही अॻवाननि आलमी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। वज़ीर आज़म इलाक़ाई सफ़रतकारी में कतर जी तामीरी किरदार जी बि वाखाण कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां कतर जे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बेर बीहर खबरदार कंदे चयो आहे त ईरान जल्द खां जल्द जंगबंदी करे वठे त उन जे हक में बहितर थींदो। जेकॾहिं जल्द अमुन माइदो तय न थियो त ईरान खे तमामु ॾुखे वक़्त खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, जेको उन जे वेझो पहुची चुको आहे। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई आहे त अमरीका ऐं इसराइल जे ईंदड़ हफ़्ते ईरान ते हमले जी तयारी मुकमल करे वरिती आहे। हमला ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर शुरू थी सघनि था। अमरीकी अख़बार मूजिब विच ओभर जे ॿिनि आला उहिदेदारनि चयो आहे त इसराइल ऐं अमरीका मुख़्तलिफ़ अस्करी ऑप्शन्स ते बि गौर वीचार करे रहिया आहिनि, जिन में ईरान।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत-ए-मुदाफियत को और बेहतर